सुप्रभात, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 और 31 सेकंड हो रहे हैं। आज का दिन है रविवार, सक संवत 1948, श्रावण माह की 18वीं तिथि और अंग्रेजी वर्ष 2026 की अगस्त माह की 9 तारीख है। और मैं मनाली आप सभी सुनने वाले

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल अबिजान में कोटी डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी उटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह 2 दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता

0: होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 147,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब हम आपको जानकारी देते हैं आज के इस पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 6:10 पर हम आनंद लेंगे कार्यक्रम भक्ति गीतों का। 6:30 पर हम सुनेंगे प्रस्तुतकर्ता तृष्णा चक्रवर्ती द्वारा महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण। 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। इसके पश्चात जानेंगे आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें सुबह 7:05 पर, और 7:30 पर हम सुनेंगे चिल्ड्रंस प्रोग्राम।

8 बजे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर हम सुनेंगे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। 8:30 पर आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ और 8:40 पर कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का प्रायोजित कार्यक्रम एपिसोड 6 और 9 बजे हम सुनेंगे पूर्व आंचलिक बातोरी रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के तहत 9:15 पर खेलमा कार्यक्रम में हम सुनेंगे कुछ खेलमा भक्ति गीत गुलजोन लीजाइते और उनके साथियों की आवाज़ों में। 9:25 पर रांगखोल कार्यक्रम में हम सुनेंगे अमोय रांगखोल और उनके साथियों के गाए कुछ रांगखोल पारंपरिक गीत। तत्पश्चात जयंत कार्यक्रम में हम सुनेंगे भाभोक सांगसाई और उनके साथियों के गाए कुछ जयंत भक्ति गीत। समय रहेगा 9:35 और 9:45 पर ब्याते कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ ब्याते भक्ति गीत जेने विंगामलाई और उनके साथियों की आवाज़ों में।

सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिली किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए जाएंगे मिड डे न्यूज। तत्पश्चात 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 से लेकर शाम 5 बजे तक एक बार फिर हम सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। और इसी बीच हर घंटे सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के इस पहले सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन केंद्र है। चलिए अब हम आरंभ करते हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम को और आनंद लेते हैं कुछ प्यारे भजनों की।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब हम सुनते हैं प्रस्तुतकर्ता तृष्णा चक्रवर्ती द्वारा महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपकी दोस्त तृष्णा चक्रवर्ती और मैं लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम, जो हर नारी के लिए है, नारी के संघर्ष, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं एक मिनट का वुमेन टाइम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमिका और मैं कोलकाता से हूँ। फिलहाल अभी मैं औरंगाबाद पे हूँ। मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में MGM यूनिवर्सिटी से। MGM यूनिवर्सिटी यानी महात्मा गांधी मिशन यूनिवर्सिटी। और मेरा हॉबी है किताबें पढ़ना, गाना गाना और बस रील स्क्रॉल करना। और लेकिन एक चीज़ में मैं विश्वास करती हूँ कि कभी गिव अप मत करना। जो भी है उसका सामना करना, उसको फेस करना। फेस द फियर एंड यू विल नेवर लूज द गेम। और एक चीज में मैं बिलीव करती हूँ, जो कि मेरे पापा ने मुझे बताया था, कि कभी खुद के सामने छोटे मत हो जाना। खुद के सामने कभी, खुद के आंखों में कभी गिर मत जाना। जब तुम मिरर देखोगे, जब तुम आईना देखोगे, तब जाके लगे कि नहीं, तुम जो हो तुम सही हो। अपने पे, अपने अंदर हमेशा सही रखना सारी चीजें। थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों, वुमेन टाइम के बाद आज हमारे वुमेन प्रोग्राम में हमारी खास अतिथि है बेसन मार्ट की ओनर और वाई फ्री मूवी की प्रोड्यूसर स्वप्ना दालागोपी जी। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद कृष्णा जी, और नई साल की शुभकामना मेरी तरफ से।
0: जी
2: और इस आपका आकाशवाणी हाफ लंग कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।
0: जी आपको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद।
0: जी अपने बारे में जरा विस्तार से कुछ बताइए।
2: मेरा जन्म सिलचर में हुआ था, मेडिकल कॉलेज में, टू अ वेरी स्वीट कपल बट क्वाइट एजेड। पापा था 55+, मम्मी था 35 years+,
0: जी
2: सो आई एम द ओनली चाइल्ड। तो जब मैं 6 साल की थी, हम लोग ने यहाँ आफ्टर पापा के रिटायरमेंट के बाद यहाँ सेटल किया, बिकॉज मेरी मम्मी की बड़ी बहन, सी वॉज ऑलरेडी सेटल हियर, वो अपनी बहन को क्लोज रखना चाहता था, इसलिए हम अपने एडुकेशन के लिए भी मम्मी ने यही हफलोंग टाउन को चुना, और पापा ने भी बहुत पसंद किया। उसी वजह से 1986 को हम लोग यहाँ पर आए,
0: जी
2: और सेटल होने के बाद मैं एक कॉन्वेंट में मैंने क्लास 1 में ज्वाइन किया, उसके बाद मैट्रिकुलेशन भी यही किया, HS भी यही किया, ग्रेजुएशन भी यही किया। थोड़े मास्टर्स के लिए मैंने थोड़े दिन के लिए असम यूनिवर्सिटी में भी गया था, लेकिन थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम के लिए वहाँ कंटिन्यू नहीं किया। इसके बाद कॉटन में भी गया, फिर भी वहाँ भी कंप्लीट नहीं कर पाया, बस वो मेरा एक अधूरा सपना रह गया, मास्टर्स नहीं कर पाया। उसके बाद वापस आने के बाद थोड़ा टाइम के लिए पॉलिटिकल में था, 2-3 साल। वो हमारा अपना जीजाजी, माई फर्स्ट कजिन सिस्टर का हब्स हस्बैंड, श्री पुर्णेन्दु लंगटा जी का साथ थोड़ा सा टाइम कांग्रेस में था, NSA का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होके। उसके बाद उनकी ध्यान के बाद 2 साल और था, बाद में खुद सेटल हो गया, और श्री कुलेंद्र डॉलोगफ जी के साथ मेरा विवाह हुआ, वो माईबंग की है।
0: जी
2: और अब हम छोटा सा परिवार है, हाफलोंग में है, और मैं फुल टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ,
0: जी
2: प्रोड्यूस करता हूँ एक दो फिल्म, और फुल हस्बैंड को सपोर्ट करता हूँ, फैमिली सपोर्ट करता हूँ, बस यही छोटा सा कहानी है मेरा।
0: जी जी जैसे आपने बताया कि बहुत कुछ ही आपने किया है और कुछ सपने भी अधूरे रह गए हैं।
2: जी
0: जी आपने काम करने के लिए कैसे सोचा है कि लाइफ में कुछ करना ही है, या ऐसे ही मतलब मन किया, ऐसी वजह से किया आपने?
2: बचपन से मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप का था। मेरा एक छोटा सा कहानी है, वो है कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली मैं थोड़ा सिक्योर रखता हूँ। कोई मुझे अगर एग्ज़ाम पास करने के बाद कोई बुज़ुर्ग अगर मुझे चलो मिठाई खा लो बोल के अगर थोड़ा सा कोई पैसा दे दिया, तो मैं उसे नहीं खाता।
0: जी
2: मैट्रिक पास करने के बाद मेरा जीजाजी ने मुझे 300 रुपीज़ दिया था, उस 300 रुपीज़ को मैंने इन्वेस्ट किया, उसको मैंने मेरा दूर का कजिन उनके पास से मैंने एक छोटा सा बकरी जो है मैंने उसको एक खरीदा 300 रुपीज में 97 को
0: जी।
2: उसी से मैंने अपना खर्चा पॉकेट मनी निकालता था। सो वो सिस्टम मेरा मतलब मेरा पास मेरा बहुत ही प्रिय है कि मैं अपना इंडिपेंडेंट रहूं। इस तरह मम्मी को भी थोड़ा सपोर्ट करता था, ट्यूशन वगैरह करता था। इंडिपेंडेंस मुझे बहुत प्यारा था, मेरा अपना चॉइस था। और माँ को सपोर्ट करना मेरा पापा के ध्यान के बाद 97 में पापा गुजर गए थे। तो माय ओनली मोटिव वाज कि मैं मम्मी के साथ खड़ा रहूं। एज आई एम द ओनली चाइल्ड, कोई लड़का नहीं था, भाई बहन भी नहीं था। तो उसी के हिसाब से मैं बचपन से आई वॉज ऑलवेज अवेयर एंड आई वॉज ऑलवेज इन द सिक्योर जोन में रहना चाहता था। कभी फालतू के खर्चा वगैरह ये सब एकदम नहीं करता था। वही है छोटा सा मेरा इंस्पिरेशन स्टोरी कि आप पढ़ाई करना है आपको तो मम्मी थोड़ा दे रहा है तो मुझे थोड़ा निकालना है। तो मैंने वो गोट को रेयरिंग करके बहुत साल तक, वो साल में दो बार बच्चा देता था तो उसी को मैं पाल के पूस के बड़ा करके पूजा के टाइम या एडमिशन के टाइम में उसको फिर बेच के वो पैसा से मैं काम चला, अपना पॉकेट मनी का काम चला लेता था।
0: जी जी, जैसे आपने बोला सच्ची में भी ये काफी इंस्पायरिंग है क्योंकि काफी लोग पैसे मिलकर उसके बाद खाकर उड़ा देते हैं। जी, जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के लिए आप पहले से सोचती थी, लड़कियों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है?
2: बहुत जरूरी है। जिस तरह आप सांस लेना जिस तरह आपको जरूरी है
0: जी,
2: उसी तरह मैं तो मानती हूँ कि आपको जरूरी है, स्पेशली लड़कियों को। आपका जब विवाह ना हुआ हो तभी भी आपका जरूरी है, आपका शादी के बाद भी आपको पूरा जरूरी, उस टाइम तो और भी ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल।
2: आपको आपका हस्बैंड को भी सपोर्ट करना है, आपने जो आपने जन्म दिया है, आपने जीवन दिया है, आपका बेटा है, आपका बेटी है, उनको सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। और वो आप तभी कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा भी अगर इंडिपेंडेंट हो। आपको ज्यादा नहीं चाहिए, आपको उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करके जाना है। उनको आपको बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा छोटा छोटा छोटा नीड्स होता है, छोटा छोटा वो सबको फुलफिल करके जाना है। तो हस्बैंड को भी बहुत ताकत मिलता है, प्रेशर नहीं होता है। आपका बच्चे भी आपसे सीखेंगे कि कैसा मैनेज करना है छोटा छोटा, वो उसी से मतलब मेरा ख्याल से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसका अगर माँ भी है, उनका पेरेंट्स होता है, फिर ससुराल भी होता है, तो वो सब देखना पड़ता है। आपको फाइनेंस की तरफ में तो आपको एकदम एब्सोल्युटली केयरफुल होना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
2: आप ऐसे ही मतलब खुशी से आप वेस्ट कर दें वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एकदम नो मेरे हिसाब से।
0: जी जी, जैसे आपने इंडिपेंडेंट होने के बारे में बताया, आपने बताया था एजुकेशन भी काफी इम्पोर्टेंट है।
2: हाँ, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है।
0: जी, बहुत सारे वुमेन विलेजेस में रहते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, बट उनको पढ़ना चाहिए।
2: उनको कुछ हद तक पढ़ना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि सबको एक मास्टर

0: लेना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए. नहीं, थोड़ा एडुकेशन क्या है, आपको सीखना है और आपको समझना है. द बेसिक कोर ऑफ एडुकेशन वो है कि आप समझ सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी से शुरू होता है. जब आप कुछ चीज़ को समझेंगे अच्छी तरह से, तभी आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे. जो
1: बिल्कुल
0: जहाँ जहाँ पे द एडुकेशन का मतलब, वो मेरा मतलब में बस जो गांव में है. अभी तो बहुत अच्छा है कि अभी सोशल मीडिया में इतना आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है. बस बुरा को छोड़ो, अच्छी लाइन पे जाओ, तो वहीं से आप शुरू कर सकते हैं. अभी तो
1: बिल्कुल
0: गांव गांव और अभी का सिचुएशन, अभी का पर्यावरण वातावरण जो बोलते हैं, इट्स सो ब्यूटिफुल. अभी अभी का लाइफ और बहुत इजी हो गया है,
1: बिल्कुल
0: बहुत इजी. उसी इजीनेस में आप पैसा भी फेंकते हैं, उसी इजीनेस से आप कमा भी सकते हैं.
1: बिल्कुल
0: बस आपको सिर्फ राइट डायरेक्शन में जाना है.
1: और एक आपने बताया कि जब 10th पास किया आपने, तभी आपने इन्वेस्ट किया.
0: हाँ,
1: जी
0: मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वो 300 रुपीज़ जो मुझे दिया
1: हाँ,
0: गया
1: तो
0: था.
1: उसके बाद ऐसी कोई और कहानी है आपकी लाइफ की जो बहुत मज़ेदार रहे और सबके लिए इंस्पिरेशन भी बने?
0: ऐसा छोटा छोटा है, जैसे कि अगर मैं जब ट्यूशन पढ़ाता हूँ या जब भी मुझे कुछ रकम मिलता है, मैं वो अपने पास नहीं रखता, मैं डायरेक्टली मैं माँ को दे देता हूँ. तो देने के बाद ही मैं डिस्कस करता हूँ माँ को हमेशा. हर डिसीजन छोटा हो या बड़ा, यहाँ से अगर मुझे कहीं जाना भी हो, कॉलेज में जाना हो, एक्स्ट्रा क्लास लेना हो, एक जोड़ा चप्पल भी लेना हो, तभी भी मैं माँ के साथ ही वो डिस्कस करता हूँ. हमारे ज़माने में तो एक फैशन था कि हम बाटा के चप्पल पहनते थे, और वो नीला और सफ़ेद रंग का होता था.
1: अच्छा
0: उसको हम मतलब इतना सफाई करते थे कि वो कभी कभी सफ़ेद रंग बहुत छोटा हो जाता था,
1: जी
0: पर हम उसको पहनते पहनते पहनते पहनते में से उसको छोड़ते ही नहीं थे. वो हमारा फैशन था,
1: जी
0: हम उसको फेंकते नहीं थे. साल में एक जोड़ा या चमड़ा का चप्पल मिल गया तो उसको एक ही जोड़ा बस काफ़ी, बाटा का चप्पल एक ही जोड़ा काफ़ी, या दो जोड़ा सूट काफ़ी. बस वो हम लोगों का फैशन था. मीन्स उसको आयरनिंग करना, उसको कपड़े को आयरनिंग करना, उसको मार लगाना, तो उसी को पहनना अच्छा लगता था. मतलब कि ये नहीं कि हर महीना एक जोड़ा जो, नो नो नो नो नो, वो नहीं चाहिए. जितना दिन तक अच्छी तरह से लास्टिंग हो, वो था हमारा ज़माना में. बाद में फर्स्ट टाइम जब हम लोग डिग्री कर रहे थे, तभी तो फर्स्ट टाइम हमको अभी भी याद है, 25 रुपया मीटर वाला कपड़ा निकला था. तब तो पूरा हाफ लॉन्ग मार्केट तो वाह, 25 रुपया मीटर, बाप रे.
1: जी
0: हाँ, पूरा हम लोग का बैच में तो हंगामा हो गया था. हमने बोला नहीं नहीं नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए. वो सिल्क का कपड़ा होता था,
1: जी
0: हम लोग का कॉटन का बहुत प्यारा था.
1: जी जी
0: तो वैसे ही है कि हमेशा डिसीशन को राइट में रखना है और बहुत केयरफुली चलना है.
1: बिल्कुल
0: अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आपको कोई मतलब तकलीफ में नहीं होना है, नहीं तो थोड़ा तकलीफ में आ जाएंगे आप,
1: बिल्कुल
0: लड़कियों के लिए स्पेशली.
1: जी जी पढ़ाई की बात आपने कही है, और एक बात है कि अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो तो आजकल सोशल मीडिया काफ़ी हेल्पफुल रहता है लड़कियों के
0: हाँ
1: लिए.
0: हाँ हाँ सोशल
1: जी
0: मीडिया बहुत हेल्पफुल है. वो अपना वॉइस रख सकते हैं, वो उसमें आपका जो अच्छी तरह से कोई सब्जेक्ट को अगर वो ना जाने हो, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशंस.
1: बिल्कुल
0: आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी कर सकता है वो. हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोडक्ट, अब इतना वैरायटी है, मतलब वी कैन नॉट पुट इट इन नंबर कि इतना ज़्यादा है. अभी
1: बिल्कुल
0: पहले जैसा नहीं था,
1: जी
0: पहले तो बहुत कंटेंट था और करियर स्किल डेवलपमेंट. अब यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, कैसा लोग न्यू न्यू स्किल सीख रहा है ना, नेटवर्क बिल्डिंग कर रहा है. दोस आर ब्यूटिफुल थिंग.
1: जी बिल्कुल
0: और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनको सिर्फ एक ही चीज़ रखना है कि यूज़ इट केयरफुली. हाँ, वो सोशल मीडिया को मतलब अच्छी तरह से केयरफुली यूज़ करे और उसको अवॉइड करे, जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो सब वगैरह वगैरह, हरासमेंट, वो सब को देखना भी नहीं चाहिए. एक सेकंड भी उसमें अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए.
1: बिल्कुल
0: हाँ, लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, वेरी प्रेशियस. वी शुडन यूज़ इवन 1 मिनट इन नेगेटिव थाट्स और एनी अदर, दोस आर नॉट बेनिफिशियल टू अस. जो मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसमें 1 मिनट भी उसको नहीं देना चाहिए, मेरा हिसाब से.
1: बिल्कुल जी आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपकी

0: टुकड़ा तो बनाया अपना ले
1: जी
0: वो मेरा अभी लेटेस्ट हॉबी है। और वो गार्डनिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है,
1: जी
0: सब्जी, घर का सब्जी, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, जस्ट छः, हम लोग 4-5 आदमी का है और बच्चा एक है हमारे साथ, 6 लोगों का है, बस थोड़ा गुजारा चल जाता है
1: जी
0: और
1: जी
0: अच्छा भी है, ऑर्गेनिक भी है, बाहर से फ्रेश वेजिटेबल लीव्स वगैरह अपना घर का मिलने से तो ठीक है, तो वो करता हूँ मैं।
1: जी जी आपने जैसे बोला ट्रेडिशनल ड्रेस, डिमासा ट्रेडिशनल
0: हाँ
1: ड्रेस आपने बनाना सीखा है, कितना टाइम लगता है एक ड्रेस बनाने में?
0: एक्सपर्ट लोगों के लिए तो ना एक हफ्ता में एक ही मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मिथिला
1: जी
0: जो एक्सपर्ट है, हम लोगों की तरह जो अभी 50 साल होने वाले हैं, हम अभी 2-3 साल में, हम लोगों को तो 1 महीना ही लगेगा बोलने जाने से।
1: जी
0: एंड इट्स सो मीन्स ब्यूटिफुली डन दो सर, कि एक एक को चुन के जब उसको हम लोग फूल उठाते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, हमें भी थोड़ा तो टाइम लगता है
1: बिल्कुल,
0: थोड़ा टाइम लगता है।
1: जैसे आपने बताया कि आपने कुछ तो आपने बनाया है ट्रेडिशनल ड्रेसेस, तो क्या सब आपने मेखला ही बनाया या कुछ अलग अलग डिफरेंट होते हैं?
0: मैंने अपना लिए पहले तो रिगू सिंगल सिंगल दो बनाया केसरिया रंग का, उसके बाद मैंने लाइट ब्लू कलर का एक सेट बनाया है, उसके बाद बॉटल ग्रीन का एक सेट, उसके बाद मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड के लिए वो लोग का एक हम गमछा होता है जो हम लोग रिशा बोलता है, वो बना के रखा है। और
1: जी
0: अभी दो मैं थोड़ा एक्सपर्ट हो गया तो मम्मी के लिए मैंने अभी शुरू किया है, वो कॉटन का है और वाइट में है, तो केयरफुली मैं अभी उसको बना रहा
1: जी
0: हूँ।
1: काफी पेशेंस और फोकस भी
0: यस
1: इससे सीखना
0: यस
1: पड़ता है।
0: यस पेशेंस एंड फोकस लगता है, नहीं तो उल्टा पुल्टा होने से फिर उसको खोलने में ज़्यादा टाइम जाता
1: जी, शादी के बाद, जैसे आपने पहले भी कहा है, शादी के बाद एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं मानती हूँ, कि
0: हाँ
1: काम करे या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट
0: हाँ
1: रहे, जो
0: हाँ हाँ
1: कहेंगे।
0: हाँ
1: जी आपने, जैसे आपने बताया कि आपने शादी के बाद भी आपने काम तो जारी ही रखा है, जी आपको कैसा लगता है?
0: मुझे अच्छा लगता है
1: जी
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मैंने आज तक अपने हस्बैंड को पूछा नहीं है कि उनका सैलरी कितना है, और मांगा भी नहीं है कि आपको सैलरी मिलने से ये करना है वो करना, नहीं, आई नेवर आक्स, आई नेवर डू दैट। उनका वो उनका ड्यूटी है,
1: जी
0: मेरा ड्यूटी मैं करता हूँ, बस दैट इज अभी तक ये इंटैक है कि मुझे नहीं मांगना
1: जी
0: है।
1: जी आपकी कोई बेस्ट मेमोरी या कोई चाइल्डहुड मेमोरी या कुछ आप जो शेयर करना चाहें?
0: हाँ, माई फर्स्ट ट्रेन जर्नी, वो जब मैं 5 साल का था शायद, वो मेरा मेमोरी में एक विविध इमेज रह गया है। जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा जन्म सिलचर में हुआ था,
1: जी
0: हुआ तो नदी, आपको मालूम है नदी का कंडीशन, वो तो प्लेन्स का नदी तो इतना पानी अच्छा नहीं होता है ना, थोड़ा मडी होता है। तो फर्स्ट टाइम वो सिलचर टू हरंगजाव जर्नी था और मैं माँ के साथ आया था। तो जैसे ही ये हिली एरिया में हम लोग ने एंटर करना शुरू किया हमारा ट्रेन, एंड उस टाइम पे वो कोयला वाला होता था ट्रेन जर्नी, मतलब नाक में कान में सब काला वो धुआं जाता है
1: जी
0: उस जमाने के टाइम। तो जब हरंगजाव में हम लोग ने पहुँचे, आई वॉज वेरी शॉक, मैं बहुत, मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर लगा। फर्स्ट टाइम मैंने हिल देखा, पहाड़ देखा, एज अ 6 6 ईयर ओल्ड गर्ल। उसके बाद नदी को जब देखा मैं चौंकत लग गया, उसमें इतना क्लियर वाटर, अंदर जो पत्थर है उसको दिखाई दे रहा है, ऊपर से मछली का बच्चा, छोटा छोटा छोटा छोटा मछली का बच्चा दिख रहा है। वो मेरा इमेज में पूरा रह गया। उसमें हम लोग का कुछ, हम लोग का पूजा हो रहा था, सभी को सुबह को नहाना था, ठंड भी था, बाद मेरा तो पूजा की तरफ ध्यान नहीं, मुझे तो मछली में, वो पत्थर में और पानी और पहाड़ में, मैं पूरा मोहित होके रह गया
1: जी
0: वही मेरा रह गया मेरे दिल में
1: जी आपकी बातों से लग रहा है कि आपको नेचर काफी पसंद है।
0: हाँ, मुझे नेचर बहुत पसंद है, मुझे शोर शराबा इतना पसंद नहीं है। मेरा जिंदगी में एक ही चीज़ नहीं मैंने नहीं खरीदा, वो है म्यूजिक सिस्टम, शायद मैंने नहीं खरीदा, वो वॉकमैन खरीदा जब मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन, मैंने एक छोटा सा वॉकमैन खरीदा, और पापा के टाइम में एक रेडियो हुआ करता था, बस वही मुझे वो चिड़िया का जो आवाज़ है और स्क्वेरल का आवाज़, और जब हम लोग ने सब फर्स्ट टाइम सेटल किया था हम लोग के हफलों में, तब फॉक्स का आवाज़ मिलता था रात को।

0: इवनिंग आवर्स में जो फॉक्स चीखते थे, वो सब मुझे बहुत पसंद था।
1: जी आप सब कुछ मैनेज कैसे कर लेती हैं?
0: ये मैं पूरा टाइम को एक डिवाइड कर लेता हूँ, जैसे कि आज मुझे अगर स्कूल का ड्यूटी करना है तो मैं पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, और हर अगर जिस दिन स्कूल का ड्यूटी मैं नहीं कर सकता तो उस दिन मैं अपना हस्बैंड को बोलता हूँ कि वो टेक ओवर कर ले, या मार्ट भी है तो वो मार्ट को देखने जाने से, मतलब पूरा डिवीजन टाइम टू टाइम, ये टाइम सुबह का टाइम है मैं गार्डनिंग में वाटरिंग करना, उसके बाद बच्चों को स्कूल पहुँचाना, उसके बाद मार्ट में जाना, उसके बाद लॉज में जाना, तो बहुत टाइम आ जाता है। तो मैं एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट ही देता हूँ
1: जी
0: सब में, और जितना कंप्यूटर में काम हो वो मैं सुबह को करता हूँ, जितना मेरा ट्रांजेक्शन हो या जो भी हो, और किसी से इम्पोर्टेंट बात करना है तो ठंडे दिमाग में सुबह को 6 बजे से 7 बजे तक, उस टाइम पे। अभी बच्चे बड़े भी हो गए हैं, देन दे डू देयर ओन थिंग्स, उनको अपना टिफिन बना लेता है, अपना ड्रेस भी खुद कर लेता है, सब कुछ करा उनको, मतलब अभी मेरा इतना हेल्प जरूरी नहीं है, इसलिए मैं अभी और थोड़ा गार्डनिंग कर सकता हूँ इसी वजह से। तो उस तरह से कि अगर मैं 1 बजे से 2 बजे तक मार्ट में हूँ तो मैं 3 बजे से 4 बजे तक लॉस में थोड़ा देख लेता हूँ, तो इस तरह से मैं टाइम को थोड़ा वो कर देता हूँ। और अभी तो और भी अच्छा हो गया कि सीसीटीवी कैमरा है सब तरफ,
1: जी जी
0: तो अगर चाहिए, अगर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया हेल्थ को तो मैं सीसीटीवी के थ्रू से देख लेता हूँ,
1: जी
0: तो वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, वही बात है।
1: बिल्कुल जी। चलिए अभी हम कार्यक्रम के अंत तक आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी श्रोता हैं आज आपको सुन रहे हैं, उन सब के लिए आप एक मैसेज दीजिए अपनी तरफ से।
0: सभी श्रोताओं के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमें वुमेन को एम्पावर करना चाहिए। वुमेन एम्पावर मीन्स एम्पावरिंग द नेशन, आवर नेशन। लेट गर्ल्स ड्रीम विदाउट एनी लिमिट, और फ्रीडम और वैल्यू तो कोएग्जिस्ट कर सकता है। बस वही, आई एम इंडिपेंडेंट नॉट बिकॉज आई रिजेक्ट अदर्स बट बिकॉज आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। बस
1: That's so
0: इतने
1: great.
0: से, थैंक यू सो मच कृष्णा, दैट वॉज अ वंडरफुल टाइम विद यू।
1: थैंक यू सो मच मैम, आपके साथ बातचीत करके हमें भी बहुत आनंद आया है, और मैं यही कहूँगी कि आपका दिन शुभ रहे और आप ऐसे ही
0: थैंक
1: सक्सेसफुल
0: यू
1: रहे अपने लाइफ में। आशा करते हैं हमारे जितने भी श्रोता है आज आपको सुन रहे हैं, सबको आपकी बातें बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच
0: थैंक यू थैंक यू सभी को, थैंक यू।
1: जी। आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर, और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता तृष्णा चक्रवर्ती द्वारा वुमेन प्रोग्राम का पुनर्प्रसारण, साथ ही आपने सुना एक प्यारा सा फिल्म सॉन्ग। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ होने के कारण इसका विशेष महत्व है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति JD Vance से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति JD Vance और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोट डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोट डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोट डी आइवर के लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी के गोरी मेडू के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। श्री शाह मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी की है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1,202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। कल श्री अमरनाथ जी गुफा में 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। चीन के हिफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के

0: सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। मैच दक्षिण कोरिया के आसन में कुछ देर बाद 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब हम सुनते हैं हमारा आज का पोएम ऑफ द डे।
2: Good morning, myself Vihan Thapa. Today I'm going to recite a poem written by R.L. Stevenson named My Shadow. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He's very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into the bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball. And he sometimes goes so little that they're none of him at all. He hasn't got any idea of how ought to play and can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close behind me, he's a coward you can see. I the thing seem to stick to nursery as the shadow stick to me. One morning very early before the sun was up, I rose and found the shining dew on very butter cup. But my lazy little shadow, like an urgent sleepy hat, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. Thank you.
1: इस पॉइम ऑफ द डे के साथ चलिए श्रोताओं शुरू करते हैं विशेष कार्यक्रम आज का दिन। इस कार्यक्रम के तहत हम एक नज़र डालेंगे आज के दिन के इतिहास के उन सुनहरे पन्नों पर जिन्होंने दुनिया और हमारे देश की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आज 9 अगस्त का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। जैसे वर्ष 1892 में थॉमस अल्वा एडिसन ने टू वे टेलीग्राफ का पेटेंट कराया था। वर्ष 1925 में बहुत प्रसिद्ध काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी। अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर वर्ष 1945 में आज ही के दिन दूसरा परमाणु बम गिराया था। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया था। आज ही के दिन वर्ष 2005 में नासा का मानव युक्त अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 14 दिन की अपनी साहसिक और जोखिम भरी यात्रा के बाद कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतरा था। भारतीय सेना ने 2012 को परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था।

श्रोताओं, आज 9 अगस्त के अवसर पर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे ऐतिहासिक अध्याय को स्मरण करते हैं जिसने देशवासियों के मन में आज़ादी की नई चेतना जगाई। ये दिन काकोरी कांड की वर्षागंठ के रूप में भी याद किया जाता है। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट क्रांतिकारियों के एक दल ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को ले जा रही ट्रेन को रोककर सरकारी धन अपने कवच में लिया। इस साहसिक अभियान का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संसाधन जुटाना था। इस ऐतिहासिक कार्रवाई का नेतृत्व पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, असफाक उल खा, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह जैसे वीर क्रांतिकारियों ने किया। इस घटना के बाद अंग्रेजी शासन ने अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद कई वीरों को फांसी और अन्य साथियों को कठोर कारावास की सजा दी गई। उनके अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। काकोरी कांड हमें ये संदेश देता है कि देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता।

अब जन वर्षागंठ की बात करें तो आज ही के दिन वर्ष 1892 में विख्यात पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षा शास्त्री एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकार विनायक कृष्णन गोकक का जन्म 1909 को हुआ था। वर्ष 1933 में आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार मनोहर श्याम जोशी का जन्म हुआ था। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान का जन्म आज ही के दिन साल 1954 में हुआ था। साल 1975 में भारतीय अभिनेता महेश बाबू का जन्म हुआ था। साथ ही पुण्यतिथियों के संदर्भ में जर्मनी के शायर और लेखक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हरमैन हेसे का निधन वर्ष 1962 में हुआ था। जीवन में 30 वर्ष जेल में बिताने वाले स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती का निधन 1970 में हुआ था। आज ही के दिन साल 2002 में प्रसिद्ध कथावाचक एवं हिंदी साहित्यकार राम किरकर उपाध्याय का निधन हुआ था।

श्रोताओं, आज 9 अगस्त को पूरे देश में अगस्त क्रांतिकारी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1942 में इसी दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया और अंग्रेजों से भारत छोड़ने का आह्वान किया। इस आंदोलन में

लाखों भारतीयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल की यातनाएं सही, लेकिन आजादी की लड़ाई से पीछे नहीं हटे। ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और स्वतंत्रता की राह को और अधिक मजबूत बनाता गया। अगस्त क्रांति दिवस हमें अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, त्याग और देशभक्ति की याद दिलाता है। ऐसे ही प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी जनजाति दिवस भी मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1994 में की गई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर के आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं, भाषाओं, ज्ञान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आदिवासी समुदाय प्रकृति के सच्चे संरक्षण माने जाते हैं। उनकी पारंपरिक जीवन शैली, लोक कला, लोक संगीत, हस्तशिल्प और प्रकृति संरक्षण से जुड़ा ज्ञान मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। भारत में भी अनेक आदिवासी समुदाय अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और विविध परंपराओं के माध्यम से देश की एकता और सांस्कृतिक समृद्धि को सशक्त बनाता है। विश्व आदिवासी जनजाति दिवस हमें ये संदेश देता है कि हम आदिवासी समुदायों के अधिकारों का सम्मान करें, उनकी भाषाओं और परंपराओं को संरक्षित करें तथा उनके समावेशी और सतत विकास में सहभागी बनें।

इसी जानकारी के साथ ही हम समाप्त करते हैं आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब हम सुनते हैं कुछ प्यारे फिल्मी नगमे।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है।
1: आपकी गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलोंग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर व्हाट्सएप करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। दोस्तों अब समय हो चला है चिल्ड्रन प्रोग्राम सुनने का और इस हफ्ते मैं लेकर आई हूँ दो ऐसे मज़ेदार और रोमांचक कहानियाँ जिसमें रहस्य, दोस्ती, कल्पना और एक प्यारी सी सीख है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चिल्ड्रन प्रोग्राम।

आज का हमारा पहला कहानी है जंगल का रहस्यमयी पेड़। एक छोटे से गांव में आरव नाम का 10 साल का लड़का रहता था। आरव बहुत जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजें जानना, जंगल में घूमना और पेड़ों पौधों को देखना बहुत पसंद था। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ था। गांव के लोग उसे बोलता पेड़ कहता था। आरव ने कई बार इस पेड़ के बारे में सुना था। दादी कहती थी, उस पेड़ के पास अकेले मत जाना। लेकिन आरव हमेशा सोचता, आखिर एक पेड़ बोल कैसे सकता है? एक दिन स्कूल से लौटते समय अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आरव दौड़ते दौड़ते जंगल के किनारे पहुंचा। उसे पास ही वही पुराना पेड़ दिखाई दिया। बारिश से बचने के लिए वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, डरो मत। आरव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। आरव ने ऊपर देखा, पेड़ की एक मोटी साया धीरे धीरे हिल रही थी। क्या तुम बोल रहे हो? आरव ने डरते हुए पूछा। पेड़ ने कहा, हाँ। आरव की आंखें आश्चर्य से भरी हो गई। लेकिन पेड़ कैसे बोल सकता है? पेड़ हंसते हुए बोला, जिस तरह तुम सुन सकते हो उसी तरह मैं भी बहुत कुछ महसूस कर सकता हूँ। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इंसान पेड़ों की भाषा सुनना भूल गए हैं। आरव चुप हो गया। पेड़ ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी? हाँ, जंगल खतरे में है। आरव घबरा गया। किससे? पेड़ ने अपनी एक शाखा गांव की ओर झुका दी। कुछ लोग जंगल के पेड़ों को काटने की योजना बना रहे हैं। आरव को बहुत दुख हुआ। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें लगता है कि जंगल केवल लकड़ी है। वो ये भूल गए हैं कि जंगल पानी है।

है, हवा है, पक्षियों का घर है और धरती की सांस है। आरव ने तुरंत कहा, मैं जंगल को बचाऊंगा। पेड़ मुस्कुराया, अकेले नहीं, तुम्हें अपने दोस्तों की मदद लेनी होगी। अगले दिन आरव ने अपने दो दोस्तों मीरा और कबीर को पूरी बात बताई। कबीर हंस पड़ा, तुम्हें सच में लगता है कि पेड़ तुमसे बात करता है? आरव बोला, हाँ, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो। तीनों जंगल पहुंचे। आरव ने पेड़ के पास जाकर कहा, हम आ गए। कुछ क्षण तक कोई आवाज नहीं आई। कबीर हंसने लगा, देखा, कोई पेड़ नहीं बोलता। तभी ऊपर से एक हरा तोता उड़कर नीचे आया। उसने कहा, बच्चों, तुम देर से आए हो। तीनों बच्चों डर पीछे हट गए। मीरा ने धीरे से पूछा, अब तो तुमने भी सुना? कबीर ने सिर हिलाया, हाँ, अब मुझे यकीन हो गया। तोते ने बताया कि जंगल के कुछ हिस्सों में पेड़ों पर लाल निशान लगाए गए हैं। इसका मतलब था कि उन्हें जल्द ही कटा जाने वाला था। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे गांव के लोगों को सच्चाई बताएंगे, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। तभी आरव को एक विचार आया। उसने जंगल के पेड़ों की तस्वीरें खींची। लाल निशान वाले पेड़ों की सूची बनाई और गांव के बुजुर्गों से बात की। मीरा ने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर पोस्टर बनाए, पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ। कबीर ने गांव के चौक में एक छोटा सा नाटक किया। धीरे धीरे पूरा गांव बच्चों के साथ खड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद जंगल काटने आए लोग गांव पहुंचे, लेकिन इस बार वहां केवल जंगल नहीं था। सैकड़ों गांव वाले हाथों में पेड़ और पोस्टर लेकर खड़े थे। गांव के मुखिया ने कहा, ये जंगल किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ये हमारे आने वाले पीड़ितों की धरोहर है। लोगों ने पेड़ों को काटने से रोक दिया। उस दिन गांव में एक नया नियम बनाया गया, बिना अनुमति कोई पेड़ नहीं काटेगा और हर साल परिवार कम से कम 5 पौधे लगाएंगे। आरव और उसके दोस्तों की मेहनत सफल हो गई। कुछ महीनों बाद जंगल पहले से भी अधिक हरा भरा हो गया। एक शाम आरव फिर उस पुराने पेड़ के पास गया। उसने पूछा, अब तो जंगल सुरक्षित है, क्या तुम खुश हो? पेड़ ने धीरे से कहा, बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। आरव ने पूछा, तुमने हम तीनों को ही क्यों चुना? पेड़ कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि बड़े लोग अक्सर कहते हैं कि एक बच्चा दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन बच्चे ये मानने को तैयार नहीं होते कि कोई काम असंभव है। आरव मुस्कुराया। पेड़ ने कहा, याद रखना आरव, प्रकृति हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन हमारी लालच नहीं। आरव ने उस दिन एक पौधा लगाया। उसने उसका नाम उम्मीद रखा। सालों बाद वो पौधा एक विशाल पेड़ बन गया और उसके नीचे गांव के बच्चे बैठकर पढ़ने लगे। कभी कभी जब हवा उस पेड़ की पत्तियों से गुजरती तो बच्चों को लगता जैसे जंगल आज भी उनसे कह रहे हैं, मुझे बचाओ, मैं तुम्हें भविष्य दूंगा। कहानी की ये सीख है कि प्रकृति केवल हमारे आसपास मौजूद चीजें नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। अगर हम आज पेड़, जंगल, पानी और जीव जंतु की रक्षा करेंगे तभी आने वाले पीढ़ियों को एक सुंदर और सुरक्षित दुनिया मिल सकेगी। छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है।

चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर, जिसका नाम है चांद की रोशनी वाला गांव। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। गांव का नाम चांदपुर इसीलिए रखा क्योंकि वहां की रातें बहुत सुंदर होती थी। जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव चांदनी में नहा जाता। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आसमान में पूरा चांद था, फिर भी गांव में बिल्कुल अंधेरा था। गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए। आज चांदनी कहाँ चली गई, किसी ने पूछा। शायद बादल है, दूसरे ने कहा, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। गांव की 10 साल की तारा भी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने कमरे की खिड़की पर हल्की सी चमक दिखाई दी। वहां एक छोटी सी नीली चिड़िया बैठी थी। तारा ने खिड़की खोली। चिड़िया अंदर आई और बोली, तारा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तारा डर गई। तुम बोल सकती हो, चिड़िया मुस्कुराई। आज रात हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए, चिड़िया ने कहा। चांद की रोशनी गायब नहीं हुई है, उसे किसी ने चुरा लिया है। तारा हैरान रह गई। किसने? ये पता लगाने के लिए हमें चांद की पहाड़ी पर जाना होगा। तारा ने अपने दोस्तों, दो सबसे अच्छे दोस्तों आरुष और परी को बुलाया। तीनों चुपचाप गांव से बाहर निकल पड़े। चांद की पहाड़ी गांव से बहुत दूर थी। रास्ते में आने उन्होंने एक पुराना पत्थर का पुल मिला। पुल के बीच में एक शिलालेख लिखा था, जो अपने डर पर जीत पाए वही आगे जा पाएगा। परी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तभी पुल के नीचे से तेज हवा चलने लगी। आरुष पीछे हट गया। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए, तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर लगना बुरी बात नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना हिम्मत है। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पुल पार कर लिया। पुल पार करते ही उन्हें एक चमकता हुआ जंगल दिखाई दिया। पेड़ों की पत्तियां तारों की तरह चमक रही थी। अचानक एक बूढ़ा उल्लू सामने आया। उसने कहा, तुम लोग चांद की रोशनी खोज रहे हो? तारा ने सिर हिलाया। उल्लू बोला, रोशनी को एक अंधेरी गुफा में छिपाया गया है। किसने? आरुष ने पूछा। उल्लू ने उत्तर दिया, छाया राजा ने। तीनों डर गए। छाया राजा का नाम सुनते ही जंगल की रोशनी थोड़ी कम हो गई। उल्लू ने कहा, लेकिन याद रखना, छाया को तलवार से नहीं हराया जा सकता। तो कैसे? परी ने पूछा। उल्लू मुस्कुराया, उसका उत्तर तुम्हें गुफा के अंदर मिलेगा। तीनों गुफा के पास पहुंचे। गुफा इतनी अंधेरी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है? तारा ने साहस जुटाकर कहा, हम चांद की रोशनी लेने आए हैं। अंधेरे में दो बड़ी आंखें चमकी। छाया राजा सामने आया। वो बहुत डरावना दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। तुम लोग रोशनी क्यों चाहते हो? तारा ने कहा, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे डर रहे हैं, फूल नहीं खिल रहे, पक्षी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल रहे। छाया राजा चुप रहा, फिर बोला, तुम जानते हो कि मैंने रोशनी

असुगिरा, वहां एक छोटा सा फूल खिल गया। छाया राजा धीरे से मुस्कुराया। तुम पहली इंसान हो जिसने मुझसे लड़ने के बजाय मेरी बात सुनी। उसने हाथ उठाया, अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर गई। चांद की रोशनी एक चमकती हुई गेंद के रूप में हवा में तैर रही थी। छाया राजा ने वो रोशनी तारा को दे दी। इसे अपने गांव ले जाओ। जैसे ही तारा ने रोशनी को आसमान की ओर उठाया, पूरा चांद पहले से भी अधिक चमकने लगा। चांदपुर फिर से चांदनी से भर गया। पेड़ों पर फूल खिल उठे, पक्षी गाने लगे, गांव के लोग खुशी से बाहर निकल आए। तारा, आरुष और परी भी वापस गांव पहुंचे। लेकिन उस रात तारा ने एक बात सीखी, हर अंधेरा बुराई नहीं होता। कभी कभी अंधेरे के पीछे छिपा होती है किसी की उदासी, अकेलापन या मदद की पुकार। अगले दिन तारा ने गांव में एक छोटा सा नियम बनाया, जो भी अकेला हो उसके साथ बैठकर उसकी बात सुनेगा। और कहते हैं उस दिन के बाद चांदपुर में चांदनी कभी कम नहीं हुई, क्योंकि वहां के लोग ने समझ लिया था रोशनी बांटने से कभी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को केवल उसके व्यवहार से अच्छा या बुरा समझने के बजाय उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दया, दोस्ती और समझदारी कई बार वो कर सकती है जो ताकत नहीं कर सकती।

इसी रोमांचक कहानी के साथ ही हम समाप्त करते हैं इस हफ्ते के लिए चिल्ड्रन प्रोग्राम का ये कार्यक्रम। चलिए अब हम सुनते हैं कुछ प्यारे फिल्मी गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गाने। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात।

0: डीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता

0: बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहाँ निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछे समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को PM ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक का शीर्षक है, हाइब्रिड और EV कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िये जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्य के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे समाचार प्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज़, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से।

0: The U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership, Meghalaya government rejects concerns over environmental degradation due to upcoming Shillong Ropeway project. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis jointly lays the foundation stone for the new Meghalaya House in Navi Mumbai, and Arunachal Pradesh Governor L.K. General K.T. Parnaik reviews law and order situation in the Director General Office in Itanagar. With that, we end the Northeast News Bulletin from Akashvani Shillong. Have a nice day.
1: आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए गए थे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हफलांग केंद्र है।
2: हेलो हफलांग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलांग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलांग,
3: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
2: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलांग।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब हम सुनते हैं कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का प्रायोजित कार्यक्रम करी छे।
6: We bring you a talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning, by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
7: भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है, उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें, तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी, वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा। तो हम जब इस टॉपिक पर बात करें, तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीज़न कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं, उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं, वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है। तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं, उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर अब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो

0: जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें, उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे, एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टीन्यूटी भी बिलोंग थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। लेकिन जैसे जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21, वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें, वो कहता है नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा हैं, और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु के समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं। तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज़ का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। राम दुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 41, स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज। एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमजोर वर्ग हैं उन सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन कमजोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी है जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सकें। हमारे पास अन्य कानून भी हैं जैसे कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है जहां कि ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। देखिए पहले हम कहते थे बेटी को जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी। और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए, इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है। पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएँ बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning.
2: Major areas जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, income security, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये ensure कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक income है तो उनको हम protect कर सकते हैं। फिर उनके health care एक बहुत ही major area of concern है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं functional capacity उनकी impair हो जाती है। उनकी safety और security के लिए helplines बनाई जानी चाहिए, जो कि हमारे state में बना भी रखी हैं। Housing loans मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहे, उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं, वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, ज़रूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए, तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, बच्चे मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतंग एक गेम डिजाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें ज़रूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाएं। हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स में ही, बच्चे समझे, वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सकें, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सकें, उनको एजुकेट कर सकें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज़ रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जाकर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है, सारे के सारे हमारे पास पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का. उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा. वो ये नहीं समझते, परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी. आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं, बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी, आप तो समझ सकते थे. लेकिन अब देखिए, इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना, आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि मैं अपने घर में एब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूंढूं, या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफर को भी अवॉइड कर सकती हूँ. तो वी हैव गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज कि लोगों को पता नहीं है, जिसकी की वजह से वो घबरा जाते हैं. एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी. सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है. बस ज़रूरी है अवेयरनेस की, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस, जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी.
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग, बाय प्रोफेसर वागेश्वरी देसवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. दिस टॉक वॉज पार्ट ऑफ अ वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का प्रायोजित कार्यक्रम का क्रमांक 6. चलिए हम सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्म सॉन्ग.

श्रोताओं, आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुन रहे थे पूर आंचलिक बातोरी। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को जारी करते हुए सबसे पहले खेलमा कार्यक्रम में हम सुनेंगे मुलजोंगली जायते और उनके साथी।

दोस्तों, खेलमा कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे गुलजोन लिजायती और उनके साथियों के गाए कुछ खेलमा भक्ति गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। चलिए अब रांगखोल कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ रांगखोल पारंपरिक गीत अमोई रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ों में।

दोस्तों, रांगखोल कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे अमोय रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ रांगखोल पारंपरिक गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। चलिए अब जयंती कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ जयंती भक्ति गीत भाभोक संगसाई और उनके साथियों की आवाज़ों में।

दोस्तों जयंत्या कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे भबोक संगशाय और उनके साथियों के गाए कुछ जयंतिया भक्ति गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए ब्याते कार्यक्रम के सुनते हैं जेनेवी आमलाय और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ ब्याते भक्ति गीत।

श्रोताओं, ब्याते कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे कुछ ब्याते भक्ति गीत। गायक कलाकार थे जैनवी गामलाई और इनके साथी। और इसी के साथ ही समाप्त होता है इस सभा के लिए स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। दोस्तों, अब आपके मनोरंजन को जारी रखते हुए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। इसी के साथ मुझे मनाली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का पहला भाग।
2: चलते
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, आज स्वागत कर रहे हैं हम सभी उनका जिनके इशारों पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थिरके हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महेश बाबू, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और लगभग 30 से अधिक दिग्गज अभिनेताओं को अपनी कोरियोग्राफी से नया अंदाज देने वाली। वहीं माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, जूही चावला, अमीषा पटेल, अंतरा माली और अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के यादगार गीतों को अपनी कल्पना और सृजनशीलता से जीवंत बनाने वाली बड़ी प्यारी सी कोरियोग्राफर। आज की बातचीत केवल फिल्मों तक नहीं, आज हम जानेंगे एक कलाकार के संघर्ष की कहानी, सफलता के पीछे छिपी मेहनत, शूटिंग के अनसुने किस्से और सितारों के साथ काम करने का अनुभव और उस सफर को जिसने इन्हें भारतीय फिल्म जगत के अग्रणी कोरियोग्राफरों में स्थापित किया है। चलिए बिना किसी देर के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में पूरे आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध, सम्मानित और बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
4: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
3: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
3: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है या डांस का चस्का जिसे कहते हैं, ये लगा कब, ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए?
4: सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया
3: जी,
4: उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते हैं। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रही थी।
3: ओके।
4: तो हुआ यूं कि घर की जरूरतें होती है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे एहसास, मोहब्बत, प्यार, तरबियत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ कि घर में जरूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक मधुमति एकेडमी। मधुमति जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती
3: जी,
4: थी
3: जी, जी, बिल्कुल।
4: उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे। वहां पे एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में।
3: क्या उम्र होगी वो? लगभग
4: 7 स्टैंडर्ड में होंगी। तो मेरी बहन और मैं, हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे
3: जी।
4: बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम दोनों को बुलाते थे।
3: अच्छा,
4: कि आप कंपटीशन में आ जाओ
3: जी।
4: तो मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी
3: जी।
4: मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी।
3: अच्छा।
4: तो जरूरत तब हुई जब लगा कि फीस भरना है, छोटे भाई बहन है, हम 5 भाई बहन है।
3: अच्छा।
4: तो लगा कि चलो कुछ काम भी किया जाए, ट्यूशन देती थी। फिर लगा कि अच्छा डांस अच्छा करते, तो मधुमति मैम ने देखा और मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ।
3: अच्छा, वहाँ
4: पे मैं, हाँ, एक हाथ मिल गया। और वहाँ पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के। उनके जो शौहर थे वो पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बच्चों को। तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में एक चलन है कि उर्दू सिखाया जाता है, तो वो मैं सिखा रही थी उनके साथ एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें। अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है,
3: अच्छा।
4: तो मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम, अपने साथ रख के आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहां जाते थे, और पता नहीं था कि वो चीज कब जाके जिंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा जिंदगी का एक फ्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो फ्लो चलता है, फ्लो के साथ चलो
3: जी।
4: और एक हमारी तरबियत को नहीं भूलना है।
3: क्या बात,
4: अपनी तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है।
3: मतलब नदी जैसे बह रही है बहते जाओ, लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं है। जी, बहुत बढ़िया बात।

0: और ज्यादा ऊपर जाके छलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा सूखी घास में मिलके वहां चला जाए,
1: जी
0: समेटते हुए आगे बढ़ना है। उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। वहाँ से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज के ऑफर आने लगे, तो गणेश हेगड़े जी
1: जी
0: जो बहुत
1: बहुत
0: बड़े
1: बढ़िया
0: कोरियोग्राफर है,
1: कोरियोग्राफर
0: उन्होंने
1: हैं।
0: मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप गणेश हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज
1: बिल्कुल
0: के कोरियोग्राफर्स हैं।
1: जी
0: तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा, तो
1: हाँ,
0: अम्मी मेरी
1: तो
0: हमेशा साथ होती थी।
1: अमाउंट के लालच में आप काम
0: अमाउंट
1: की
0: ये था,
1: जाते
0: हाँ, कि एक इतना अमाउंट आएगा तो दिमाग सोचने लगा कि अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमति मैम
1: कैलकुलेशंस
0: ने,
1: चालू हो
0: हाँ,
1: गए।
0: मधुमति मैम ने बोला बेटा करो, बुरा नहीं है,
1: हाँ
0: अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहां से, और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी,
1: तो आप उस
0: मुझे
1: समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में
0: नहीं,
1: कर रही
0: बिल्कुल
1: थी
0: नहीं
1: या लीड डांसर्स थे?
0: नहीं मैं स्टेज पे डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ। तो
1: अच्छा
0: उनके अपने अपने ट्रुप होते थे, तो
1: जी
0: पहले गणेश हेगड़े, लॉलीपॉप, इन्हीं का ट्रुप चलता था।
1: जी
0: उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां, 12 लड़कियां ऐसे होती है। उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी जो अभी कोरियोग्राफर है,
1: जी
0: तो पोनी वर्मा ने, यू नो, शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी गॉट मी। तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेश आचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है।
1: वो चीज़ हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो
0: हाँ,
1: चेहरा अलग
0: तो
1: दिखता है,
0: क्योंकि आप
1: चमकता हुआ।
0: क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं,
1: जी
0: उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ
1: जी
0: तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है
1: घुसा
0: बचपन
1: हुआ है
0: से,
1: जी।
0: तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं, उस वक्त वो एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, तो
1: जी
0: मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी, मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई। उन्होंने
1: अरे
0: अम्मी
1: वाह
0: से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था
1: तो उन्हें
0: काफ़ी
1: एक
0: उस
1: और
0: वक्त।
1: हाथ चाहिए था जी।
0: तो फिर उस तरह से माई मदर यूज़ टू बी देयर विथ मी ऑलवेज, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन टू टेक डिसीजंस, क्योंकि मैं थी बहुत छोटी। तब तक मैं यहाँ पहुँची 8-9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी,
1: बहुत छोटे थे
0: स्टिल
1: आप,
0: स्कूल में थी,
1: बहुत
0: तो वो
1: छोटे थे।
0: मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3-4 साल काम किया, बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते सीखते सीखते। फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का
1: क्या
0: मौका
1: बात
0: मिला,
1: है,
0: फिर एक, मैं सरोजी की बहुत बड़ी फैन थी,
1: बिल्कुल
0: मैं
1: सब
0: काम बहुत बड़ी फैन,
1: है।
0: मतलब मैं
1: मास्टर जी के फैन सब
0: सब
1: है
0: है। जब
1: जी।
0: मैं असिस्टेंट थी, उनके गाने देख देख कर, उनकी जो लचक, उनका ये, उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एक लव्य, काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एक लव्य बन गई।
1: क्या बात है।
0: आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोजी समा गई, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए।
1: जी
0: तो वो एक, उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एक लव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया, उन्हें दूर से देख देख कर निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा।
1: आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे, है ना?
0: बहुत ज्यादा
1: तो कोई गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना
0: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी
1: है। तो
0: फैन
1: हमारे
0: हूँ।
1: विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार करेंगे।
0: आप जैसे देखो, मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो हे प्यार दू,
1: क्या
0: गोरी
1: खूबसूरत
0: बैया तो
1: गीत
0: पे
1: है।
0: वार
1: जी
0: दू।
1: जी जी जी
0: एक
1: गाइड
0: तो जो
1: फिल्म का ये गाना
0: अल्फाज,
1: जी।
0: जो लिखाई होती थी उस वक्त की लिरिक्स, लता जी जब गाती थी, तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए।
1: जी
0: तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पुराने गानों की। आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ जो
1: तो
0: मुझे
1: फिर उनमें से
0: सुकून
1: कोई
0: देते
1: एक
0: हैं।
1: हीरा जो आप बता दें तो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
0: एक तो पहले सुनाइए, आजा पिया तो हे प्यार दो, गोरी बैया तो पे वार दो,
1: चलिए
0: उसके बाद,
1: जी,
0: हाँ,
1: उसके
0: ये
1: बाद की
0: गाना, उसके
1: भी
0: बाद लग जा गले
1: अच्छा
0: के फिर ये हंसी रात हो ना हो,
1: बड़ी बढ़िया सी फरमाइश है आपकी, पर
0: बहुत
1: हम
0: ज्यादा
1: आपके तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना जो है, आजा पिया तो है प्यार दूं, काइट
0: प्लीज
1: फिल्म का गाना है,
0: प्लीज
1: सुनते हैं ये गीत।
0: प्लीज सुनाइए।

0: तो शबीना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे।
1: अब मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीज़ें तो हम जानते ही नहीं थे, और कई सारे लोग बोले बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे, आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया?
2: सी, जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की बात है, आजकल अलग माहौल है। जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है।
0: जी, जी।
2: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है
0: जी,
2: उस लेवल पे करना है, वहां पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने
0: शुरू
2: आती
0: हो जाती है,
2: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते हैं और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे डांसर,
0: वेरी गुड डांसर,
2: वेरी ग्रेसफुल। उनका
0: yes.
2: ग्रेस उनके मास्टर से आता है, जो कमल मास्टर जी थे।
0: जी,
2: और
0: वो
2: कमल
0: भी
2: मास्टर जी बहुत कमाल, उन्होंने एक ट्रेंड, जैसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था,
0: जी,
2: भोली सूरत दिल के जो वो हाथ का
0: वो
2: स्टेप
0: सब
2: था,
0: कमल जी का
2: वो
0: दिया हुआ।
2: कमल
0: जी
2: जी
0: जी
2: उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी,
0: जी
2: उनके असिस्टेंट हूँ मैं। तो
0: बड़ी अच्छी परिपाटी से चली आ रही
2: बिल्कुल,
0: है।
2: वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे
0: हाँ
2: कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नजर नहीं हटेगी, और वही मास्टर जी करते थे, गणेश मास्टर जी। वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए।
0: क्या डायलॉग
2: हाँ,
0: है।
2: मेरे लिए वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती।
0: जी
2: तो ग्रेस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के
0: जी
2: भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है
0: बिल्कुल
2: कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल, आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है, बट आपको देख रही है। तो
0: हाँ, क्योंकि
2: इसलिए
0: एक्सप्रेशंस उसको आपसे मिलेंगे,
2: बिल्कुल
0: फीमेल बाय
2: अदायगी
0: एक्सप्रेशंस
2: मुझसे
0: आप ही
2: मिलेगी।
0: दोगे।
2: डुएट सॉन्ग है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं,
0: हाँ,
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं
0: नोकिया।
2: असिस्टेंट थी
0: जी
2: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ, गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है। तो
0: हाँ
2: मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा कर अपने मास्टर को कॉपी करना
0: जी
2: और करके दिखाना।
0: जी
2: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने

0: पालो 90s के
1: जी,
0: जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने उनकी सारी फिल्में उठाओ गणेश मास्टर जी ने किए,
1: गणेश मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना खान,
0: शबीना खान तो अब जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी कभी करिश्मा आपकी तरह कर रही थी, तो ये जो
1: मैं ही सिखा रही थी
0: मैं ही, हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते, तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं।
1: तो फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इरा का जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया।
0: मैं मजेदार बताऊं, थोड़े से लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें
1: जी,
0: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी दे रे पीछे पीछे पीछे, उसमें मैं असिस्टेंट थी, और जितने लोग मुझे अब देखते हैं जिन्होंने देखा है बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती थी।
1: नहीं, आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से, तो
0: उस वक्त काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो
1: जी।
0: तो वो गाना अगर आप देखोगे या आप प्ले कर पाओ,
1: बिल्कुल ये गाना हम जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरुला जी ने गाया हुआ ये गाना है, और बड़ा खूबसूरत वो बुलंद आवाज के साथ, उस बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है, तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शबीना खान पूरा डांस दिखा रही हैं, और जो रानी मुखर्जी हैं उस डांस को कर रही हैं, तो आपकी ये बेहतरीन असिस्टेंट कोरियोग्राफी डायरेक्शन, खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से।
0: ठीक है।

0: ये गीत तो बड़ा प्यारा है,
1: हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन ज़रूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है, और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी, वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
2: सो ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं जी। जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूँ
1: हाँ।
2: और अरबाज खान को
1: हाँ।
2: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है।
1: अच्छा।
2: तो सलमान भाई ने कहा कि हू बेटर देन शबीना। सो बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके YouTube पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर

0: भी समझ नहीं आया था, आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि दो लड़कियां थी वहां
1: ऐसा
0: पे।
1: मुझे भी समझ नहीं आया था उस
0: हाँ आप
1: गाने में
0: देखिए,
1: जी।
0: गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े सेम हेयर स्टाइल एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर, दैट सॉन्ग, ब्रदर हेलो ब्रदर,
1: उसमें दोनों जगह पे आप हैं
0: मैं
1: बट
0: हूँ। और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है,
1: ओ
0: तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या। बहुत लोगों को लगता था, इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो ऐसे दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट,
1: जी जी
0: पर्सनालिटी,
1: जी
0: बाल, काफी कुछ मिलता था उस वक्त।
1: जी
0: और फिर एक गाना था, काली नागिन की जैसी जुल्फें
1: ब्यूटीफुल
0: तेरी काली
1: सॉन्ग
0: काली, मैं
1: यस
0: असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी
1: हो
0: के
1: गए
0: साथ
1: थे।
0: हो जाते थे,
1: अच्छा
0: तो वो एक गाना था। उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने
1: वो
0: का
1: मटकी
0: मोल,
1: फोड़ने वाला
0: मटकी
1: गाना
0: फोड़ने वाला गाना,
1: जी
0: वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइड शॉट, तो काफी ऐसी फिल्में थी जहाँ पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले,
1: जी
0: तो आई यूज टू डू इट।
1: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए, मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके आ गए
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
1: जी। अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय
0: बहुत सारे
1: जी। उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया
0: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना
1: जी
0: चाहूंगी, ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां
1: जी
0: है वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने,
1: पढ़ाई नहीं छोड़नी है जी, बहुत
0: तो
1: बढ़िया
0: मेरे
1: बात है।
0: असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की,
1: हाँ
0: कॉलेज जाना शुरू किया,
1: ओके
0: काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ, अपने बहन भाइयों की
1: आप
0: पढ़ाई।
1: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
0: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
1: आप कोरियोग्राफी के साथ
0: हाँ तो क्योंकि मैं
1: मेडिकल
0: कोरियोग्राफर
1: की पढ़ाई
0: कभी
1: कर रहे
0: बनना नहीं चाह रही थी, मैंने
1: जी
0: काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है,
1: जी
0: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की, काम भी किया, सेकेंड ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे,
1: पैसों की भी
0: पैसों की भी ज़रूरत थी, और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था,
1: हारे तो कभी नहीं थे।
0: कभी हारे नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है। फिर मैंने वहाँ से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं, कि
1: अच्छा
0: कोई बात नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है, तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी।
1: मतलब आपने जो भी पढ़ा अच्छा कठिन ही पढ़ा,
0: हाँ
1: 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे
0: बहुत
1: बायोटेक्निकल
0: कुछ
1: नेम्स और बहुत सारी
0: बहुत
1: चीज़ें
0: कुछ,
1: होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे
0: तो
1: डर
0: ऐसा
1: तो
0: होता
1: उनसे
0: था कि
1: लगता है आपने
0: असिस्टेंट
1: पढ़ा।
0: डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी,
1: ये
0: और
1: बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर
0: बिल्कुल यही
1: सकते
0: मैं चाहती थी कि आपके
1: जी।
0: जरिए पता
1: तो
0: चले
1: हमारे
0: लोगों को।
1: कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं,
0: बिल्कुल
1: प्लस पढ़ाई भी हो रही है वो भी साइंस की,
0: जी
1: बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये
0: बिल्कुल
1: तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना याद करना,
0: बिल्कुल
1: फिजिक्स की मैथ्स भी होती है
0: बिल्कुल,
1: और
0: इसलिए जब सेकेंड ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी।
1: बट कॉमर्स भी इजी नहीं
0: हाँ
1: है
0: बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास
1: जी
0: की, मतलब मैं
1: क्या
0: खुद,
1: बात है,
0: हाँ
1: बुककीपिंग
0: पढ़ाई में
1: चलेगा
0: अच्छी, हाँ तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड विच इज़ हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो, तो जो
1: हाँ
0: पढ़ाई है वो मेरी ज़िंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है, जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ
1: जी
0: एक नॉलेज था पढ़ाई का, डिसिप्लिन का।
1: जी
0: और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है जल्दी उठना है,
1: जी
0: वो आज
1: बिल्कुल
0: भी मेरी लाइफ में है, इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है।
1: यानी उस समय नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज्यादा होगी और वो
0: बिल्कुल
1: सब करके आप हर फील्ड में आप जीती
0: बिल्कुल, और आज इंसान को, अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है,
1: जी
0: ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है जिन्हें
1: जी
0: अच्छे दिखना है सुंदर दिखना है, लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो
1: जी
0: आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप

0: बेचैन हो तो मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके।
1: क्या बात है,
0: आप सुकून की नींद सो गए तो खत्म।
1: सुकून की नींद नहीं, पेट भर के भूख नहीं,
0: बिल्कुल,
1: और एक अलग बेचैनी,
0: ये बिल्कुल। मैं अपने
1: इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, काम करने के लिए लग जाना।
0: 4 घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए।
1: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है,
0: बिल्कुल
1: कुछ जाग रहा है।
0: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है हमेशा।
1: जी,
0: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है,
1: इतना होने के बाद
0: ये भूख ही मुझसे करवाती है। तो मैं सर
1: और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के लिए।
0: बिल्कुल। तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि ये कब हुआ, जब कोरियोग्राफी शुरू की।
1: जी।
0: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना, लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ। अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है दिशा बदलनी चाहिए, तो मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया। अब मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: बात
0: जी। तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया उनको एक चीज़ वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या रॉय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी।
1: अच्छा, प्रश्न ही होता था शबीना,
0: शबीना है ना
1: के लिए। हाँ।
0: तो उन्होंने पूछा शबीना है ना, हाँ हाँ शबीना है, उनका वीजा नहीं लगा अमेरिका का। तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते वीजा लगवाने मेरा।
1: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल
0: हाँ
1: कपूर जाके वीजा लगवा रहे
0: वीजा। और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो तुम, अनिल कपूर बोल रहा हूँ शबीना। मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट्स को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा देता।
1: क्या बात है,
0: जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म
1: हाँ,
0: भी कर
1: क्या
0: रही
1: खूबसूरत
0: थी,
1: गाना है।
0: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं पढ़ ही
1: जी
0: रही
1: जी
0: थी।
1: जी
0: असिस्टेंट डेज की बात है।

0: तो वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना,
1: जी
0: वो लड़की को ढूंढो उसको ब्रेक देते हैं, वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ
1: 2003 की ये फिल्म है।
0: बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहाँ से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: सीधे ब्रेक
0: मुझे
1: मिल रहा है बट आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए। जी
0: मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो मुझे बनना ही नहीं था इसलिए मैंने सीखा ही नहीं, मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। ही सेड दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ही सेड मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म, अंतरा माली हीरोइन थी
1: जी
0: उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी, तो
1: जी
0: सर मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ तुम्हें बता देगा, एक गाना करो मजा आया तो आगे करना,
1: वो
0: फिर
1: गाना कौन सा था पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ
1: हाँ
0: है आज
1: वो भी
0: ये
1: बहुत
0: दिल,
1: अच्छा किया था अंतरा
0: आहा
1: वाली जी ने,
0: हा हा,
1: बढ़िया किया था जी।
0: बहुत फेमस हुआ था वो गाना। ही सेड मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है, मैं गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना, मैंने किया, वो गाना था 1 2 3 और हमको आज कल है इंतजार,
1: वो
0: माधुरी
1: मुझे
0: दीक्षित
1: अभी
0: का।
1: अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं
0: बिल्कुल,
1: जी।
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया, एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगी मेरे गाने,
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड द अदर, चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है, सच अ
1: सीख लेंगे
0: ग्रेसफुल डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज,
1: जी।
0: उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई, उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है, इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे एक कोरियोग्राफी सिखा दी, और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और जब पहला गाना
1: कोई
0: एडिट करके,
1: टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे
0: ये सर
1: इसमें
0: तुमने यही सीखना, और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: राम गोपाल वर्मा इज माई फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माई सेकेंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट, एंड अंतरा माली इज माई फर्स्ट स्टार हु, उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं,
1: जी
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया, और फिर लगा कि ओ माई गॉड ये मेरा क्रिएशन है, जब 70 mm के पर्दे पर मैंने पहली बार अपनी रचना देखी तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं,
1: जी
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरे, ये मैंने क्रिएट किया है,
1: ये मेरा बच्चा है।
0: हाँ तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये करना है, मम्मी बोले करो बेटा,
1: एक्चुअली में जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस
0: आप
1: डांस
0: उसको
1: को
0: जीते हो,
1: जी रहे होगे, उसके
0: बिल्कुल
1: साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे
0: बिल्कुल,
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया।
0: मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं, एडिटिंग तक, पहला प्रोसेस होता है गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं, तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं, ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो, तब मुझे वहाँ पे मज़ा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे, फिर ज़िंदगी का मोड़ मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया और वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई।
1: आपको सुन के ना इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में आप एक 20 मिनट आधा घंटा किसी को सुन रहे हो और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलते जा रही हैं।
0: बिल्कुल
1: तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज आपकी पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए जितनी भी जाएगी
0: तो
1: वो।
0: मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का जो मेरा अपना फेवरेट है,
1: जी
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म
1: हाय
0: से है,
1: हाय
0: गाना है जलते दिए,
1: बहुत खूबसूरत गीत है
0: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी,
1: जी जी
0: जो आप
1: जी
0: सुनेंगे या आप देखेंगे तब
1: जी
0: भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है
1: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं और
0: जी।
1: वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहाँ से वहाँ जा रही हैं, तो इस चीज़ के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती है?

0: होगी कि कैसे
1: बिल्कुल।
0: वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना
1: सो
0: सुना
1: अगर
0: दें।
1: आप गाना देखेंगे आपके जरिए जो इतने लोग
0: सुनेंगे और बाद
1: हिंदुस्तान
0: में
1: के
0: देखेंगे भी।
1: देखेंगे और सुनेंगे,
0: जी
1: तो ये जो दिए देख रहे थे आप, क्योंकि गाना था जलते दिए,
0: जी
1: तो हमारे जो सूरज बड़जात्या जी है उनके तो
0: जी
1: सब जानते हैं,
0: जी
1: सबके दिलों की धड़कन है वो,
0: जी
1: तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी।
0: बिल्कुल, बहुत
1: उनसे मैंने,
0: सरल
1: वो
0: है
1: मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ।
0: जी।
1: जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे,
0: खुद जलाएंगे यानी,
1: नकली दिए भी मिलते हैं जो
0: हाँ
1: आप
0: वो,
1: ऑन करके डाल
0: हाँ
1: दो।
0: एलईडी वाले
1: ही
0: जी।
1: सेड नहीं, उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंदन हमारे डीओपी थे, ही सेड मैं चाहता हूँ कि हम दिए जलाएं, जितनी
0: असली दिए
1: दिए
0: जलाएं।
1: दिख रहे हैं हम
0: हाँ
1: जलाएंगे, भले 50-100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है
0: ये
1: इस
0: बढ़
1: गाने
0: जाते हैं
1: की।
0: इसका, ये काम ऐसा
1: हाँ, तो
0: होता
1: उसमें
0: है, ये
1: दिए जलाने में मैं
0: ऑथेंटिसिटी
1: भी होती
0: होती
1: थी, मेरे असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट, वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं।
0: जी,
1: आपने जो
0: उसके साइड
1: सवाल
0: से
1: किया,
0: भी पटरी
1: साइड
0: पे भी
1: में
0: जल रहे हैं जी।
1: जहां जहां वो जा रही है
0: हाँ
1: वो दिए जल रहे हैं,
0: जी
1: और उन दियों को हम जलाते थे, और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी,
0: हाँ, और वो
1: तो वो
0: बहुत लाइट
1: चलकर,
0: नेट की
1: हाँ,
0: साड़ी है वो
1: तो
0: जी।
1: वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब, बट वो होते थे बहुत दूर।
0: मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा
1: हाँ,
0: लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल
1: नहीं,
0: रही हैं और
1: वो
0: वो
1: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के
0: जी
1: कैसा लगे कि है बहुत करीब,
0: जी
1: लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले, वो हमारे सेट पे होते हैं,
0: जी
1: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता, फिल्म
0: डॉक्टर्स होते
1: सेट्स,
0: हैं, एम्बुलेंस
1: डॉक्टर्स
0: होती
1: होते
0: है
1: हैं, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है। जैसे
0: जी।
1: लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको
0: हाँ
1: भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो, लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो
0: हाँ
1: पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए,
0: इक्विपमेंट्स
1: सेफ्टी
0: और सेफ्टी नॉर्म्स के
1: बहुत
0: साथ में
1: ज़रूरी है,
0: ही
1: बहुत
0: काम करना
1: ज़रूरी।
0: चाहिए।
1: तो इस गाने को बहुत ही प्यार से,
0: बहुत
1: कोमलता
0: विद
1: से
0: सॉन्ग,
1: दर्शाया गया,
0: बहुत प्यारा, बहुत
1: बहुत
0: सॉफ्ट, बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये।
1: बिल्कुल
0: दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है, तो
1: बिल्कुल
0: जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना, जलते दिए आप सबके लिए।

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया
1: जी।
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी इंटरनेट पे, सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीज़ें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली, वो भी बड़ी काम आ जाती हैं। तो वहाँ से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्री जो हैं, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है। तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा हैं, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी आपने सिखाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं बात, तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से बता सकती हैं।
1: हर एक के बारे में बताती हूँ।
0: जी,
1: रेखा जी हमारी मुराव जान
0: जी,
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी, इंदिर कुमार जी की
0: जी।
1: मैं नई कोरियोग्राफर थी
0: जी।
1: और जब उनको पहली बार देखा, मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी
0: आज भी उतनी ही खूबसूरत,
1: आज भी उतनी ग्रेसफुल,
0: 73-74 बरस की उम्र में भी वही अदायगी,
1: आज भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए बस यूं देख ले तो दिल के अंदर तीर घुस जाते, वैसी है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया और उनके साथ मैंने वो फिल्म की
0: जी,
1: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया।
0: क्या बात है।
1: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर, इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है।
0: अच्छा,
1: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है।
0: अच्छा,
1: जो हम कहते हैं ना अदायगी, नजाकत, यू नो, वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल।
0: यस,
1: ग्रेसफुल मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था कीमती, एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहाँ आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहाँ पे आपकी नजाकत और आपका ग्रेस पता चलता
0: इसे
1: है।
0: अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, या मतलब कमतर में बेहतरीन करके निकल जाना।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: आपको ज्यादा शोर शराबा, जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी, इसे कहते हैं अदायगी, जो परिणीति में है, सोनाक्षी में है। सोनम इज रियली गुड, सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो, शी वर्कड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी।

0: आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए।
1: सही बात है, कहेंगे लोग।
0: बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत ज़रूरी होता है वही है। तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्क हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव।
1: तो कोई नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूँगी, वैसा नहीं करूँगी। जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए, ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में, तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है।
0: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ
1: जी।
0: उनके साथ जब असिस्टेंट डेज में मैं एक पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
1: एक ही जरा जरा
0: वो भी किया, और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे थे
1: जी।
0: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था, और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा तो मैं रो पड़ी। शी केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन। शी सेड, अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखा ये गाना पूरा। और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया। शी सेड, मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, ये होता है अचीवमेंट।
1: जी।
0: और मैं बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया। उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी। आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है।
1: उन्होंने हर कोरियोग्राफर को उन्होंने गुरु मान के उसके जैसा,
0: उन्होंने सरोज जी को अगर निभाया स्क्रीन पे, तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया।
1: जी,
0: आपको पता है जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो सूरज बड़जात्या की थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन।
1: जी, बहुत
0: उन्होंने निभाया
1: खूबसूरत।
0: उनको, उन्होंने उनको निभाया, गणेश आचार्य जी को निभाया, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल जो गाना है,
1: जी
0: मैं असिस्टेंट थी, वो भी उन्होंने किया
1: जी,
0: माधुरी दीक्षित जी ने। तो उन्होंने मेरे साथ जब वो गाना असिस्टेंट में किया, बड़ी मुश्किल भी, शी नेवर सेड कि मुझे चेंज करना है, शबीना ने बहुत अच्छा किया, शबीना मुझे बताओ कैसे किया, मुझे ऐसे करना है। जब एक दिग्गज कलाकार आपको ये कहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है,
1: जी
0: और वही चीज़ लेकर चल रही हूँ अपने कोरियोग्राफी के पीरियड में मैं। टचवुड, अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ उनको। और मेरे डायरेक्टर जैसे सूरज बड़जात्या, जलते दिए, साड़ी पकड़ के एक मोमेंट है, चलना है। सूरज जी ने कहा, सोनम मुझे यही चाहिए। जब आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है
1: जी,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: एक्टर फिर खामोश हो जाता है।
1: हाँ
0: और सलमान खान, उन्होंने
1: हाँ
0: जब वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है, वो सगा भाई है,
1: जी,
0: वो भी मेरे साथ रह रहे कि वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है,
1: अरे वाह।
0: हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने एक बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है, सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है। तो सूरज जी ने बोला कि शबीना।
1: जी,
0: तो वहाँ पे कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो स्टार मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है, तो फिर सब कुछ बैलेंस होके चलता है। और मेरे मामले में यही चीज़ मेरे साथ ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है, मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले
1: और उनको वहां तक लाना पड़ता
0: लाना
1: है,
0: पड़ेगा
1: मेहनत
0: आपको
1: करनी पड़ती है।
0: उनके कैरेक्टर को, मैं करके दिखाती हूँ। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि उस कैरेक्टर को जी पाऊँ, उसकी तरह बन पाऊँ, उसके जैसे लचक लाऊँ, उसके जैसे, वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से।
1: मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक डीओपी और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे
0: सारे
1: इनके
0: एचओडीज,
1: असिस्टेंट्स, एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट, उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस
0: तभी
1: किरदार को
0: प्रेम
1: जी रहे
0: रतन
1: होते
0: धन
1: हैं।
0: पायो बनी है। मैंने वही फिल्म की 1.5 साल और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये
1: जी
0: पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है,
1: जी
0: इसका कोई भी कोना, कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: सोनम का कैरेक्टर
1: जी।
0: है, फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है,
1: वो दो छोटी बहनों को भी जीना है
0: उनको भी
1: बीच में
0: जीना है, हर एक कैरेक्टर को जीना है।
1: जी।
0: तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है। अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है।
1: तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है, और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि

0: मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है और शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे. वहां तक पहुंच, मैं तो सेट तक पहुंच चुकी थी तो हमारे श्रोता भी सेट तक पहुंच ही रहे होंगे.
1: बिल्कुल
0: थे तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है.
1: उफ प्लीज.
0: तो आपका पसंदीदा गीत, और ये कहूँ पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत, मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें संगीत दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है और क्या फिल्माया गया है.
1: मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊँ,
0: हाँ बिल्कुल,
1: अगर आप इस गाने को फिर से मेरे इस इंटरव्यू के बाद अगर आप वापस से जितने आपके श्रोता है वो भी देखें तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट किया गया. कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहाँ पे कैसे शूट किया होगा हर एक शेडो के साथ. कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके डीओपी ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस, उसकी अदायगी देखिए. वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है. इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लग जा गले देखती जरूर हूँ.
0: अच्छा.
1: क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर,
0: हाँ,
1: जंगल में वो गाना शूट हो
0: हाँ,
1: रहा है और दो लोग
0: लाइट
1: हैं.
0: इफेक्ट्स इतना खूबसूरत आ रहा
1: बिल्कुल,
0: है जी,
1: दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है,
0: कुछ नहीं है
1: और दोनों हर फ्रेम में है,
0: और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई
1: लाइट्स
0: गई
1: भी
0: हैं
1: नहीं है.
0: बैकग्राउंड में, क्योंकि वो
1: तो
0: जंगल का
1: उसको
0: है.
1: वो जो सूदिंग, वो गाना अगर सुनने में प्यारा है तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद
0: जी
1: किया है.
0: बिल्कुल.
1: यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि
0: तो ऐसे
1: कोरियोग्राफर एक
0: गानों में भी
1: म्यूज,
0: कोरियोग्राफर का काम
1: बिल्कुल
0: होता है,
1: बिल्कुल
0: सिर्फ
1: होता है,
0: नाचने के लिए नहीं बाकी.
1: बिल्कुल होता है. आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए,
0: जी
1: और आप ये गाना देखिए, आई
0: जी
1: वॉज इंस्पायर्ड बाय लग जा गले
0: जी
1: फॉर शूटिंग माई सॉन्ग जलते दिए.
0: जी
1: तो बींग अ सेंसिबल कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट सच सॉन्ग्स विथ योर डायरेक्टर.
0: जी
1: डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है,
0: कि मोमेंट हो.
1: मोमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे, जो लग जा गले में हुआ है.
0: जी
1: कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और मनोज कुमार जी.
0: बहुत खूबसूरत गीत है.
1: और कैरेक्टर्स देखो उसके, जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में. इसी को मैं कहती हूँ कि अपने कैरेक्टर को जीना एक कोरियोग्राफर को आना चाहिए.
0: तो इतनी अच्छी बात के बाद तो ये गाना बनता है, तो जल्दी से सुना देते हैं ये लग जा गले.

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर का नमस्कार। मित्रों, विविधा के इस अंक में हम लेकर आए हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष कार्यक्रम के संपादित अंश, जिसका शीर्षक था भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। पेशे से चित्रकारिता के शिक्षक रह चुके मिलिंद जी को प्रेरणा मिली वंदे मातरम के बारे में लिखी पुस्तक से, जिसके लेखक थे अमरेंद्र गाड़गिल। अप्रैल 1994 में वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की निर्वाण शती के अवसर पर अपनी युवावस्था में मिलिंद जी ने वंदे मातरम पर एक आयोजन में विचार व्यक्त किए और तब से आरंभ हुई एक शोध यात्रा जो आज तक अनवरत जारी है। भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इस शोध यात्रा का एक हिस्सा भर है। आइए सुनते हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित एक विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।

0: विशेषज्ञ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनी।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: नमस्कार, और वंदे मातरम, वंदे मातरम का ये 150वां जन्म वर्ष शुरू है। इस अवसर पे वंदे मातरम के विविध पहलुओं का जो परिचय है मैं करता रहा हूँ। पिछले 30-35 साल से वंदे मातरम पर जो कुछ अभ्यास संशोधन मैं कर रहा हूँ वो सब समग्र वंदे मातरम का एनसाइक्लोपीडिया जैसा है, उसमें मैंने लिखा है। लेकिन वंदे मातरम ये जो मंत्र है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार थे, काव्य बहुत उन्होंने कम किए, लेकिन भारत के साहित्य में उपन्यास लिखने वाले जो पहले 3-4 लेखक है, उपन्यासकार है, उसमें बंकिम चंद्र जी है। वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है। और कुल मिलाकर मेरे ही पास 240 से भी ज़्यादा वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स है। भारतीय फिल्मों में वंदे मातरम का जो इस्तेमाल किया है, वंदे मातरम जिस स्वरूप में पिछले 100 बरस में आया है वो प्रस्तुत करने मैं जा रहा हूँ। बंकिम चंद्र एक विख्यात उपन्यासकार थे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद भारत में जनाकोश की एक लहर फैल गई। विशेषकर महाराष्ट्र और बंगाल में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे थे। उस समय के साहित्यकारों और कलाकारों ने भी इस जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र जी के जो साहित्यिक गुरु थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र गुप्त। उन्होंने 1850 के आसपास एक कविता की थी, जननी भारत भूमि आव केन थाक तुमि। आधुनिक साहित्य में, पूरे भारतीय साहित्य में जननी भारत भूमि यानी मातृभूमि ये शब्द का इस्तेमाल करने वाले आधुनिक साहित्य के वो पहले साहित्यिक थे, ईश्वर चंद्र गुप्त। और उन्होंने बंकिम चंद्र जी को प्रोत्साहित किया उनके कॉलेज आयुष्य में। बाद में उस कविता के बाद शिशिर कुमार घोष ने 1870 के आसपास भारत माता नाम की एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उस पर किरण चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा 1873 में एक नाटक रचा गया और वो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। बंकिम चंद्र अपने घर नैहाटी कांटा पड़ा कलकत्ता से 30-35 किलोमीटर के आसपास, ये छोटा गांव है, अश्विन शुद्ध अष्टमी के दुर्गाष्टमी के रात वो मूर्ति के सामने बैठे थे और रात के समय उन्हें उस मूर्ति में उन्हें भारत माता प्रतीत होने लगी और उन्होंने उठकर अपने कमरे में जाकर एक लेख लिखा। उसका नाम था अमार दुर्गोत्सव। अश्विन शुद्ध अष्टमी के रात और नवमी के प्रातः काल में उन्होंने लेख लिखा। वो अमार दुर्गोत्सव उनका मानस पुत्र साहित्य का कमलाकांत वो नदी के किनारे पर बैठा है, उसमें उन्हें भारत माता दिखाई देती है और अदृश्य हो जाती है तो वो व्याकुल होता है और वो माता का जय जयकार करता है, माता को बुलाता है, ऐसा उसमें आया है। ये लेख वंदे मातरम का पहला गद्य स्वरूप है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद केवल एक महीने के बाद कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 के दिन बंकिम चंद्र ने एक ही समय पूरा वंदे मातरम 25 पंक्तियों का लिखकर पूर्ण किया। वो वंदे मातरम का पहला जो उपयोग है वो आनंदमठ कादंबरी में हुआ। आनंदमठ कादंबरी में वंदे मातरम का इस्तेमाल एक थीम सॉन्ग जैसे किया। कथानक में बार बार वंदे मातरम के शब्द आते हैं और उसके बाद आनंदमठ नाम का नाटक रंगमंच पर आया और उसमें पहली बार वंदे मातरम किसी ने

भवानंद के काम करने वाले पात्र ने पहली बार वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम लोगों तक पहुंचने लगा, लेकिन 1894 में बंकिम चंद्र जी का देहांत हुआ तब तक वंदे मातरम इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। 1905 में बंगाल के पार्टीशन के समय वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीयों के मन में जा चुके। हर एक संग्राम को एक रण गर्जना की आवश्यकता है ही, वैसी रण गर्जना हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम ये शब्द के रूप में मिली। और वो दिन था 7 अगस्त 1905। भालजी पेंढारकर और उनके भाई बाबूराव पेंढारकर ने वंदे मातरम आश्रम नाम की एक मुखपट बनाया था। उनकी फिल्म कंपनी का नाम भी वंदे मातरम फिल्म कंपनी था। 1924 में उन्होंने ये फिल्म निकाली, लेकिन सेंसर ने इतने कट्स का सुझाव किया कि वो फिल्म प्रदर्शित ही नहीं कर सके। उसके बाद मुखपटों में वंदे मातरम ये शब्द स्क्रीन पर दिखाई दिए। वंदे मातरम 1935 में पहली बार फिल्म में गाया गया और वो फिल्म का नाम ही था वंदे मातरम। बंगाली फिल्म थी। सुकृति सेन इन संगीतकार ने इसकी संगीत रचना की है।

वंदे मातरम ये शब्द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ऊंचा स्थान पर गए। वंदे मातरम ये शब्द बोलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण समझने जाने लगा। कलाकार, संगीतकार, चित्रकार, इन लोगों को भी ऐसे लगा कि हम भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने कला द्वारा सहभाग लेंगे। तो संगीतकार और गायक लोगों ने वंदे मातरम का गायन किया। मराठी फिल्म नीलकंठ मास्टर 2015 में ये फिल्म रिलीज हुई। गजेंद्र अहिरे नाम के बहुत जाने माने दिग्दर्शक है, उन्होंने दिग्दर्शित की थी। और संगीतकार है अजय अतुल। इंग्रेजी में जैसे हम थीम सॉन्ग कहते हैं वैसे ही इस फिल्म में उसका उपयोग किया है।

1909 साल में हुतात्मा अनंत कानेवे ने अपना बलिदान दिया, वंदे मातरम बोलकर वो फांसी पर चढ़े। यह फिल्म उनके चरित्र पर, उनके बलिदान पर आधारित थी। उनकी क्रांतिकारी यात्रा का चित्रण करते हुए वंदे मातरम का प्रयोग क्रांतिकारियों को प्रेरणा गीत के रूप में इस फिल्म में किया है। यह गीत फिल्म में अपने संपूर्ण रूप में नहीं बल्कि विभिन्न प्रसंगों में खंडों के रूप में सुनाई दिया है। केवल यही फिल्म ऐसी है कि इसमें पूरा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। संगीतकार प्रदीप वैद्य ने केवल यही एक फिल्म संगीतबद्ध की है। गायक जयदीप दिग्विजय वैद्य। हम सुनेंगे वंदे मातरम हुतात्मा अनंत कान्हे 1909 फिल्म से।

सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के बहुत बड़े राष्ट्रकवि, उन्होंने वंदे मातरम ये शब्द सुनकर उन्होंने एक गीत तमिल भाषा में किया। ये जो फिल्म है उसे राष्ट्रपति अवार्ड मिला था सन 2000 में। इस फिल्म की विशेषता यह है कि इसमें सुब्रमण्यम भारती का कैरेक्टर जो किया है वो मराठी अभिनेता सयाजी शिंदे ने किया है और उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। और इस फिल्म का संगीत विख्यात संगीतकार इलाय राजा ने किया है। इलाय राजा ने केवल दो फिल्मों के लिए वंदे मातरम संगीतबद्ध किया, इसमें एक हिंदी है और एक ओरिजिनल वंदे मातरम है और दूसरा वंदे मातरम ये तमिल है। गायक और गायिका मधु बालकृष्णन।

1996 में एक फिल्म आई थी फातिमा मीर के उपन्यास द अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा, इस उपन्यास पर आधारित ये फिल्म थी। महात्मा गांधी के युवावस्था के उन 21 वर्षों का चित्रण इस फिल्म में किया है। आर्ट फिल्म के जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने इसका निर्देशन किया था। रजत कपूर ने युवा गांधी का पात्र निभाया था। इस फिल्म का नाम था मेकिंग ऑफ द महात्मा और हिंदी में नाम था गांधी से महात्मा तक। इस फिल्म में गांधी जी एक सत्याग्रह के दौरान जन प्रेरणा के लिए वंदे मातरम गीत केवल 2 पंक्तियों का प्रयोग इसमें उन्होंने किया है। ये गाना गाया है प्रसिद्ध पॉप गायिका उषा उत्तप ने और संगीत दिया है वनराज भाटिया ने।

अगला फिल्म है सबूच द्वीप राजा। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के तरफ से ये फिल्म का निर्माण किया था बच्चों के लिए। दिग्दर्शक थे तपन सिन्हा और संगीतकार थे तपन सिन्हा और आलोकनाथ डे। फिल्म में वंदे मातरम दो भागों में प्रस्तुत किया था। पहला भाग फिल्म के आरंभ में आता है जहां क्रांतिकारी तालुकदार के अतीत का चित्रण किया गया है, जबकि दूसरा भाग फिल्म के समापन पर सुनाई देता है। इसकी धुन में बंगाल की रविंद्र संगीत की परंपरा का स्पष्ट प्रभाव अनुभव होता है, जो इस प्रस्तुति का एक विशिष्ट सांगीतिक पहचान होती है।

1971 में और एक बंगाली फिल्म बनी, उसका नाम था महाविप्रभो अरविंद, श्री अरविंद, योगी अरविंद के जीवन पर आधारित यह फिल्म थी। इसमें वंदे मातरम गीत तीन अलग अलग प्रसंगों में सुनाई देता है। इसके संगीतकार है हेमंत कुमार मुखर्जी। हेमंत कुमार मुखर्जी बहुत प्रतिभावान संगीतकार थे। उन्होंने दो अलग अलग चित्रपटों के लिए संगीतबद्ध वंदे मातरम किया और वो दोनों ही वंदे मातरम अलग अलग ही है। ये जो धुन है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर की मूल धुन के आधार पर उन्होंने बनाई है। पहली बार यह गीत फिल्म के शीर्षक यानी टाइटल सॉन्ग के स्वरूप में आती है। हेमंत कुमार का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। हम पहले सुनेंगे वंदे मातरम टाइटल सॉन्ग महाविप्रभो अरविंद से।

इसी फिल्म में तीसरा जो वंदे मातरम है वो और भी थोड़ा अलग है। अंत में जब योगी अरविंद सांसारिक जीवन का त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन करते हैं, तब देवी की दर्शन के प्रसंग में वंदे मातरम एक बार पुनः सुनाई देता है। इस प्रकार गीत का अंतिम प्रयोग राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत संगम का प्रतीक बनकर उभरता है।

इसी फिल्म में टाइटल सॉन्ग के रूप में वंदे मातरम प्रस्तुत किया था। वैसे ही और एक हिंदी फिल्म में केवल टाइटल सॉन्ग के लिए वंदे मातरम का प्रयोग किया था, इसीलिए उसकी रिकॉर्ड बाजार में नहीं आई। वो फिल्म थी विडर, दिग्दर्शक थे राम मुखर्जी और प्रख्यात संगीतकार नौशाद ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। इस फिल्म की शुरुआत ही इसी टाइटल सॉन्ग से होती है। वंदे मातरम मार्चिंग सॉन्ग जैसे केवल दो संगीतकारों ने ही बनाया है, उसमें से एक ये है और दूसरे तिमिर बरन भट्टाचार्य है। हम सुनेंगे फिल्म विडर वैजयंती माला और दिलीप कुमार समूह स्वर में।

स्वतंत्रता के बाद जो पहली फिल्म आई जिसमें वंदे मातरम का उपयोग किया था वो थी आंदोलन। दिग्दर्शक थे फणी मुजुमदार और संगीतकार थे विख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। वंदे मातरम की संगीत रचना 200 से ज़्यादा है, उसमें जो 4-5 संगीत रचना सबसे बढ़िया है उसमें से ये एक है। और फिल्म की एक विशेष उपलब्धि यह है कि इस फिल्म में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया जन गण मन चित्रित किया था वो देखना मिलता है। इसके अतिरिक्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वायु दृश्यों को प्रस्तुत करने वाली यह स्वतंत्रता के बाद की पहली फिल्म थी। इस गीत के संगीत प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने किया था। इसमें सुधा मल्होत्रा, पारुल घोष और मन्नाडे ने स्वर दिया था।

1951 में आनंद मठ फिल्म, लेकिन वो थी बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म किससे पहले ये फिल्म आई थी। उसमें दिग्दर्शक थे सतीश दास गुप्ता और संगीत था सुबल दास गुप्ता, बंगाल के प्रख्यात संगीतकार थे। इस फिल्म में वंदे मातरम फिर एक बार अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। बंगाल की एक लोक संगीत प्रसिद्ध है बाउल संगीत, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल बाउल संगीत जैसा किया है, यानी भजन जैसा किया है। बहुत ही अलग सा ये संगीत है। हिंदी जो आनंद मठ फिल्म है उसमें रण गीत जैसा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें पूजा गीत जैसा, प्रार्थना गीत जैसा वंदे मातरम का उपयोग किया है। हम सुनेंगे बंगाली फिल्म आनंद मठ, संगीत सुबरदास गुप्ता और स्वर है द्विजेन मुखोपाध्याय और अरुंधति मुखर्जी।

लेकिन ऐसे कुछ फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार है जिन्होंने वंदे मातरम की धुन बनाई है, लेकिन उसका इस्तेमाल फिल्मों में नहीं किया गया। पहली है संगीतकार और गायक पंकज मौलिक, इनकी धुन। पंकज मौलिक न्यू थिएटर के प्रमुख संगीतकारों से एक थे। वे रविंद्र संगीत के विख्यात गायक भी थे और उनके द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम की धुन, वंदे मातरम की रविंद्रनाथ की जो धुन है उससे अलग है, ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली के माध्यम से इस गीत को अलग सांगीतिक पहचान प्रदान की है। हम सुनेंगे पंकज मौलिक द्वारा गाया हुआ वंदे मातरम।

मास्टर कृष्णाराव पुरंबीकर ये प्रख्यात गायक और संगीतकार थे, भास्कर बुआ बखरे के शिष्य और बाल गंधर्व के गुरु बंधु थे। उन्होंने वंदे मातरम जो किया वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत बनाने के लिए पंडित नेहरू के साथ उन्होंने सांगीतिक संघर्ष किया, उसकी एक अलग ही कहानी है। आज जो हम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में देखते हैं उसका कारण मास्टर कृष्णराव पुरंबीकर ने घटना समिति के साथ किया गया सांगीतिक संघर्ष, ये महत्वपूर्ण कारण है। मास्टर कृष्णराव ने झिंझोटी राग में वंदे मातरम का बंधन किया और अन्य कुछ रागों में भी उन्होंने वंदे मातरम किया था। हम सुनेंगे मास्टर कृष्णराव द्वारा झिंझोटी राग में वंदे मातरम।

तीसरे संगीतकार है वसंत देसाई। वंदे मातरम को बहुत सारे संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया, लेकिन वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत की तरह से उन्हें संगीतबद्ध किया जाना चाहिए, ये विचार बहुत कम संगीतकार ने किया है। उसमें से एक है वसंत देसाई। धुन एक ही है लेकिन उसके लिए जो वाद्य का इस्तेमाल किया है वो अलग अलग है। हम सुनेंगे जो रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने ढोल, ताशा, तुतारी, बांसुरी, ये भारतीय वाद्यों का उपयोग किया है, शंख का भी उपयोग किया है।

चौथे संगीतकार है ज्ञान दत्त और इसका गायन किया है गीता दत्त और जीएम दुरानी ने। लेकिन ये वंदे मातरम थोड़ा अलग ही है। इस रिकॉर्ड में अपेक्षापूर्ण तेज गति से प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त होने पर भी इसकी प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली है। हम सुनेंगे गीता दत्त, जीएम दुरानी, संगीतकार ज्ञान दत्त।

ये संगीत रचना है तिमिरबरन भट्टाचार्य। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सरोद वाद्य पर शास्त्रीय संगीत बजाने वाले वे पहले सरोद वादक थे। 1938 के आसपास सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, तब तिमिरबरन भट्टाचार्य ने वंदे मातरम उनके लिए तैयार किया था और पहला भाषण सिंगापुर से किया आजाद हिंद सेना का नेतृत्व लेने के बाद। तब भाषण पूरा होने के समय यही रिकॉर्ड उन्होंने बजाए। सुभाष चंद्र बोस की अत्यंत प्रिय ये रिकॉर्डिंग थी।

या रहमान ने वंदे मातरम किसी फिल्म के लिए नहीं किया है। स्वतंत्रता को जब 50 बरस पूरे हुए तो 1997 में उन्होंने वंदे मातरम का एल्बम बनाया था। उसी बरस में 1997 में रंजीत बारोट यह संगीतकार ने वंदे मातरम 2 नाम की पहले कैसेट बाद में सीडी बनाई। उसमें साजिद खान ने राजस्थानी लोक संगीत जैसे वंदे मातरम गाया था। कौशिकी चक्रवर्ती आज की प्रख्यात गायिका, उन्होंने वंदे मातरम का गायन किया था। और पॉप म्यूजिक शैली में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शुभा मोदगल ने वंदे मातरम का गायन किया था। हेमंत कुमार मुखर्जी ने 3 फिल्म के लिए वंदे मातरम गाया और 2 फिल्म के लिए संगीतबद्ध किया, लेकिन वो सब वंदे मातरम एक से दूसरे अलग है। इसी फिल्म में 2 बार वंदे मातरम प्रस्तुत किया है। हिंदी आनंद मठ में 1952 में ये फिल्म आई। इस फिल्म का बहुत सारे वैशिष्ट्य है कि जिसमें दिग्दर्शक है हेमेंद गुप्ता। हेमेंद गुप्ता जी ने स्वातंत्र संग्राम में सहभाग लिया था, इसलिए इस फिल्म का दिग्दर्शन कर अलग ही दिखाई देता है। राष्ट्रभक्ति की भावना अन्य फिल्मों से ज़्यादा इसमें दिखाई देती है। पहला जो गायन है वो खुद हेमंत कुमार ने किया है। गीत का आरंभ हेमंत कुमार के करुण स्वर आर्त स्वरों से होता है। हेमंत कुमार का भावदर्शन बहुत ही सुंदर है।

वंदे मातरम को अब तक अनेक संगीतकारों ने विभिन्न धुनों में स्वरबद्ध किया है और लगभग सभी धुनें अपने अपने ढंग से उत्कृष्ट है, किंतु फिल्मी रूपांतरण में इस प्रस्तुति को जो लोकप्रियता और जन स्वीकृति मिली वह अद्वितीय है। 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा 165 देशों के श्रोताओं के बीच कराए गए सर्वेक्षण में लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इसी वंदे मातरम को विश्व के सार्वकालीन 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर का गायन एक साथ वीरता और करुणा दोनों भावों से परिपूर्ण है। अनेक स्वर में जहाँ एक और ओज और आक्रोश का संचार है, वही दूसरी ओर मातृभूमि के प्रति समर्पण और संवेदना की गहरी अनुभूति भी है। यह गीत अभिनेत्री गीता बावी पर फिल्माया गया है। यदि लता मंगेशकर द्वारा वंदे मातरम शब्द पर ली गई प्रत्येक तान को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो हर बार उनके एक नया स्वर विन्यास और सूक्ष्म वैविध्य अनुभव होता है। वंदे मातरम का यह रिकॉर्डिंग आज सबसे लोकप्रिय रिकॉर्डिंग माना जाता है।

0: कंठ संगीत में यानी वोकल गायन में तीन गायकों को भारत रत्न मिला, उनमें से पहली थी डॉक्टर एम एस सुब्बलक्ष्मी, दूसरी थी लता मंगेशकर और तीसरे थे पंडित भीमसेन जोशी। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है अलग अलग तरह से। लता मंगेशकर जी ने गाया है आनंद मठ फिल्म के लिए, एम एस सुब्बलक्ष्मी ने गाया है दो वंदे मातरम की उनकी रिकॉर्ड है, एक गाई है दिलीप कुमार रॉय के साथ दक्षिणी और उत्तर हिंदुस्तानी जुगलबंदी के रूप में वंदे मातरम का गायन, और दूसरा वंदे मातरम उन्होंने गाया है सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिल वंदे मातरम। और भीमसेन जोशी जी ने 1997 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 50 वर्ष जब पूर्ण हुए तो 14 अगस्त को रात 12 बजे संसद के विशेष अधिवेशन में भीमसेन जोशी जी ने वंदे मातरम गाया। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है, ये एक अलग ही बात है।
1: वंदे मातरम
2: सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इस कार्यक्रम के ये थे संपादित अंश। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। इस विशेष कार्यक्रम का संयोजन किया था शिल्पा मिलिंद सबनीस ने। संपादन एवं प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी की मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आगे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती।

0: मुकेश की आवाज में सबक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

महेश किशोर की आवाज़ थी, सावन कुमार की रचना आपने सुनी, बिपिन सचदेवा लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। ये गीत था सनम बेवफा फिल्म से।

श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक, निर्माता और निर्देशक सावन कुमार की फिल्मों के नगमे।

0: उषा खन्ना की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हवस फिल्म का गीत आपने सुना, सावन कुमार का लिखा।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का दोगाना था, मोहम्मद रफी, सुलक्षा पंडित की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना, संगीत था उषा खन्ना का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप आए बाहर आई इस फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यही है श्रोताओं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज।

0: आ रही हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रस्तुत कार्यक्रम विविध भारती। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री ने आज गोरीमेदू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब आगे सुनिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का प्रसारण।

मुहावरा तो सचमुच नाच उठता है सावन में। और जब गायन की बात करें तो राग मेघ मल्हार और कजरी की तान हर सू सावन के मौसम में नजर आती है। श्रोताओ, अगले गीत में आपको संगीतकार बताने हैं और फिल्म में जो कलाकार हैं उन्हें पहचानना है। वैसे इन कलाकारों की और भी फिल्में हैं, कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन आते ही जैसे प्रकृति अपने आंचल में धरती को सजा लेती है, नव पल्लवों की हरियाली, फूलों की मुस्कान, बादलों का मृदंग और बिजली की चमक सब मिलकर ऐसा संगीत रचते हैं जिसमें मन अनायास ही झूम उठता है। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो लगता है जैसे आसमान ने अपनी प्रेम पाती धरती के नाम लिख दी हो। कहीं मेघ मल्हार की तान तो कहीं पपीहे कोयल कजरी की मिठास, बाग बगीचों से लेकर खेतों तक हर ओर हरियाली का साम्राज्य है। झरने इथलाते हुए बह रहे हैं और मोर अपने सजीले नृत्य से सावन का स्वागत कर रहे हैं। और बहुत सारे मधुर गीत भी इन्हें आज याद आ रहे हैं, कुछ एक गीत इन्होंने बताए भी हैं। वैसे आपको ये भी बताना है श्रोताओं कि आजकल जब हम सावन की बात करते हैं तो खेतों की भी बात करते हैं। आप ज़रूर व्यस्त होंगे, हमारे कृषक जो हैं वो खेतों में, तो आप विविध भारती कहाँ से सुन रहे हैं ज़रूर बताइए और वहाँ का मौसम कैसा है ये भी बताइए। वैसे आपके प्रदेश में सावन किस खास अंदाज में मनाया जाता है, कोई खास परंपरा तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई किए का एहसास दिल को बहुत तड़पाती है और हर पल अपने पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदें मन में ठंडक के बजाय सुरीली उदासी से भर देती हैं। सावन के सुहावने मौसम में अपने पिया मिलन की पुरानी यादों को जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। जी हाँ, आजकल वैसे श्रोताओं देखें तो हर तरफ बस निगाहें बादलों पर ही टिकी हैं। ये बादल जो सावन में आजकल छाए हुए हैं, इनका रंग बड़ा निराला होता है।

मला सिन्हा और शमी कपूर पर फिल्माया गया दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे श्रोता। दो बीघा जमीन फिल्म के लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने डिटेल्स जो लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है और शैलेंद्र की रचना थी गीत जो आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ग्राम में पृष्ठभूमि और शैव क्षेत्र के वाशिंदे होने के कारण सावन सदैव सर्वश्रेष्ठ लगता है, कृषि धान रोपण आदि आदि की इन्होंने बात करी है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल प्रेमियों के मिलने का समय नहीं बल्कि ये आम आदमियों परिवारों और पूरी दुनिया के लिए भगवान शिव की भक्ति प्रकृति के उत्सव और आत्म शुद्धता का पवित्र मास है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व शिव उपासना का है। ये पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है अब के सावन में जी डरे तन मन पे पानी गिरे और कुछ हमारे श्रोताओं ने सावन का महीना पवन करे शोर इस फिल्म की इस गीत की बात की है। और हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि इतने सारे गीत जो हैं वो हमें याद आ रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा गीत जो है वो आज शामिल हो पाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऋतु चक्र के गतिमान जीवन का कि उत्सव धर्मिता के परिप्रेक्ष्य में सावन प्रकृति के उल्लास सृजन का प्रतीक है। ये केवल जल वर्षा का समय नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे राग प्रेम और सांस्कृतिक उत्सवों को जीवंत ताने बाने का अनुपम दस्तावेज है। रिम झिम फुहारे फुहारे कचरारे बादलों की गर्जन मोर और पपीहे की कोख से उत्पन्न होने वाली संगीत लहरियों से मानव मन में एक उत्सव धर्मिता का संचार होता है। झूला झूलना मल्हार कजरी और अन्य लोकगीतों के गायन की गूंज सामाजिक सौहार्द को मजबूत करती है। सावन पावस के रूप में भक्ति और श्रृंगार रस के विभिन्न रंगों से जुड़कर विरह और वियोग की तीव्रता से प्रकृति के उल्लास चित्त को आकर्षित करता है। ऋतुओं के इस शाश्वत चक्र में सावन मनुष्य को प्रकृति के साथ लयबद्ध होने और जीवन को उत्सव की तरह जीने का संदेश देता है। जी हाँ, प्रकृति के साथ रहना लयबद्ध होना ये भी सावन सिखाता है। और इसी लय में एक बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया जो मानसून के सीजन में अपना खास घोंसला बनाती है, ये कौन सी चिड़िया है और ये किस तरह का घोंसला बनाती है, क्या आपने इसे देखा है तो आप हमें ज़रूर लिखें। और ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गीत को कब आपने गाया, गाते हैं इस गीत को बारिश के मौसम में।

चलिए फिल्म के इस गीत को हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश की आवाज़ में कमर जलाल आबादी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के दिनों में अगर बारिश हो गई और हमें मौका मिला रोड पर चलने का तो गाने की लाइन इतना याद नहीं रहती। उस समय राज कपूर का पानी में छप्पा छैया करना बहुत पसंद आता था और हम सभी एक इस तरह की हरकत करके एक दूसरे को भी भिगोते थे। वैसे राज कपूर साहब का एक और गीत है श्रोताओं जो बारिश का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, वो गीत अगर आपको याद आ रहा हो तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने राज कपूर नूतन द्वारा जो है इस फिल्म में अभिनीत इस फिल्म छलिया की बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन आते ही हरियाली जो चारों तरफ दिखाई देती है और हमारे घर के पास के मंदिर से आती शिव जी के भजनों की आवाज़ और महिलाओं का हरे रंग की साड़ी पहनकर सजना संवरना बड़ा ही अच्छा है। और जी हाँ, और मेहंदी भी तो लगाई जाती है, तो हमारी जो श्रोता सखियां हैं वो बता सकती हैं। वैसे मेहंदी की अगर बात किया जाए तो मेहंदी का आजकल चलन थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है, यानी मेहंदी जो है वो अलग तरह से लगाई जाती है। इस बारे में अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल बारिश का नहीं बल्कि यादों, प्रेम और आस्था का भी है। शिवालयों में गूंजते हर हर महादेव के स्वर और मन में उमड़ते भाव जी

को एक नई ताजगी दे जाते हैं। शायद यही वजह है कि सावन हर साल आता तो है लेकिन हर बार दिल में एक नई कहानी छोड़ जाता है। पिछले सावन में श्रोताओं कौन सी ऐसी बात थी जो आपकी इस सावन में पूरी हुई, तो ये जो परिवर्तन है वो कैसा लगा या क्या कुछ परिवर्तन हुआ ये आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पटना में कल रात में बारिश हुई, अभी तो तेज धूप निकली है। आज एकादशी के दिन मंदिरों को खूब सजाया जा रहा है और श्रीहरि और महादेव दोनों की पूजा चल रही है। एक और श्रोता ने लिखा है क्या किए कोई मन भाग गया, दिल में हमारे वो समा गया, हंस के किसी ने देखा एक बार दिल की मुराद कोई पा गया, सांसों की मीठी आग, होंठों पे मीठा मीठा राग, और अपने मन का इन्होंने गीत भी बताया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज जो गीत हैं यानी सावन का के जो गीत हैं और जो बारिश के जो गीत हैं वो सुनवाए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल हैं। और कौन से गीत आपके पसंद के हैं? वैसे इस इबारत में बहुत सारे शब्द भी ऐसे हैं श्रोताओं जिनसे आप अपनी कोई बात लिख सकते हैं। फिल्म पहेली का ये गीत है, इस अभिनेत्री को आपको पहचानना है, यही आपकी पहेली है।

हमारे श्रोताओं ने अभिनेत्री का नाम कुछ कुछ लटपटा सा बताया है, लेकिन हम आपको बता दें श्रोताओं, पहली फिल्म का ये गीत था हेमलता की आवाज में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया गीत था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी में जब द शब्द आता है तो ये गीत बरमास गाया जाता है, डम डम डिगा डिगा। जी हाँ, ये तो है कि अंताक्षरी में ये गीत बहुत गाया जाता है। वैसे हमने एक सवाल और भी श्रोताओं आपसे पूछा था कि

जो एक पक्षी है, बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाता है मानसून में, वो आपको बताना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन को झूलना उत्सव पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, पास के मंदिर का हरियाली श्रृंगार हुआ है। जी हाँ, अब तो धीरे धीरे सावन जो है वो शबाब पर आ रहा है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत और ऋतु संहार, जी मेघदूतम हो सकता है ये है, और ऋतु संहार लिखा है। तो मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने आषाढ़ का पहला दिन कविता लिखी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविताओं में बादल और वर्षा जीवन की सृजन और संघर्ष के रूप में लिखा है इसे और दिखाई देता है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, घन घमंड नभगर्जत घोरा दामिनी दमक रहन घन माही। और मलिक मोहम्मद जैसी की भी ये बात करते हैं, पद्मावत की भी बात करते हैं। जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हमारे कवि हैं जिन्होंने सावन और जो वादियाँ हैं बारिश की, उन पर बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं। इस गीत में श्रोताओं मेला नजर आता है, तो मेले की कोई यादें अगर आपकी हों तो आप साझा कर सकते हैं।

जरीना बहव और अरुण गोविल पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना। और इस गीत में अरुण गोविल के हाथ में श्रोताओ एक वाद्य यंत्र है, वो आपको बताना है कि ये वाद्य यंत्र कौन सा है। और जो भारत है वो बड़ा ही अलग प्रकार का, अगर हम बात करें प्रकृति के नज़रिए से, तो प्रदेश है यहाँ पर हैं अलग अलग। तो तितलियों का प्रदेश किसे कहते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बड़ी अलग अलग सुंदर सुंदर तितलियाँ नज़र आती हैं। लैंड ऑफ बटरफ्लाइज किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। और साथ ही ये बताना है कि एक प्रदेश जिसके नाम में मेघ आता है वो कौन सा प्रदेश है, ये आपको बताना है। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के आगमन के बाद प्रकृति अपना रूप निखारती है, चारों ओर छटा देखते ही बनती है, धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मुझे भी बारिश में भीगना बेहद अच्छा लगता है, कल ऑफिस से लौटते वक्त भी बारिश में भीगता हुआ ही आया। जब घर में होता हूँ तो टेरिस पर चला जाता हूँ और बारिश में भीगने का आनंद लेता हूँ। और गीत भी इन्होंने बताए हैं, रामा रामा गजब होई गवा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन का विशेष महत्व है, जिसमें भोले बाबा का जलाभिषेक पूजन किया जाता है, जिसमें हरे श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। सावन में हर सोमवार को विशेष व्रत रखते हैं, हमारे घर में सभी लोग इस व्रत को रखते हैं। और इसके अतिरिक्त सावन में मेहंदी रचाने का भी विशेष महत्व है, झूले भी डाले जाते हैं और महिलाएँ और कन्याएँ विशेषकर हरे परिधान श्रृंगार का प्रयोग करती हैं। तो आपने किसके साथ झूला झूला, ये आप बताइए हमें। और हमने एक और सवाल आपसे पूछा, लैंड ऑफ बटरफ्लाइज और ऐसा प्रदेश जिसके नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है। और एक श्रोता ने लिखा है बया पक्षी घोंसले बनाती है और घोंसले को घर में रखना, उस घोंसले को घर में रखना शुभ माना जाता है। ये कलाकार जोड़ी आपको बतानी है श्रोताओं।

जैसे को तैसा है, फिल्म का गीत आपने सुना, रीना रॉय और जितेंद्र पर फिल्माया गया, और इनकी जोड़ी का कौन सी ऐसी फिल्म है श्रोताओ जो आपको अच्छी लगती है? क्योंकि इस जोड़ी की और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लैंड ऑफ बटरफ्लाइज सिक्किम को कहते हैं। जी हाँ, सिक्किम में श्रोताओ जो जोंगो क्षेत्र है वो लैंड ऑफ बटरफ्लाइज कहलाता है, तितलियों का प्रदेश, क्योंकि यहाँ बड़ी सारी तितलियाँ हैं। और एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि किस प्रदेश के नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अभी सावन की रिमझिम बारिश में अपने घर में खिले हुए उन गुड़हल के सफ़ेद फूलों को देख रहे हैं जिन पर ये बूंदें ओस के जैसे चमक रही हैं और उन्हें नीचे की तरफ झुका रही हैं, और हमारा दिल एक गीत गुनगुना रहा है, नैना बरसे रिम झिम रिम झिम। भाई ये तो बड़ा ही मतलब थोड़ा दुखी कर देने वाला गीत है। तो नैना क्यों बरसे? बादल बरसे, ऐसा होना चाहिए। पहले पत्थर पर पीस कर मेहंदी लगाते थे, फिर सूखी मेहंदी को छानकर चाय के पानी में घोलकर रात भर रखते, फिर दूसरे दिन माचिस की तीली से तार बनाकर बारीक डिजाइन बनाते। समय के साथ अब बहुत परिवर्तन आया है, अब बने बनाए कोन मिल जाते हैं, लाओ और लगा लो, सुंदर सुंदर डिजाइन भी आसानी से बन जाती है। जी हाँ, और कई बार छाप कर भी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं कुछ हाथ में इन्फेक्शन ना हो जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन आई हुई हूँ और यहाँ जो टाइम है थोड़ा पीछे चलता है, और इन्होंने वहाँ के टाइम के बारे में भी लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन तो नहीं बरस रहा पर विविध भारती हमको रोज़ सावन के गीतों से भिगो रही, अच्छा लगता है। शुक्रिया विविध भारती। जी हाँ, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सावन है तो भीगना तो पड़ता ही है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस का मौसम चार तमाम सारे गीतों को इन्होंने लिखा है, अब इनमें छठे मौसम का इजाफा कर देते हैं, वो मौसम है सुरीले सफ़र का इंतज़ार। जी हाँ, वो तो पूरा हुआ। एक और श्रोता लिखती है कि सावन की हर बूंद में एक कहानी है, हर पुहार में प्रेम की रवानी है, भीगी धरती कहती चुपके से ये मौसम नहीं किसी के आने की कहानी है।

आर डी बर्मन की तर्ज थी छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, शीला आवाज पर फिल्माया गया। श्रोताओं, बारिश का मौसम जो होता है वो अपने आप में बड़ा सुहावना होता है। अगर किसी एक जगह आपको जाना हो बारिश के मौसम में, तो आप कहाँ जाएंगे और क्या आपको तस्वीरें उतारना बारिश के मौसम का अच्छा लगता है? तो कुछ तस्वीरें तो ज़रूर आपके पास होंगी जो आज भी आपने सहेज कर रखी होंगी, तो ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि सावन का मौसम प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा देता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल, हरे भरे लहलाते खेत, कलकल करती नदियाँ, पहाड़ों से बहते झरने, बादल की गड़गड़ाहट, रिमझिम वर्षा, और तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। और वैसे छोटे छोटे जो झरने होते हैं श्रोताओं, वो भी इस समय अपने पूरे शबाब पर होते हैं, तो ये झरने समय के साथ बिल्कुल सूख जाते हैं, यानी बारिश होगी उसके बाद फिर नज़र नहीं आते। तो ऐसे प्यारे प्यारे झरने आपकी तरफ हैं क्या, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ बारिश में आप जाना पसंद करेंगे, ये हमने अभी आपसे पूछा था, आप बता सकते हैं। वैसे अगर ऐसी जगहों की बातें की जाएँ, तो हो सकता है कि आपका खुद का शहर हो, खुद का प्रदेश हो, जो ऐसे सुंदर जो चित्र कह सकते हैं बारिश के मौसम का, वहाँ नज़र आता है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हुए हम देख रहे हैं कबूतरों को, वो इतने खुश हैं कि साथ नीचे घास पर बैठे हैं, मानो उनकी अपनी कोई महफिल चल रही हो, हमने उन्हें उस तरह पहले कभी नहीं देखा, अरे वो तो उड़ गए बहुत जल्दी। जी हाँ, पंछी होते हैं ये तो उड़ जाते हैं, और गौरैया भी बहुत नहाती है पानी में, आपने देखा है, तो आप गौरैया की जो बातें हैं वो भी ताज़ा कर सकते हैं, गौरैया बड़ी ही सुंदर होती है। श्रोताओं, एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि पूर्णिमा की सुनहरी रात और चंचल पुरवैया, हवा के झोंके गगन में तैरते उमड़ते घुमड़ते मेघ और चपला की चमक, रिमझिम फुहारों के बीच भीगी बलखाती वसुंधरा और मयूर का मन भावन नृत्य, तमाम सारी बातें जो सावन की।

इस गीत से जो सवाल वाबस्ता है उसका जवाब अभी मुझे तो नजर नहीं आया श्रोताओ। फिलहाल एक श्रोता लिखते हैं कि श्री 420 का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये तो है बारिश का गीत। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेघालय का जो दुनिया है, मेघालय की मैं सुन रहा हूँ, दुनिया सबसे अधिक वर्षा होने वाली जगह के रूप में ये प्रसिद्ध है। जी हाँ, मेघालय जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है श्रोताओं। वैसे अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, इन जगहों की बात करें सेवन सिस्टर्स की, तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की ऋतु कितनी अनोखी, कितनी अलग है, इस पर जितना लिखा जाए कम ही लगता है। सावन की ऋतु में प्रकृति अपने पूरे उफान पर पूरा श्रृंगार किए एक आमंत्रण सा देती है। सावन रंगों में सराबोर होने के दिन लेकर आता है धानी चादर में लिपटी ये धरती नीले आसमान को ओढ़े, ऐसे प्रतीत होती है जैसे ऋतुराज हो। सावन की हरियाली संदेश लेकर आती है कि जीवन हरा भरा तभी हो पाता है जो इंसान प्रतीक्षा करना जानते हैं। तो इस सावन आप कहाँ हैं बताएं, क्योंकि कुछ तो हमारी सखियाँ ऐसी हैं जो अपने मायके में होंगी, कुछ होंगी जो अपने ससुराल में होंगी।

हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये किताब सुन रहे थे नया जमाना फिल्म से। और हमारे श्रोताओं के कमेंट्स, हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि आज पहाड़ से घूम के लौट रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अच्छा लग रहा था। भीगते भीगते पहाड़ों का मौसम और वहाँ का नज़ारा, जी हाँ पहाड़ों का मौसम बड़ा ही अलग होता है बारिशों में। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में रह रहे हों तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ इस समय क्या मौसम है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि आज की भीगी भीगी सुरमई ये सफ़र आज का है, सावन का मेला, मेले में बादल, बादल में बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी रे, कोयल की कजरी तान, पपीहे की पुकार, पिया मिलन की आस जगाए। और इन्होंने बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक पैरोडी सी बनाई हुई है। कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओ, और संगीतकार।

भारत भूषण और मीना कुमारी जी के लिए लिखा है हमारे श्रोताओं ने कि उन्हीं पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जाना बेहद पसंद है।

एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो टिटेरी बहुत आती है, उसके लिए पीने का पानी सकोरे में बहुत रख देते हैं भरकर, और वो नहाती भी है, अभी भी खिड़की के कांच को अपनी चोंच से ठोक रही है, बहुत शोर कर रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, वो भी चिड़ियों के फूलों पर गिरते पानी की बूंदों के अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है, हम तो मैदानों के उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ पहाड़ और झरने बिल्कुल नहीं हैं, नदियाँ तो बहुत तेरी हैं और इनमें कई जगह बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है, झरनों का लुत्फ इन बांधों पर लिया जा सकता है।

0: 17th. Mass singing of Bande Mataram, Tiranga rallies, exhibitions, cultural programs and competitions will be organized across the Union Territory. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi today paid tributes to all those who participated in the Quit India movement. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that they united the nation in the struggle for freedom, taking inspiration from Mahatma Gandhi's clarion call of do or die. In a social media post, the Prime Minister said, inspired by the leadership of Mahatma Gandhi, the clarion call of Quit India infused new energy into India's freedom struggle and reflected the unwavering determination of the people to break free from colonial rule. Union Home Minister Amit Shah said that the three new criminal laws introduced by the Modi government replacing the colonial era laws are based on three important pillars: technology, timeline and trust. He said this while participating in the presentation ceremony of the President's Police Colour to the Puducherry Police at the Police Training School ground in Garimedu.
1: Under the leadership of Narendra Modi, the government of India has replaced the colonial era penal code with three new Bhartiya Nyaya Sahitas. Rather than being punishment oriented, these new legal codes are designed to deliver justice to citizens while remaining technologically capable, efficient and time bound. Ultimately, these three codes rest upon three core pillars: technology, timeline and trust.
2: Technology, timeline and trust. These three pillars par khade ki gayi.
0: The National Investigation Agency NIA has arrested another accused in connection with the seizure of a huge consignment of illegal explosives in Mallapuram, Kerala. The agency informed that the accused was arrested yesterday from Manjeri in Mallapuram district. NIA said that the accused is a main conspirator and was involved with the illegal procurement of the explosives seized in the case. The latest arrest comes a day after the NIA arrested three more accused in the Vijayapura in Karnataka on Friday, taking the total number of arrests in the case to 10. The deadlock over alleged irregularities in the JPSC and the JSSC recruitment examinations continues in Jharkhand, with the third round of talks between the government and protesting student organizations underway in Ranchi. We have a report.
3: The third round of talks between the state government and protesting student representatives has begun at the state guest house in Ranchi. A four-member ministerial team is holding discussions with the students on their demands following two earlier rounds of talks. Meanwhile, JKLM MLA Jairam Mehto has begun a one-day hunger strike in support of the protesting students. He demanded a CBI inquiry into the alleged irregularities and said the chief minister should hold direct talks with the students. Ranchi MP and Union Minister Sanjay Seth also met the protesting students at the Jaipal Singh Munda Stadium and expressed support for their demands. He called for a CBI and ED inquiry, cancellation of the JPSC and JSSC examinations and compensation of 1 crore rupees each to the families of the 19 youths who died during the police constable physical test. The students, meanwhile, continue to press for concrete action and reforms in the recruitment examination system. Meanwhile, a medical team is also monitoring the health of students who have been on hunger strike during the prolonged agitation. All eyes are now on the outcome of the third round of talks and tomorrow's proposed assembly gherao. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: On the occasion of Independence Day, 124 eligible prisoners in Madhya Pradesh will get a reduction in the sentences. Of these, 118 prisoners serving life sentences will be released early. Six other eligible prisoners will get special remission. The benefit will be given based on good conduct, disciplined behavior, and the prescribed rules. The government said this step will encourage other prisoners to maintain good behavior. It will also give released prisoners an opportunity to return to the mainstream of society. The centers agreed to lift 18 lakh metric tons of old grain stock lying in Punjab mandis by the 20th of next month to clear storage space for the state's expected bumper paddy crop. A correspondent reports that Punjab is expected to supply 170 lakh metric tons of good quality rice in the central pool this year. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh for the day. Heavy rainfall is also expected over Rajasthan, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Assam and Meghalaya till tomorrow. The Met Department predicted that thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Odisha and Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. Furthermore, the weather agency has forecast a spell of light rainfall towards evening in Delhi today. Fresh rains have renewed flood concerns in Odisha, with several rivers rising again, even as many areas are yet to fully recover from the previous deluge. The Jalaka in Balasore and Betarani and Salandi in Bhadrak are rising, while flood water has been released through 12 gates of the Hirakud Dam in Sambalpur. With more rainfall forecast, authorities are closely monitoring river levels and vulnerable low-lying areas across the state. We have more from a correspondent.
4: Fresh incessant rainfall has renewed flood concerns in Odisha, with several flood-affected areas facing the threat of further inundation. In Balasore, the situation in Basta has again turned serious as the Jalaka River rises following heavy rain in its upper catchment areas of Mayurbhanj. Rain in Rasagovindapur, Suliapada, Morada and Chitrada has swollen the Jalaka River, inundating low-lying areas and submerging hundreds of hectares of farmland. Flood water from the last flooding has still not completely receded in several areas. In Bhadrak, rising Baitarani and Salandi rivers have added to concerns. Meanwhile, flood water is being released through 12 gates of Hirakud Dam in Sambalpur. With more rain forecast, authorities remain on alert and are closely monitoring the situation. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: The flood situation in Assam remained grim, with the toll reaching 99, as one more death was reported and over 1.47 lakh people still affected, an official bulletin said. The Assam Disaster Management Authority, ASDMA, bulletin said the latest fatality was reported from Golaghat district. The bulletin said 12 districts of Sonitpur, Nogaon, Golaghat, Shivsagar, Hozai, Darang, Jorhat, Dhemaji, Charaidio, Karbi Anglong, Lakhimpur and Vishwanath remain affected by the deluge. In Jammu and Kashmir, annual Amarnath Yatra will remain suspended on both Pahalgam and Bal Tal routes from today due to recent rains, repair work of pilgrimage tracks and forecast of adverse weather conditions over the next few days. The decision to temporarily halt the Yatra has been taken keeping in view the condition of the tracks as well as a weather forecast issued by India Meteorological Department. In Punjab, three Kawariyas were killed and another seriously injured when a car hit them on the Sarhind GT road early morning today. They were returning from Kotakpura in Punjab's Faridkot district after carrying holy water from Gangotri in Uttarakhand. Police have registered the case and efforts underway to trace the driver who fled the spot. In China, Shanghai two airports cancelled more than 1,300 flights and authorities relocated over 3 lakh people in surrounding regions as the country prepared for Typhoon Dolphin. The outer bands of the storm hit northern Taiwan yesterday, including the capital Taipei, bringing rain. Some Taiwanese airlines also cancelled their flights to China. Iran insists on U.S. concessions before opening the Strait of Hormuz. Security Chief of Iran, Mohammad Bagheer Jolgar, has issued a list of demands for the U.S. to fulfill before Iran would reopen the Strait of Hormuz. Published by state media, the list includes measures such as lifting the U.S. naval blockade, withdrawing military forces and permanently ending the war. Secretary of Iran's Supreme National Security Guard, Zolgadr, has also called for the U.S. to compensate Iran for damage caused by the conflict and release frozen Iranian assets. In Canada, the westernmost province of British Columbia has declared a state of emergency as a fast-moving wildfire destroyed homes, trapped residents and forced more than 20,000 people to flee communities. Premier David Eby announced the emergency as more than 100 wildfires burned across the province. Nearly half of them were out of control. Eby said that some residents were trapped and had to be rescued. The entire community of Summerland, home to about 12,000 people, was ordered evacuated overnight, along with about 8,000 people in and around nearby Peachland. In badminton, India's Ashmita Chalia has clinched the women's singles champion at the Korea Masters tournament today. Ashmita defeated China's Han Qianxi. The shuttler recovered from losing the opening game to prevail 14-21, 21-14, 21-14 in 53 minutes. With this win, she claimed her first BWF title. She has also become the first Indian to win the Korea Masters. and it's a second consecutive women's singles title for India after Tanvi Sharma's victory at the Taipei Open last week. India's medals tally rises to 3 at the World Athletics Under-20 Championship in the United States. Basant Kumar Meghwal won a silver in high jump, while Shahnawaz Khan wins a bronze in the long jump today. In men's high jump, 19-year-old Meghwal cleared his personal best of 2.21 meter to win a silver medal. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says three new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests one accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallappuram, Kerala. Fresh rains revive floods concerns in Odisha with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chalia clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
6: हर घर तिरंगा।
7: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
5: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ BR आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
8: It is indeed to pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
5: Uparashtrapati Radhakrishnan 2 divasiya Andaman aur Nicobar dweep samuh ki yatra par hain. इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
9: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
5: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
5: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
2: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
5: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
3: सरकार की चार सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने

0: सीबीआई और ईडी जांच जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात गंभीर हो गए हैं, क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

रवि ने इस गीत को सुरबद्ध किया। सहर लुधियानवी की रचना थी महेंद्र कपूर की आवाज में। हमराज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गीत है। आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

खफा ना होना अगर मैं पूछूं कहां से पाया ये हुस्न शबाब तुमने।

आ रहे हैं विविध भारती पर। सुन जरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।

0: फिल्म शागिर्द का दो गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

राम और श्याम फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया, शकील बदायूं के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बादलों का दिल लिए, फूलों की मुस्कान लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। चलिए देखते हैं श्रोताओं आज कौन से गीत हैं शामिल और किन श्रोताओं की पसंद है शामिल आज के इस प्रोग्राम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के, किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का ये गीत। सुनना चाहा आप सभी ने धमतरी राजिम से रमेश लाल धीवर, यदुवंश धीवर, कुणाल ममता और मुन्नी धीवर ने इस गीत को सुनना चाहा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा रियाज, शमरीन मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड के। और पालदा नाका इंदौर से इसी गीत को सुनना चाहा हसीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी और बबलू मंसूरी ने इसी गीत की फरमाइश की। कुंडलिक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी वैष्णवी ने हिंगोली वारंगा से और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस और बदलापुर मुंबई के हमारे श्रोता हैं सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता, अर्जुन गवाणकर और बहादुरा नागपुर के ये श्रोता हैं वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमार ध्वनि। और इसी गीत को सुनना चाहा जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, ये हमारे श्रोता हैं दौलत बेग, दौलताबाग, मुरादाबाद से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर साहिर लुधियानवी की ये रचना आपने सुनी लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की गई इज्जत फिल्म का ये गीत था। बड़ा बाजार उदयपुर राजस्थान से गोपाल तंबोली, कांता तिलक, किरण सक्षम और लावण्या तंबोली की ये फरमाइश थी। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानसी शांति, मानस और शांति, ऋचा गायत्री वैष्णव की ये फरमाइश थी। और ये पत्र है छत्तीसगढ़ के इस जगह का, नाभा जिला पटियाला से पंजाब सोमदत्त, केरव और ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी। और जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था। नचगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता, प्रदीप, विशाल, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते थे।

आनंद बख्शी का लिखा अनजाना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, आवाज़ें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की ये आवाज़ें थी। अनजाना फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान नाज वसीम अकरम की ये फरमाइश थी। और इस गीत को सुनना चाहा, इसी गीत को बीकानेर राजस्थान से हुसैन भिश्ती, सुल्ताना भिश्ती, असलम और विनोद इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे। इस्लामपुर जिला बुल्ढाना, सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना सुमेद कुमार दामोदर की ये फरमाइश थी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला शेफाली, मास्टर डेविस और शेफी की ये फरमाइश है। और टीवी टावर नागपुर से डूंगर दिवे और दीक्षा रमाताई, सीमाताई और राहुल की ये फरमाइश है। और इसी गीत के लिए लेक सिटी उदयपुर से पत्र आया है। प्रकाश चंद्र, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको इज्जत फिल्म का गीत सुनवाया था। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर की भी फरमाइश थी।

आप ये गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, सहल ध्यानवी के बोल खयाम की तर्जी है। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रीतू की फरमाइश है। ये बाबूराम आनंद, बीना खुशी, नंदग्राम, गाजियाबाद से इन्होंने पत्र भेजा है। पी बी कुलथे, हनुमंत कुलथे, समर्थ कुलथे, इनकी फरमाइश आई है बीड़ शहर से।

और कभी कभी फिल्म के इस गीत के लिए जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, इनकी फरमाइश आई हनुमान जंक्शन राजस्थान के। ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और ये हमारे श्रोता हैं मालेगांव से अरविंद, सुनीता, रोहित और निखिल सारकर, ये हमारे श्रोता हैं। और चौक रोड यानी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जितेंद्र और मीका विरक की फरमाइश हमने आज शामिल की। आपके पत्रों का श्रोता रहता है हमें इंतज़ार। मनचाहे गीत कार्यक्रम का यही था आखिरी गीत और हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतज़ार। मनचाहे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है, दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार और ज़रूर लिखिए पत्र अपने पसंदीदा गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

0: विविध भारती।
1: नाटी तरंग में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। आज सुनिए दूसरा भाग किसी एक फूल का नाम लो।
2: नहीं, आप सब लोग को छिपा रहे हैं। अदालत फिर आपसे पूछती है, शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं?
3: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
4: जज की आवाज,
3: खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
4: मुकदमा खत्म हुआ। कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन लेकिन अदालत की ये आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही।
5: प्रीतम सोनी,
4: कौन?
5: मुझे नहीं पहचानते? प्रीतम, अपने अंतःकरण की आवाज को भी नहीं पहचानते? उस अदालत में तुमने झूठ बोला। स्वाति, पाठक, सुंदर और केशव सबके साथ मिलकर तुमने अदालत में कहा था कि तुम शेखर खोसला के बारे में कुछ नहीं जानते।
4: नहीं,
5: लेकिन क्या ये सच है?
4: कामनी को बचाने के लिए औरों की तरह मुझसे जो कुछ बन पड़ा किया, सच को छिपाया, सच को छिपाया।
5: क्या आप अपनी अदालत, अपने अंतःकरण की अदालत में भी वो सब छुपाओगे, झूठ छुपाओगे?
4: नहीं,
5: बोलो।
4: नहीं, अब सच सच कहना होगा। मैं जानता हूं कि कामनी ने जानबूझकर, सोच समझकर शेखर खोसला का खून किया। शेखर खोसला उसे ब्लैकमेल करना चाहता था, ब्लैकमेल करना चाहता था।
6: वाह, वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ है कामनी?
7: प्रीतम भाई, मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन जो है वही मांगता है वो।
6: क्या मतलब?
7: मतलब मेरा रूप, मेरा शरीर, मैं आपको कैसे समझाऊं?
6: ये बात और कोई भी जानता है?
7: नहीं।
6: पाठक भी नहीं?
7: नहीं, पाठक भी नहीं। सबसे ज्यादा डर तो मुझे पाठक का ही है। ये बात जानते ही पाठक समझ जाएगा कि मैं उससे डरती हूँ, उसे खो देने के लिए तैयार नहीं। तब क्या वो मुझे अपनी बांदी न समझेगा? मेरा मनमाना इस्तेमाल नहीं करेगा? शेखर खोसला की तरह वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा?
4: तुम्हारी बात सही है कामनी, प्रेमी कमजोरी जानकर और भी बेरहम हो जाता है। स्वाति मेरी कमजोरी जानती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता।

0: कुछ भी नहीं कर सकता उसका, और सुंदर का कड़वा प्रसंग छेड़ने की मुझमें हिम्मत नहीं है, और वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूं, मैं उदारता का ढोंग रचता हूं, पर रात दिन क्या बीतती है मुझ पर वो मैं ही जानता हूं। कई बार सोचता हूं नाटक ही नाटक में पिस्तौल के अंदर असली गोली भरकर आत्महत्या कर लूं, या कहीं चला जाऊं, पर मुझे डर है स्वाति और सुंदर मुझ पर हंसेंगे, और इस तरह अनजाने ही मैंने यह ख्याल कामनी के दिमाग में डाला, पिस्तौल में असली गोली भरकर आत्महत्या करने की। उसने आत्महत्या न करके खून किया, और जिंदगी भर की कैद पाई। उस घटना के लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं, भले ही अदालत में कोई बात नहीं खुली, कहानी आखिर तक बिल्कुल चुप रही। शेखर खोसला का राज अभी तक राज ही है, पर मैं अपने आप को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता हूं।
1: ओ, ये कौन आमर आई समय कौन है?
2: भैया मैं यानी केशव ठाकर।
1: क्या
2: गुड इवनिंग यानी नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना?
1: ओ हाँ आओ।
2: नमस्कार कामनी जी।
3: नमस्कार, कैसे हैं केशव जी?
2: अजी मजे में हूँ। सुंदर भाई ने कहा था एक नाटक चाहिए, सोचा दे आऊं।
0: तुम जरा जल्दी आ गए।
2: मैं पहले पैदल आ रहा था, फिर सोचा बस में चलूं। ये रही नाटक की कॉपी। ठीक है तो मैं जाऊं।
3: फिक्र कीजिए, जल्दी भी क्या है?
2: क्यों, जल्दी होगी तभी बस में आए हैं। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ, मैं तो नाटक सुनाना चाहता था।
3: बैठिए, क्या जल्दी है?
0: हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे।
2: जरूरी बात? अति सुंदर। हाँ, कहिए, मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ तो।
0: हमारी निजी बातें थी।
2: निजी बात? हाँ, समझा। आप लोग शायद है, मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में बात कर रहे थे। वो बात ये थी कि मैं बाहर ही सोच में खड़ा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, और तभी आपकी बातें सुनाई पड़ी जी।
0: छिप छिप कर बातें सुनते हो बदतमीज।
3: क्या हुआ केशव जी?
2: जी
3: आप नाटक पढ़िए ना, देखक के मुंह से सुनने में कुछ और ही मजा है।
2: जी जी बहुत अच्छा। हाँ तो सुनाता हूँ, लेकिन सुनिए, आप लोग शेखर खोसला को जानते हैं
0: क्या? तुम जानते हो?
2: जरूर, बहुत अच्छी तरीके से। अरे कुछ ही दिन पहले वो अफ्रीका से आया है।
3: वो शेखर खोसला? आपके शेखर खोसला कोई और ही होंगे।
2: अजी तो आप किस खोसला की बातें कर रहे थे?
3: होगा कोई, छोड़िए नाटक पढ़िए ना।
2: हाँ तो वो नाटक का नाम है रात की रानी।
3: वाह कैसा खूबसूरत नाम है, रात रानी। आगे
2: उसमें पात्र हैं एक लेखक और
0: आत्मकथा लिख लाए हो?
2: नहीं, आत्मकथा नहीं लिख लाया। हाँ वैसे देखा जाए तो आत्मकथा ही है।
0: ये क्या झमेला है?
2: हाँ वो मैं ये कह रहा था कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ।
0: क्या कहा?
2: आपने पूछा था ना कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ या नहीं।
0: तो तुम जानते हो?
3: जानते होंगे।

0: क्या खास बात है? एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, इसमें क्या?
1: नहीं नहीं शेखर खोसला को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे हमने अपने बुरे और अच्छे दिन साथ साथ बिताए थे। हाँ सालों गुजर गए। 5-6 साल पहले हम बंबई की एक कोठरी में साथ साथ रहते थे। अरे वो बेकार था और मैं भी। फिर वो अफ्रीका चला गया, वहां से बहुत सा धन कमाकर जब लौटा और अरे छोड़िए भी, किस पछले में मैं पड़ गया। हाँ अजी वो अब मैं नाटक पढ़ूं?
0: हाँ हाँ पढ़िए ना।
2: नहीं, पहले शेखर खोसला के बारे में सब कुछ बताओ।
1: शेखर खोसला? हाँ शेखर खोसला बड़ा होशियार आदमी था। हाल ही में अखबार में नाम भी छपा था उसका और फोटो के साथ।
2: अच्छा?
1: हाँ, अरे अपनी जात के किसी समारोह में मुख्य अतिथि था वो।
2: उम्र क्या है?
0: सुंदर तुम बेकार परेशान हो रहे हो, केशव जी किसी दूसरे शेखर खोसला की बात कर रहे हैं।
1: मुझसे यही कोई 2 साल बड़ा होगा।
2: मतलब ये कि शेखर खोसला 30-32 का है, ठीक?
1: और वो कहता था अरे लड़कियां उस पर जान देती हैं जान। हाँ।
0: और क्या?
1: और मैं सोचता था कि कामनी देसाई का मतलब ये है कि आपका रूप ऐसा है
2: के क्या
1: के शेखर इन पर जान दे।
2: शेखर खोसला का रंग कैसा है?
1: जी गोरा।
2: रंग गोरा है?
0: गोरा।
2: आंखों में
0: भूरापन,
2: काले बाल और चौड़ा माथा। वो आदमी कैसा है?
1: अजी बहुत चालाक। उसी पर तो ये नाटक लिखा है मैंने। हाँ।
2: देखो केशव, मुझसे बाद में मिलना, एक जासूसी कहानी बताऊंगा।
1: अरे अरे लेकिन भैया ये नाटक पढ़कर तो देखिए।
2: कह दिया ये नहीं चलेगा, नया नाटक तुम्हें सामने बिठा कर लिखवाना पड़ेगा।
1: अच्छी बात है।
2: और इस तरह अपने पास बैठा कर हमने उस बौड़म से नाटक लिखवाया। बाद में कामनी ने माना कि शेखर खोसला ने उसके साथ बलात्कार किया था। कुछ दिनों वो उसके प्रेम में पागल रही और उसने शेखर को बेशुमार पत्र भी लिखे थे। अफ्रीका से लौटने पर शेखर ने कामनी को कीर्ति वैभव के शिखर पर देखा तो उसे अपने वश में रहने के लिए पुरानी बात जाहिर करने की धमकी दी। कामनी ने पाठक के दर से शेखर के सारे पत्र जला दिए। नाटक में पिस्तौल वाला प्रसंग मैंने ही रखवाया था। पता नहीं कैसे कामनी ने उसमें असली गोलियां डाली और शेखर खोसला का खून कर दिया।
3: शेखर खोसला को आप जानती हैं? स्वाति सोनी, बताइए शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानती हैं?
0: मैं जानती हूं, लेकिन ओह, कामिनी को उम्र कैद की सजा हो गई। वो हमारे बीच से चली गई, लेकिन अदालत का ये प्रश्न मेरे दिल में दिमाग में अब भी गूंज रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ शेखर खोसला से उसे बदला लेना था। क्या कहा, अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है?
4: हाँ भाभी।
0: अरे बुद्धू, अगर किसी भी तरह वो तुम्हें ब्लैकमेल करता तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता जैसा है। मुझे तो लगता है तुम कोई धोखा खड़ा कर रही हो।
4: अभी ये धोखा नहीं, हकीकत है। और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे शेखर खोसला से बदला लेना है।
0: तुम्हारे प्यार को ठुकराया इसलिए? कैसे लोगे बदला?
4: लगता है वो मेरे साथ चाल चल गया।
0: क्यों, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया?
4: लेकिन नहीं, तब वो अफ्रीका जा रहा था। मैंने जब उससे कहा कि मैं उसके साथ किसी भी तरह नहीं

0: चल सकती तो उसने साफ कह दिया, चिंता रहे तो फिर मिलेंगे वरना अलविदा।
1: वो अफ्रीका से लौट आया है?
0: हाँ हाँ भाभी, ये देखो अखबार में छपा हुआ उसका ये फोटो देखो। ये देखो इस ग्रुप में दाएं से तीसरा, यही है शेखर घोसला।
1: हाय कैसा है?
0: गोरा, भूरी आंखें, चौड़ा माथा, नुकीली नाक, तेज मिजाज, मजबूत जिस्म।
1: तो क्या आप उससे शादी करेगी और उसकी जिंदगी तबाह करके बदला लेगी?
0: क्या करूं भाभी, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। भाभी मेरे कुछ समझ में
1: अरे
0: नहीं
1: आता। ये सब चालबाजियां छोड़ दे, समझी? अब उसे भूल जाओ और पाठक से शादी करके चैन से जिंदगी बसर करो।
0: भाभी आप समझती क्यों नहीं, जिस आदमी को तुमने उसकी कच्ची जवानी में पाया हो और बहुत दिनों अपनी अमानत समझा हो, अब वो आदमी अचानक भव्य पुरुष बन जाए, कसकर तुम्हारी उंगलियों में फंसे शीशे की तरह एकाएक सारी दुनिया का चकमकाता सितारा बन जाए, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लुट गई?
1: तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कामनी प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, नहीं तो मुझ पर भी भूत सवार हो जाएगा।
0: भाभी मैं बदला लेना चाहती हूँ, मुझे उस आदमी को मिटा देना है।
1: तो शादी कर लो और इस तरह तुम्हारा घायल अहम शांत हो जाएगा, फिर उसे सारी जिंदगी सता कर मारना, तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना उसे। लेकिन कामनी को इतना सब्र न था, उसने केशव ठाकर के जरिए शेखर घोसला को नाटक में आने का निमंत्रण भिजवाया और उसे मार कर ही चैन की सांस ली। मैंने ही उस मनुष्य घड़ी में उसे ऐसी बुरी सलाह दी। मैं उस अपराध के लिए जिम्मेदार हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको मुझको सजा मिलनी चाहिए।
2: शेखर घोसला को आप जानते हैं? शेखर घोसला के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलिए जगन्नाथ महाशंकर पाठक, शेखर घोसला को आप जानते हैं?
3: हाँ जानता हूं, लेकिन अदालत की आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही?
4: यह आवाज तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम भी अपराधी हो। बचने के लिए तुमने अदालत में झूठ बोला। कामनी किसी और से भी प्रेम करती है ये जानकर तुम ईर्ष्या और शक की आग में जल उठे थे।
3: हाँ हाँ, मैं ईर्ष्या की आग में जल उठा था।
0: पाठक, एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है।
3: कौन है वो? वो लेखक केशव ठाकर?
0: नहीं, उसका एक दोस्त है।
3: कैसे परेशान कर रहा है?
0: वो कहता है तू जगन्नाथ पाठक से शादी कर, नाटक कर, सब ठीक है, लेकिन मुझसे संबंध रख।
3: मतलब
0: वो जब भी चाहे किसी बहाने में उससे मिलूं।
3: और तुम ये सब ना मानो
0: तो वो तुम्हें उड़ा ले जाएगा।
3: उस आदमी का नाम क्या है?
0: शेखर घोसला।
3: शेखर घोसला?
0: हाँ हाँ पाठक, पर मैं तुम्हें ये बताती कैसे?
3: कामनी, या तो

0: तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे।
1: हाँ, शक के इसी डरावने क्षण में मेरे दिमाग में पिस्तौल के अंदर असली गोलियां भर देने का ख्याल आया, और उस दिन मंच पर नाटक शुरू होने से कोई 15 मिनट पहले मैंने पिस्तौल में चुपके से असली गोलियां भर दी। ये जानते हुए कि कामनी ने एनसीसी में पिस्तौल चलाना सीखा है और हाथ में आते ही वो पिस्तौल चलाएगी, और इस प्रकार देश पांडे की भूमिका करने वाला वो लेखक केशव ठाकर मर जाएगा, और ये एक दुर्घटना ही मानी जाएगी। ठाकर बात झूठी नहीं थी, शेखर खोसला सचमुच जीता जाता इंसान था। कामनी उसे दर्शकों में बैठा देख सुखबुद्ध खो बैठी और उसे गोली का निशाना बना डाला, लेकिन सजा उसे नहीं मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि शेखर खोसला की हत्या के लिए जिम्मेदार मैं हूं।
2: शेखर खोसला को आप जानते हैं? केशव ठाकर, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, शेखर खोसला के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं?
1: ये आवाज कामनी को सजा हो गई, शेखर खोसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अदालत की आवाज खत्म नहीं हुई। शेखर खोसला मेरा मित्र था, उससे कई बार रुपए पैसे से मैंने मदद मांगी, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था, वो बदमाश था। उसने मेरी पत्नी को भी मेरी आंखों में धूल झोंककर अपना बंदी बना लिया था। सुध-बुध खत्म कर देने वाले कुत्तों की तरह वो मुझे निकले जा रहा था। उसका दर्द, उसकी छूट किसी दूसरे को दे देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
0: केशव जी,
1: कहिए जी,
0: आपको नाटक के लिए कथानक हमेशा जीवन से मिलता है ना?
3: आप नाटक रात की रानी की बात कर रही हैं कामनी जी?
0: आप बता रहे थे ना कि आपने ये नाटक अपने आप, अपनी पत्नी और शेखर खोसला पर लिखा है?
3: और क्या?
0: और ये नया नाटक किसी एक फूल का नाम लो।
3: वो हाँ, वो तो जैसा आप सबने कहा वैसा।
0: बड़े गहरे हैं कवि जी,
1: बड़े गहरे हैं कवि जी। कोकेन जैसा नशा था कामनी के दिमाग में शेखर खोसला की मित का, कहानी का। उसे नशे की आदत पड़ गई थी। रोज रिहर्सल के बाद नृत्य का अभ्यास करते वक्त उच्चारण ठीक रखने के बहाने मुझे बुलाती और मुझसे बातें करती रहती। इसी तरह उसके अहम को संतोष मिलता और पाठक अंधे प्यार के अंधी चलन में दीवाना होकर मुझसे और भी ज्यादा शराफत से पेश आता। उसके कहने से मैंने नाटक में देश पांडे का पाठ करना स्वीकार कर लिया था, और फिर नाटक के प्रदर्शन से एक दिन पहले।
0: सुनिए कवि जी,
1: जी
0: कल शो है ना?
1: हाँ।
0: कल पाठक ने सवेरे 10:30 बजे ड्रेस रिहर्सल रखी है, क्या आप उससे 1 घंटा पहले ठीक 9:30 बजे आ सकते हैं?
1: जी,
0: एक जरूरी बात करनी है आपसे।
1: कामनी जी, मैं ठीक 9:30 बजने से 2 मिनट पहले थिएटर हॉल में पहुंच जाऊंगा आपकी खातिर।
0: कभी जी।
1: जी जी,
0: आप आ गए।
1: मैं बिल्कुल आ गया।
0: ये पहली पंक्ति के तो
1: टिकट
0: मैंने खरीदे हैं अपने पैसे से।
1: टिकट किस लिए?
0: ये तो टिकट शेखर खोसला को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। सीट नंबर A14 और 15। उससे कहिएगा जरूर आए, नहीं तो उसके घर जाकर मैं उसका खून करूंगी।
1: समझ गया। मतलब ये कि आप शेखर खोसला को देखना चाहती हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानी को।
0: हाँ, अपनी मुट्ठी के शीशे को देखना है। देखो मेरे

0: मन की कल्पना से ज्यादा उजला है या ज्यादा काला। देखो आपके उस खूबसूरत चित्तचोर को।
1: और आपको अपनी खोज भी तो सच्ची कर दिखानी है कामनी जी।
0: आप बड़े गहरे हैं कवि जी।
2: और दूसरे दिन शाम को नाटक शुरू हुआ। पर्दा उठने से कुछ ही देर पहले थिएटर हॉल में शेखर खोसला सबसे अगली पंक्ति की A14 नंबर की सीट पर आकर बैठ गया था। पता नहीं कामनी ने कब और कैसे पिस्तौल में असली गोलियां भरी। कोई नहीं जानता उसे मेरा खून करना था या शेखर का। और शेखर खोसला की हत्या के अपराध में कामनी को उम्र कैद की सजा हुई। आज जेल में मैं उसे देखने गया। मैंने उसे अजीब हालत में पाया।
3: शेखर खोसला
2: जेल की कोठरी।
3: हाँ पूरा सच।
2: बकली
3: सच के सिवा कुछ नहीं।
2: शेखर खोसला की बातें कर रहे हैं।
3: शेखर खोसला झूठ बोलोगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताओ बताओ इस मुलसिमा कामनी देसाई को जानते हैं? जवाब तो हाँ या ना। रात को गर्माई मेरी है जिसे तुम गाया प्रेमी चट्टो भाई और नीच माँ की कैद से छुड़ा लाए उस कामनी देसाई को तुम नहीं जानते। पर शेखर मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हारी पूरी पत्तियों में अपना घोंसला बनाया है। तुम्हारी लंबी तीखी नाक से मैंने अपनी जिंदगी में गर्म सांसें ली हैं। तुम्हारी प्यारी मजबूत बाहें पकड़कर तुम्हें मैं आसमान से यहाँ उतार लाई अपने हाथों में। और अब कहाँ गई तुम्हारी वो छेदती हुई आंखें? कहाँ गई तुम्हारी वो घमंड से तनी हुई गर्दन? चुप क्यों हो शिखर? जवाब तो उससे बातें करो। मुझसे बातें करो। मुझसे बातें करो शिखर। मुझसे बातें करो।
4: किसी एक फूल का नाम लो। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी और प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं। स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
6: एक और आ गया।
5: एक और आ गया।
7: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
8: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
9: सुनिए।

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। आगे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। श्री शाह ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भागीदारी के दौरान ये बात कही। श्री शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
2: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। केंद्र सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति जताई है ताकि राज्य में धान की अधिक पैदावार की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति की उम्मीद है। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 21वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर देश में तैयारी के चलते शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों से 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हुई। ताइवान के कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। अधिकारियों ने झेचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी की है। शंघाई के हांगचाओ और पुंडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानें रद्द कर दी। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रस्तुत कार्यक्रम विविध भारती।
1: ने मेरे पैसे अभी नहीं चुकाए, नहीं वो करो जल्दी, ऐसी बात अच्छी नहीं वगैरह वगैरह। वेरी लवली पर्सन, वेरी डिलाइटफुल।
2: ये जो कथा की कास्टिंग आपने की थी तूफानी, इसके बारे में बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि इन दोनों बंदों को उलट कैरेक्टर दिया जाए।
1: ये कोई खास बैठ के सोचने की बात ही नहीं थी ना। अब मुझे सच पूछो तो याद नहीं कि कैसे क्यों सोचा, लेकिन नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला,
2: शरारती भी
1: और दूसरे पे हावी होने वाला। हाँ, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा, मुस्कुराता हुआ, शरीफ, जैसे चश्मे बद्दूर में था। तो मैंने कहा ये तो टेलर मेड नहीं चाहिए, है ना। तो कथा में नसीर विल बी द स्लाइटली बुद्धू भोला भाला राजा राम, जो बिल्कुल सही नेक आदमी, नाक के सीधे जाने वाला। और ये दूसरा जो है चंट होगा, कि दूसरे को ठगाने वाला, अपनी चलाने वाला वगैरह वगैरह। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। दोनों ने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट, मजा आ गया, कब करें। तो मैंने कहा कौन से रोल करना। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो मैंने कहा क्या, जैसे क्या बात कर रही हो, डोंट बी सिली। एंड आई सेड नहीं, आई एम सीरियस, एब्सोल्युटली अ फैक्ट। और नसीर ने कहा मैं राजा राम, तुम भूल गई हो मैं कितना स्मार्ट बंदा हूँ और कैसे मेरा रॉब है ये फलाने का, क्या लोग मुझे मान लेंगे ये भोला भाला बुद्धू राजा राम, डू यू थिंक एनीवन विल एक्सेप्ट मी एज राजा राम। एंड फारूक ने यही कहा कि तुम बताओ कि मुझमें कहाँ बदमाशी तुम्हें नजर आई, बता तो दो जरा, इतना मैं सीधा साधा नेक आदमी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम पोस्टर बॉयज हो क्या या एक्टर हो, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे, अच्छा ये भोला भाला दिखता है तो भोला भाला, और तुम शरारती हो तो तुम दो चैलेंज, डोंट यू वांट एनीथिंग मोर एक्साइटिंग इन लाइफ। तो फिर आई डोंट नो, आई मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि दोनों मान गए फिर और दोनों ने फिर लाजवाब रोल्स किए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत सुंदर रोल्स।
2: और वहां पर फिर दीप्ति चली आई,
1: दीप्ति चली आई, और दीप्ति को तो लिया ही था चश्मे बद्दूर, बाद हमारा बहुत आपस में प्यार भी था। और आई रियलाइज दैट शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, दीप्ति इतनी अच्छी कलाकार है, अरे बाबा बाबा। वो देखो इन दोनों की बड़ी तारीफ हुई, लेकिन दीप्ति को भी देखो ना, तो वो सीधी एकदम चौल में रहने वाली सीधी सी, और इतना प्यार से वो, एक फारूक उसका सीन है कि आजकल देखा नहीं कि लड़कियां कितनी लिबरेटेड हैं, और आप क्या काकू बन के रहती है। तो दीप्ति कहते हाँ वैसे लिबरेटेड मैं भी हूँ, मतलब काफी लिबरेटेड हूँ, ऐसे इतना वो प्यारा से मासूम।
2: बल्कि एक सीन चश्मे बद्दूर का भी याद आता है, जब वो इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं, अब वो 5 मिनट बीत नहीं रहे हैं, और वो इधर उधर देख रहे हैं, और वो रेडियो लगता है हम तुम एक कमरे में बंद हो, और वो सुंदर सीन है उसमें, जो असहजता है तो दीप्ति जी ने जिस तरह से किया है, कमाल कमाल,
1: बहुत सुंदर किया ना दोनों ने। वो जो प्यार का एक मासूमियत जो प्यार की है, इतनी दोनों के तरफ से इतनी सुंदर तरीके से टपकती है, इट्स ब्यूटीफुल। इवन आई लव दिस वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स टोटली माय एंटायर करियर। इफ यू आस्क मी नेम 5 सीन्स व्हिच आई फील आर रियली रियली गुड, दैट्स वन ऑफ देम।
2: क्या बड़ी हंसी की बात हुई है। अच्छा, फिल्मों की पटकथा कितने दिनों में आप अमूमन लिखा करती थी?
1: अरे बाबा ऐसा नहीं मैं कह सकती, डिपेंड ऑन द फिल्म। जैसा कि दिशा का पूछो, तो दिशा को लिखने में मुझे लगा 17 साल।
2: ओ गॉड,
1: मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब ये नहीं कि मैं 17 साल हर एक दिन लिखती रही, थोड़ा थोड़ा
2: प्रोसेस में
1: नहीं,
2: था
1: नहीं। जी। लेकिन वो दिशा के लिए एक कुछ देखा, फिर वो जहन में बैठ गया कि इसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है, तो वो दिमाग के कंप्यूटर में दर्ज हो गया। फिर और कुछ ऐसा ही हुआ, फिर और कुछ, इस तरह छोटा छोटा छोटा छोटा वो समेटता गया मेरे अंदर, और फिर एक दिन विस्फोट हुआ, और फिर मैं लिखने लगी, और फिर 7 दिन में लिखी। तो टेक योर चॉइस, अगर 17 साल लगे कहो या 7 दिन लगे कहो।
2: वाह, ये भी बात है। हाँ। और जब आपने कहा कि ये कुछ देखा और दिमाग के कंप्यूटर में जमा हो गया, तो मुझे याद आता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गई ब्लाइंड स्कूल में
1: जी।
2: और वो रस्सा कशी का खेल हो रहा था। हाँ।

0: सीन बाद में स्पर्श में आता है ना, तो कोई कोई चीजें जो दर्ज होती जाती हैं दिमाग में
1: इसमें वो कथा
0: का हिस्सा बनती जाती
1: हैं। बिल्कुल, अरे ये रस्सी जाने दो, लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो या ट्रम्प्स कहो, क्या है कौन सा सीन, तो वो अंधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। इससे और क्या चाहिए। अब वो मैं बैठ के थोड़े ना सोचा है वो सीन, वो देखा तो लिख लिया, क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, वो उनका गेंद क्या है, एक रिंग है, और उस रिंग में उन्होंने बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी, ताकि वो रिंग में वो सब झुनझुन झुनझुन करके बचते हैं ढक्कन सब, और फिर वो रिंग फेंको तो झुनझुनाती हुई जाती है हवा में झुनझुन झुनझुन झुन, फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है, प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा, नॉट वेरी हेवी, तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है, तो ये बॉलर फेंकता है, ये झुनझुना या बॉल कहो का बॉल है, वो बॉल फेंकता है, ये सुनता है और जैसे पास आया वह ठाक करके
0: क्या
1: मारता है, तो या तो सिक्सर या तो कैच।
0: वाह वाह,
1: ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए, अभी मैं आपको बता रही हूँ तब फिर भी मेरे रोंगटे
0: एहसास हो रहा है।
1: इट इज सो ब्यूटिफुल, इट वाज सो ब्यूटिफुल। तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से, स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया।
0: इसीलिए तो सेल्यूलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का
1: जी।
0: क्योंकि जीवन से चीजें निकाली गई थी। मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो, और वो ये है कि ये जो चॉल है, मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चॉल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया और वो मुंबई में नहीं मिली।
1: नहीं, क्या मजे की बात है ना, मुंबई की खास चॉल पुणे में। दिस इज फिल्म यार, यू नो फिल्म ए टू जेड, फिल्मी एवरीथिंग इज फेक, तो ये भी फेक ही है, चॉल भी फेक है हमारी, लेकिन चॉल फेक नहीं है, पोजीशनिंग फेक है।
0: पोजीशनिंग फेक है कि वो आपको बंबई में मिलती ही नहीं।
1: नहीं ना, बंबई में कितनी चॉल है रे बाबा बाबा बाबा, हम पागल हो गए ढूंढते ढूंढते, मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक, उधर थाना तक, कहाँ कहाँ नहीं घूमे हम, तो कई चॉल तो होती थी, वहाँ के मालिक बहुत बदतमीज होते थे, बेतहाशा पैसा मांगते थे, या वहाँ सुना की कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा, कई चॉले थे इतनी खराब थी, मतलब सीढ़िया लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए, और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ था, कहीं भीड़ जा ही नहीं पाते थे चौल तक, तो इस तरह से एक भी चौल हमें रास नहीं आई, और फिर परेशान हो गए, फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चौल बनाते हैं, अब क्या करें, तो मैंने कहा कि अरे ये चौल करना और वो भी सेट बनाना, हाय हाय कभी नहीं ये हो सकता, लेकिन क्या करे मानना पड़े। फिर किसी ने बताया कि पुणे में देखो ना, पुणे में जरूर मिल जाएगी चौल, तो मैंने कहा नहीं नहीं बम्बई की चौल पुणे में क्यों, तो कहता अच्छा तुम स्टूडियो में नकली चौल लगाने को तैयार हो लेकिन पुणे में असली चौल नहीं चाहिए क्योंकि वो पुणे में है। मैंने कहा हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा, तो फिर हम पुणे गए और पुणे में तो उल्टा ही हुआ, जो चौल देखो हमें पसंद आए, जो चौल देखे वो हमें रास आए, तो फिर हमने 5 चौले शॉर्टलिस्ट की, हाँ, और फिर एक जो बहुत हमारे मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह वगैरह, और वो एक ताड़ुक के चौल करके केसरीवाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पुणे में, तो वो बढ़िया चौल थी, और चारों ओर वो बीच में ये था पूरा एक ग्राउंड सा चौल के बीच में आंगन, और चारों ओर बालकनीज थी, बैलुस्टेड और कटघरे लगे हुए, एक एक एक एक फ्लैट था चौल का, हाँ मतलब कोई भी आदमी चौल वाला किसी भी चौल वाले को पुकार सकता था अपने घर से, और फिर इतनी वो सुंदर चौल, और वो क्या चौल वाले, और वहाँ के बच्चे भी और ये भी, और इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया कि मैं क्या बताऊँ। फिर हम कुछ बहुत ही ढीठ बन गए कि कहने लगे तात्या कल आपके घर हम आ रहे हैं, हाँ तो वो सब वो तोते का पिंजरा जरूर लगा के रखिए वगैरह वगैरह वगैरह, और बड़े प्यार से फिर हमको सब शूटिंग करने देते, कहीं खुद चले जाते बगल में पड़ोस में।
0: इस तरह पुणे की साड़ुम के चौल कथा फिल्म में बम्बई की चौल बनके हमेशा के लिए अमर हो गई, है ना, ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं,
1: कौन सा,
0: जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीडी पे कदम रखा था।
1: प्यारा लगा मुझे, अगर सुनो एक से जल्दी से बताती हूँ कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया, जो आपने गाना बजाया विविध भारती में।
0: क्या बात है, कौन आया कौन आया। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं
1: जी। कौन आ...

0: अब दिशा की तरफ चलते हैं। आपकी जिंदगी की आपकी नजर में हाँ। सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है ये
1: बिल्कुल,
0: और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था।
1: विलासराव सालुंके वाज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग कि वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन विजय एंड सरोजा परुलकर पुणे में, दोनों अब नहीं रहे लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों पति पत्नी थे और हमेशा कुछ न कुछ सोशल काम में लगे रहते थे। कहीं कुछ किसी के साथ जाती हो तो ये दोनों वहां हाजिर, लड़ने के लिए, उनको ये दिलवाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सही, ये तुमने विलास राव की पानी पंचायत नहीं देखी, उनके गांव में वो गांव पूरा पानी को उन्होंने अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है। एनीवे मैं देखने गई उनके गाँव में, नायगांव गई थी। तो वहां नायगांव में उन्होंने कहा सब पूरा देख लिया, ये हो गया वो गया। उन्होंने कहा अच्छा, एक हस्ती से आप नहीं मिल गया, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए। तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठिंगना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया था धूप में काम कर करके, सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का, ये है हमारे सोमा। तो मैं जरा सी चौंके, मैंने कहा ये अच्छा, नमस्कार, बड़ी खुशी हुई। सोमा अपना कुआं दिखा दो सहिताई को। तो मुझे सोमा ने अपना कुआं दिखाया, बाकायदा कुआं, पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो, नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी। कहता ये सोमा ने खुद खोद खोद के पानी निकाला। 12 साल सोमा कुआं खोद रहा था क्योंकि सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे खोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरकाली, उसके अंदर पानी है। ऐसे उसको पता नहीं कहां और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी। और वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे, तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता। और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मायके चली गई, फिर वापस आ गई, बेचारी जाएगी कहां, बच्चे उसके 3-4, और पूरा गांव सोमा पे हंसता था। उसका नाम था पगला सोमा क्योंकि सारे देखेगा सोमा क्या है, अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा। और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव पगला गया बिल्कुल। तो ही हैड द लास्ट लाफ। फिर गांव वालों ने आगे बढ़ बढ़ के फिर उसका कुआं बांधा, ये किया वो किया। तो विलासराव ने कहा सही, ये फिल्म बनाने लायक है। मैंने कहा जरूर है और ये मैं अपने दिमाग में दर्ज कर।
0: इंसान के जुझारूपन की मिसाल,
1: जुझारूपना की क्या मतलब, किस हद तक उफ। और फिर ये जब हुई फिल्म, ओम पुरी ने ये रोल किया
0: जी,
1: और शबाना ने उसके बीवी का किया, और वो इतना उनके प्यारे सीन है, वो कहती है कि अरे इस चुड़ैल को लेके मैं क्या करूं, कोई औरत होती तो मैं देख लेती, लेकिन ऐसी सौत का क्या करूं जो कुआ मतलब उसकी सौत।
0: बिल्कुल।
1: तो, और हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई
0: जी।
1: फिर वो कुआ हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक पूरी फिल्म के लिए ये शायद इट्स नॉट मीटी इनफ, नॉट फ्लेशी इनफ। हाँ, आगे इतना रोजमर्रा के काम में लग गई। और फिर काफी साल गुजरे और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सुभाषिनी अली,
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: मालूम है, कैप्टन लक्ष्मी की बेटी और खुद मार्क्सिस्ट है, और बहुत धड़ल्ले वाली औरत और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। तो वो बहुत मिल मजदूरों का काम करती थी मुंबई में, और वो एक दिन मेरे घर के पास ही रहती थी तब। तो मेरे घर आई और दो चटाइयां देखी सुभाषिनी ने, कहती है सही दो दो चटाइयां क्या करनी। मैंने कहा है पड़ी है। कहते एक चटाई तो दे दो ना मुझे। मैंने कहा तुम क्या करोगे चटाई लेके। कहते मेरे लिए नहीं रे, मुझे अपने गाड़ा में काम आएगी। मैंने कहा क्या, कहाँ काम आएगी। कहते गाड़ा, गाड़ा, गाड़े में जाती हूँ ना मैं, तो गाड़े में काम आएगी। मैंने कहा गाड़ा मतलब क्या बोल रही हो, क्या गाड़ा। तो सुभाषिनी ने ऐसी आंखें फाड़ के मुझे देखा, कहती है तुम मराठी औरत अपने आप को डायरेक्टर कहती हो, लेखिका कहती हो, और तुम्हें गाना नहीं मालूम बम्बई में रहकर। मैंने कहा नहीं नहीं सच्ची नहीं मालूम मुझे क्या गाना मतलब। कहती चल मेरे साथ चल। और फिर मैं सुभाषिनी का पल्लू पकड़ के उसके साथ गई और हम चिंचपोकड़ी और यहाँ वहाँ वो सब मिल एरिया में वो मुझे ले गई और गाड़ा देखा मैंने। गाड़ा क्या होता है, इट्स अ डॉर्मेटरी, बड़ा कमरा जिसमें 20 से लेकर 40 बंदे एक साथ रहे,
0: एक लंबा
1: लंबा बड़ा एक हॉल, हॉल ही गाड़ा मतलब हॉल कमरा। हाँ, लेकिन उस कमरे में साथ रहते हैं, साथ काम करने वाले मिल मजदूर, 40-40 मिल मजदूर एक कमरे में। हाँ, तो वो जैसे मैं दहलीज पर खड़ी हुई, सुभाषिनी तो अंदर गए ठकाठक करके, और मैं आंखें फाड़ के देखती रही 40 जने अंदर कमरे में, और अलग अलग उनका हर एक का कुछ ना कुछ चल रहा था। कोई पेपर पढ़ रहा था दिन का, कोई लेटर लिख रहा था पोस्ट कार्ड पे, कोई फ्लूट बजा रहा था, चार जने पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक जन स्टोव पे चाय बना रहा था, एक जन कुछ भी, मतलब अलग अलग अलग अलग उनके सवाल। और बहुतेरे लोग सोए थे चटाइयों पे, गहरी नींद सो रहे थे। चारों तरफ ये झमेला चल रहा है, लेकिन बीच बीच में लोग बड़े मजे के खर्राटे भी भर रहे हैं। तो मैं देखती रह गई, खड़ी रह गई। फिर उसने कहा, अरे आओ ना, क्या देख रही हो? फिर मैं अंदर गई और फिर बातें करने लगी लोगों का। वो सब कहते, हम अपना देहात छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने घर बार सब छोड़ के हम वो अपने पेट भरने के लिए, रोजी ढूंढने के लिए बम्बई शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो गाँव में रह गया पीछे, दिल छोड़ के आए हैं, बाकी सब लेके आए। तो मैंने कहा, तो फिर आपको सिर्फ एक 6 फुट जगह मिलती है? कहते हाँ, ये हक की हमारी 6 फुट जगह जहाँ हम सो सकते हैं आराम की नींद। कहते हाँ, सो सकते हैं लेकिन करवट नहीं बदल सकते। मैंने ये फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल किया है कि हम सो सकते हैं, करवट नहीं बदल सकते। किसी ने मुझे कहा, क्या तुम बहुत अच्छा डायलॉग लिखती हो? मैंने कहा, मैं डायलॉग चोरी करती हूँ। मेरा अपना
0: आम जीवन से आया है जी।
1: तो एनीवे, तो ये इस तरह वो देख के मैंने कहा, ये तो इट्स टू ड्रामेटिक, टू फिल्मी टू नॉट डील विथ। तो फिर ये भी वो कुएं के साथ ये
0: जुड़ गया।
1: और देन द लास्ट थिंग वॉज विजय सरोजा अगेन, दे वर रिटर्निंग फ्रॉम निपानी। निपानी इफ यू नो,
0: इंडस्ट्रियल एरिया,
1: इज द इंडस्ट्रियल एरिया नोन फॉर बीडी वर्क्स। हाँ, निपानी की तंबाकू और निपानी की बीड़ियां मशहूर है। तो वहां औरतों ने एक जंग खड़ा किया था, क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनको पैसे ठीक से नहीं दे रहे थे, उन पर वो बहुत ही क्या क्या तरह तरह के जुल्म होते थे वगैरह वगैरह। तो विजय और सरोजा वो के साथ शामिल के लिए गए थे निपानी, और वहां से लौट रहे थे। और विजय ने मुझे जो किस्से कहानियां सुनाई, तो मुझे लगा मैं चारों तरफ मेरे तंबाकू ऐसे
0: उड़ रहा है
1: और मेरा दम घुट रहा है ऐसे। तो ये फिर तंबाकू वाली औरतें भी खड़ी हो गई लाइन में, और फिर देखते ही देखते जैसे जादू हुआ, और फिर 7 दिन के अंदर इसका मेल हो गया, और फिर पटकथा मेरी बन गई।
0: क्या बात है। और मैंने हमेशा हर जगह ये देखा है कि आप ये कहती हैं कि आपकी नजर में ये आपकी सबसे अच्छी फिल्म है।
1: जी जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण फिल्म है। इसका अब तक मुझे लगा कि एक तो ये मेरी 4थी-5वीं फिल्म थी, मतलब फीचर फिल्म, बाकी छोटी मोटी छोड़ो, डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म, लेकिन तब तक मुझे ये मीडियम भी खासा समझ में आया था, और लोग भी बहुत बढ़िया मिल गए, एक्टर्स भी नाना पाटेकर और रघुवीर यादव, नीरू फुले, शमाना आजमी, ओमपुरी और बाकी सब मिल वाले, एक्चुअल मिल वाले, ऐसे एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना, जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ, लिखा हुआ बम्बई बम।
0: हाँ, वो आपने खुद लिखा है?
1: जी,
0: ये भी कमाल की बात है।
1: मैंने खुद लिखा
0: जी।
1: और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे, और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया, और राहुल रानडे ने बढ़िया पार्श्व संगीत दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस फिल्म में। और फिर एडिटिंग क्या, फोटोग्राफी क्या, फोटोग्राफी के लिए 2 जने थे, गांव की फोटोग्राफी मधु अंबटने की, केरल का मशहूर कैमरामैन, और जी एस भास्कर ने बंबई की फोटोग्राफी की।
0: क्या
1: तो
0: बात,
1: दोनों
0: है?
1: ने कमाल किया, मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस।
0: जब एक काम की ऊर्जा आगे बढ़ती है तो समान विचार के लोग जुड़ते चले जाते हैं।
1: सही बात है,
0: है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। यहाँ मैं 2 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ, एक तो नाना पाटेकर से हुई लड़ाई और उनकी दादागिरी, और दूसरा रघुवीर यादव का आगमन इस फिल्म में।
1: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं, कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे, और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है।
0: जी जी,
1: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड, सही, आई वॉन्ट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल, एंड आई gave him Nana Patekar.
0: Wow.
1: And Nana, it was such a small role, wo आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें। लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
0: जी,
1: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
0: जुनून
1: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया।
0: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
1: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना लिया, करना रपन, हाँ मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत कैसे, तुम वसंत की तो फिल्म की शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर, और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई जाहिर है।
0: मुझे लगता है पहली बार किसी ने आपको हराया होगा।
1: पहली बार तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा कम ही मौका आता है, लेकिन उसने हराया, यस इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि अरे वो बहुत बड़ा लगता है उस रोल के लिए, नहीं वो सही लगता है अपनी जगह पे, उसने अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे फिर बहुत आगाह किया, दादा

0: ले रही हो तो देखो, तुम्हें मालूम है ना, वो झगड़ा करता है, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है, और कभी कभी गुस्सा आता है तो इतना वो शोर मचाता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा देख लूँगी देख लूँगी। और वाकई में फिर एक बार ऐसा हुआ कि बकुरी गांव में हमारा शूटिंग था, और वो किसी बात को लेकर खूब बिगड़ गया, खूब चिल्ला चिल्ली ये वो, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ फला। तो फिर विनी, मेरी बेटी विनी की, नाना की अच्छी दोस्ती थी, तो विनी ने फिर जाके उसको समझाया दादा बाबा करके, फिर वो शाम तक ठंडा हो गया, फिर शूटिंग चालू रही। ऐसे और एक बार कभी हुआ, अब वो मुझे डिटेल याद नहीं है। तो ये दो बार हुआ, दो बार निपटाया, दोनों बार हम बड़े डरे हुए थे, और मैंने भी कि नाना ऐसा कहे ये वो, मन में ना होते हुए भी बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार डबिंग कर रहे थे हम, फिल्म तैयार हो गई थी, शूटिंग पूरा हुआ था, और अब डबिंग बाकी। तो बीआर में, अगेन बीआर में डबिंग चल रही थी, और किसी बात को लेके वो बिगड़ा, उसने
1: लो
0: स्क्रिप्ट था ये कहे ये वो करके चिल्लाने लगा। अब मेरा भी माथा ठनका, और गुस्सा मेरा भी थोड़ा सा वो, लोगों को
1: खतरनाक
0: मालूम
1: वाला
0: है
1: है।
0: खतरनाक वाला हो सकता है कभी कभी। तो फिर इस बार मेरा भी एकदम से, मेरी घंटी बजी। फिर मैंने कहा नाना तुमको इस तरह पेश आना है तो यहाँ जगह नहीं है, बाहर हो जाओ एकदम, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और यहाँ अगर रहना है तो तमीज से पेश आना पड़ेगा, वगैरह वगैरह जो भी, तू तू मैं बहुत हुई। फिर कहता तुम मुझे बाहर निकाल रही हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो गया दरवाजे तक, जा रहा हूँ वापस नहीं आऊँगा, मैंने कहा यही आइडिया है जाओ। तो गया गया, और सब हक्का बक्का, अंदर 7-8 लोग थे हम बाकी, अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं। कह तो दिया जोर से, फिर किसी ने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा एनीवे बाकी लोग अभी काम अपने पास है तो काम जारी रखते हैं। नाना फिर आ गया दरवाजा खोल के,
1: कितनी देर
0: तो
1: बाद?
0: कुछ 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद। हाँ मैंने कहा अरे तुम आने वाले नहीं थे आगे? कहते हाँ सुनो इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम औरत जात हो इसलिए बच गई, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं था। मैं कहो तुम
1: अरे
0: औरत हो इसलिए बच गई करके
1: जी
0: धड़ाम से बड़ा ड्रामेटिकली निकल गया। तो वो निकल गया, फिर हम चुप।
1: ड्रामेटिक सी
0: वेरी
1: ना।
0: ड्रामेटिक। और फिर सबने कहा कि फलाने को कहें जाके, अब क्या दूसरे ने डबिंग करने का सवाल ही नहीं था, और वो
1: हाँ
0: ये कर सकता था बिल्कुल कायदे से, कानून के खिलाफ होगा। तो मैंने कहा नहीं सुनो देखते हैं जरा, अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज बाकी काम करेंगे, देखते हैं। सब घर गए। अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सुबह सुबह बड़ी जल्दी फोन आया, फोन उठाया, सही नाना, अगर मैं नाना भूलते, बड़ी मीठी प्यारी आवाज़ हमेशा वाली, हाँ काहे रे नाना, मैं भी उतनी ही मीठी आवाज़ में, अगर आज कितनी वास्ता शिफ्ट है, कितने बजे की शिफ्ट है आज? हाँ तो मैंने कहा दो शिफ्ट है, एक 9 बजे और एक 3 बजे, तुम्हें कौन सी पसंद है? वो कहता मैं 3 बजे आऊँ तो चलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेगा, आ जाओ, अच्छा मिलते हैं, बात खत्म।
1: क्या
0: मतलब
1: बात है,
0: प्याले में, मराठी में कहते हैं ना
1: प्याले में तूफान।
0: प्याले में तूफान, वैसे वो हुआ। लेकिन ये अच्छा, तो अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ।
1: जी
0: अभी फ्लैश फॉरवर्ड तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल बाद की बात होगी, और
1: जी
0: मे बी इवन मोर, अब साल वाल मुझे याद नहीं रहते। लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स से मुझे फोन आया
1: हाँ
0: कि इस साल का जीवन गौरव पुरस्कार हम नाना पाटेकर को दे रहे हैं।
1: जी
0: मैंने
1: जी
0: कहा बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? कहते इसलिए कि वो आपके हाथों देने का हमारा इरादा है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप देंगी क्या? मैंने कहा दूंगी जरूर दूंगी। हाँ तो बड़े खुश हुए, अच्छा, तो फला वक्त ये वो आपको लेने आएंगे वगैरह। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये किस्सा सुनाया नाना का। मैंने कहा आज मैं हूँ तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, नाना भी खड़ा पास में। फिर बाद में मैंने कहा कि अंत में मुझे इतना ही कहना है कि देवा परमेश्वरा मला स्त्री जन्माला घातलं से फार उपकार केलेस, कारण आज मी म्हणून नानाला हा मुजरा देऊ शकते।
1: बहुत शानदार
0: एंड नाना लॉफ्ट एंड एंड एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। सब
1: अद्भुत।
0: लोग उठ के तालियां बजा रहे, और नाना ने जो मुझे जप्पी लाई, बहुत हंसा नाना, बहुत हंसे हम दोनों।
1: क्या
0: और
1: बात है, उसका हिंदी बता देते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लिया इसलिए आप बच गई,
0: हाँ
1: और इसीलिए आज नाना को आप जीवन
0: मैं
1: गौरव
0: भगवान
1: पुरस्कार
0: की
1: दे
0: दुआ
1: पा रही
0: मानती
1: हैं।
0: हूँ कि हे भगवान मुझे आपने स्त्री जन्म दिया, इसका लाख लाख शुक्रिया,
1: बिल्कुल,
0: ताकि आज मैं ये दे पाई नाना को
1: क्या
0: सुनूं।
1: बात है, बड़े प्रेम से आपने

0: रघुवीर यादव का इस फिल्म में आना भी एक घटना है।
1: रघुवीर यादव का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। रघुवीर मेरा हमेशा का बहुत लाडला एक्टर रहा है, बहुत ही प्यारा, एंड आई लव हिम एज अ पर्सन, आई लव हिम एज एन एक्टर। और इसलिए मैंने ये जब लिखी कहानी तो सोमा तो और कोई हो ही नहीं सकता था, रघु तो मतलब ओमपुरी का छोटा भाई
0: जी जी,
1: जो देखता है कि अपना भाई और भाभी कितने परेशान हैं और मैं बोझ बन के रह रहा हूँ, इसलिए वो बेचारा छोड़ के जाता है। तो रघु किसी और फिल्म में बिजी था
0: जी,
1: तो उसने कहा सही जी ये तो डेट बिल्कुल नहीं हो सकती किसी तरह, मैं बिल्कुल बुरी तरह फंस गए हो, मैं नहीं मना कर सही ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम किसी तरह पटा लो उनको ये वो। कहता हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश मतलब, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? कहता है फिर तो आपको पटाऊंगा।
0: बिल्कुल मासूमियत इंटैक्ट।
1: और उसने किया रोल, और क्या रोल, बहुत सुंदर रोल किया, वेरी ही लिव्स द रोल, रियली लिव्स द रोल।
0: जी जी, और ये दिशा जिसकी बात हम कर रहे हैं सई परांजपे की नजर में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है
1: जी।
0: आपने बीच में एक कहा था कि अगर आपके फिल्माए गए बेस्ट सीन की बात करें तो मैंने चश्मे बदूर के जिस सीन का जिक्र किया था वो शामिल है,
1: वो एक है।
0: तो एक सहज जिज्ञासा है कि बाकी कौन से सीन है?
1: बाकी दो जो है वो दिशा के ही है
0: जी।
1: हाँ, एक वो है जहाँ परशुराम को पानी लगता है कुएं में।
0: वाह वाह वाह,
1: वो सीन है, मैं बताऊं कि परशुराम खोद रहा है कुदर से और वो देखता है, है, है, है, फिर हाथ डालता है, देखता है तो कीचड़, कहता है पानी पानी, और चिल्लाने लगता पानी लग गया मेरे कुएं में, पानी लग गया, हौसा मतलब बीवी का नाम, बच्चों के नाम। और इधर घर में शबाना मतलब उसकी बीवी हौसा अपने बेटी के बाल बना रही है, वो छोटी कंघी होती है ना वो मराठी, और वो एक हमारा करंडा होता है ये रखने का, वो तो वो लेके वह, तो एक छोटा बच्चा आता है कि कद्दू की माँ कद्दू की माँ, उसके छोटे बच्चे का नाम कद्दू है, कद्दू की माँ वहाँ परसा चाचा चिल्ला रहा है कुएं पे पानी लग गया करके। तो ये कहते हे राम मुझे मालूम ही था पगला ही गया आखिर। और वो बेचारी इतनी वो तैयार है ये झेलने के लिए कि अब मियाँ की तो फाइनली घंटी बज गई, इज गॉन मैड। तो वो उठती है उसके पीछे बच्चे और दौड़ दौड़ के, वो कांटे कटोरे में वो कांटे लगता रहता है, दौड़ के बेचारे जा रहे कुएं की तरफ, और फिर वो देखते हैं नीचे और वो फिर दिखाता है कीचड़, और ये कहते हैं कुआ, एंड देन दे कांट बिलीव इट, एंड देन दे गो इन, एंड देन यू नो वो पानी लेके पहले तो अपना
0: माथे
1: पे लगाती है, फिर बच्चे एक दूसरे को लगाते हैं, पानी डालते हैं एक दूसरे पे, और फिर रघुवीर को पोस्टकार्ड एक आता है, और वो पोस्टकार्ड के जैसे हमारे यहाँ शुभ तिलक करके केसर का लगाते हैं किसी की शादी का ये बताना हो या कुछ है केसर का, तो ऐसे मिट्टी का लगाया हुआ है
0: कीचड़
1: के, कि ये जो शुभ तिलक है ये अपने कुएं की मिट्टी का है पानी तो, और फिर वो कुएं का ये होता है। तो फिर शबाना जो आज तक गालियां देती है कुएं को, वो कहती है कुआ माता आपको हमारी वगैरह वगैरह करके बोलती है, तो वो छोटा बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई। छोटा बच्चा कहता
0: कितना सुंदर है, कितना सुंदर।
1: तो दैट्स सो आई जस्ट लव दिस फिल्म बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रू फिल्म एंड इट कीप्स यू एब्सॉर्ब्ड एंड इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट बट इट इज सो एंटरटेनिंग इन द राइट सेंस, आई मीन यू नो उसमें बहुत हंसी मजाक भी है, बहुत ह्यूमन गिव एंड टेक है, बहुत चीजें हैं। मैं सोचती हूँ उसमें सचमुच मैंने अपना सब कुछ डाला है दिशा
0: जी। एक और किसी दृश्य की बात आप करना चाह रही थी।
1: हाँ, वो दृश्य बहुत ही कमाल का दृश्य है कि एक दिन ऐसा आता है कि नाना भी अब पहुंच गया है, नाना मतलब वसंत और सोमा अब दोनों दोस्त बंबई पहुंच गए हैं, और वसंत की बेचारे की नई नई शादी हुई है लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है गाँव, पैसे ही नहीं है, और वो तरसता रहता है बीवी के लिए, बहुत प्यार करता है उससे। फिर एक उनका मिल वाला है जिसका एक छोटा कमरा होता है कहीं, तो वो कोई कहता है कि अरे वो बापू का एक कमरा है वो कभी कभी दे देते हैं किसी को जरूरतमंद को, तुम क्यों नहीं भाभी को बुलाता यहाँ वगैरह वगैरह। तो बापू को पूछता है, कहता है हाँ हाँ बुलाओ बेशक बीवी को। तो एनीवे वो आती है फूलवंती उसकी बीवी, वो आती है और एक शाम को फिर वो कमरा उसका हाँ, और वो दिखाता है जो बहुत अच्छा एक्टर है जिन्होंने कमरे का मालिक बताया, वो किशोर नांदलस्कर
0: जी,
1: हाँ
0: जी
1: ग्रेट कॉमेडियन। तो किशोर नांदलस्कर ही हैज द कमरा, ही सेज कि हाँ भाभी पानी आता है सुबह 4 बजे, हाँ, और फिर वो निकल जाता है। फिर ये दोनों बहुत मशगूल किए प्राइवेसी और इतने दिनों बाद वगैरह वगैरह, और वो दोनों लेटते हैं इतने में खट खट खट खट खट खट, तो दरवाज़ा खोलो खोलो दरवाज़ा, होता है कि कौन है रात के इस वक्त, तो कौन है हमें और कौन है, तो जिसका कमरा है उसकी बहन कोल्हापुर से आई है अपने बच्चे लेकर, और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इन दोनों को खाली करना पड़ता है फिर। और अब दिस इज द सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट,
0: जी
1: दे रीच द गाड़ा, गाड़ा के बाहर एक गली सी है छोटी बहुत पतली गली, वहाँ वो फुलवंती सर पे पल्लू और इसके साथ ट्रंक उसका छोटा बसंत और सोमा भी साथ है, और वो रो रही है और वो कहते हैं कि 40 बंदों के साथ एक कमरे में मैं सोऊं, तो वो कहता है सोमा और चारा भी तो नहीं है ना भाभी, जिसे और कुछ तो चारा होगा, तो बसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह, तो सोमा कहता है रुको, अंदर आता है और अंदर पर एकदम सब बंदे कोई ये बनियान पहना हुआ, तो छोटी छोटी अपने कच्छे में है चड्डियाँ पहने, और वो सब चिल्ला चिल्ली तो कहते हैं क्या एक औरत यहाँ, ये कैसे हो सकता है, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, आज एक आई ये कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह। फिर वो सयाजी शिंदे भी है उन गाले वाले में, वो कहते हैं अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह, कहते हैं लेकिन जगह कहाँ है, तो फिर सोमा कहता है मैं बाहर सो रहा हूँ तुम मेरी जगह वगैरह वगैरह, फिर सब मानते हैं, कहते हैं रुको रुको रुको। और फिर हमने ऊपर कैमरा लगाया था क्योंकि एक वहाँ ये था जहाँ कैमरा रख के हम ऊपर से देख रहे थे, हाँ तो टॉप शॉट था, और सब ये लोग आधे लोग सोए हुए हैं, हाँ, और ये भगदौड़ मची है कि अब औरत आएगी, तो कोई पैजामा पहन रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई एक लुंगी के लिए दोना खींचा खींचा होती है, एक जना तो

0: एक सोया हुआ आदमी उसको उठो उठो कहते हैं वो गहरी नींद सोया, तो उसका चटाई के साथ उसको ऐसे ऐसे से ही उधर लेते हैं। दैट्स अ ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी फनी दिस थिंग। तो ये सब होके फिर नाना और ये दोनों चुपके से अंदर आते हैं, सब सन्नाटा, अब सब लेट जाते हैं और फिर नाना सोता है, वो भी सोती है। और जैसे ये दोनों सोते हैं उनके बगल में एक बुजुर्ग उनमें से जो है वो उनकी तरफ पीठ करता है और साइड वाले को इशारा करता है, फिर वो भी पीठ करता है और सब लोग उनकी तरफ पीठ करते हैं ताकि थोड़ी प्रिवेसी उनको मिले। मतलब ये क्या क्या है कि प्रिवेसी है पीठ करने से, लेकिन उतने में वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से शराफत दिखाना। तो सब एक एक एक एक करके ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, यू सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, सब एक करते हैं और फिर सन्नाटा है। ठीक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स।
1: क्या बात, अद्भुत दृश्य। राजश्री सावंत थी वो एक्ट्रेस।
0: राजश्री सावंत थी
1: जी, कमाल। अब पपीहा है जो चिपको आंदोलन पर बनी। हाँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पपीहा का जिक्र करें।
0: तो पपीहा का जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ। ये फिल्म कह सकते हैं कि अपने भारत के वन, अरण्य, हाँ, जंगल और आदिवासी, इनको ये मेरा एक सलाम है।
1: वाह।
0: हाँ, इसका ये पढ़ के
1: चिपको आंदोलन की
0: आंदोलन का मैंने कहा ये तो कुछ इसको तो करना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन एक फेरी टेल फॉर एडल्ट्स करें, हाँ, बड़ों के लिए एक परी कथा। हाँ, तो अभी तक मैंने कभी प्यार का ट्रायंगल नहीं हैंडल किया था। तो एक प्यार का ट्रायंगल करें, एक कोना फॉरेस्ट ऑफिसर हीरो जिसके लिए वन और जंगल और उनकी रक्षा यही सब कुछ है, ही इज ऑन अ मिशन, मिलिंद गुना जी। देन द गर्ल विनी माय डॉटर हु इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु इज स्टडिंग समाज
1: मानवी की,
0: हाँ, लेकिन आदिवासियों की, शी इज स्टडिंग ट्राइबल्स और इसलिए वो इस जंगल में आई है। और तीसरा एंगल है फॉरेस्ट, खुद जंगल। तो ये इन तीनों को लेके ये ऐसे एक कहानी ये की और बहुत आदिवासी है उसमें नेचुरली। तो अब उस पर एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे सुलझते हैं, ये भी एक मज़े का बता सकती हूँ इस फिल्म को लेकर। कि हमने सोचा कि ये आदिवासी तो दिखाया है बड़े चाव से कि हाँ आदिवासी है, लेकिन अब कौन से आदिवासी, देर आर 300 आदिवासी ट्राइब्स इन इंडिया, भील या डागर या महादेव कोळी या वारली या कौन, मतलब इतने हैं और उनकी भाषाएं अलग हैं थोड़ी सी, उनके रिवाज अलग हैं, तो क्या करें फिर। बहुत है, और गलत भी नहीं करना चाहिए, इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म यू कांट टेक लिबर्टीज विद एक्चुअल फैक्ट। फिर सोचा कि कह तो रहे हैं कि ये परिकथा है बड़ों के लिए
1: जी,
0: तो व्हाई नॉट टेक लिबर्टी एंड हैव एन जेनेरिक ट्राइबल, यू ना भींड है ना भील है ना महादेव कोड़ी है, वो ट्राइबल है बस। एंड ट्राइबल्स हैव अ वेरी यूनिक कॉमन फैक्टर, दे आर ऑल वेरी इनोसेंट,
1: yes,
0: they're all very believing, huh, and they're all very scared, insecure, and they're all very helpful and very loving. So ye sab jo hai to wo sab leke humne tribals to bana diye aur jungle ko bhi juti puti ka jungle kiya, mantarban naam diya jungle ko mantarban
1: ji,
0: aur phir bhasha kya kare, phir ye socha ki एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले तो उनकी भाषा समझ में आती थी, बेशक अपने में अलग अलग हो लेकिन समझ में इसलिए आती थी कि बहुत मराठी की झाग थी उसमें,
1: बिल्कुल,
0: मतलब मराठी को ही ट्विस्ट करके कुछ उन्होंने अपना बनाया था। तो हमने कहा हम भी क्यों नहीं ऐसा ही करें, फिर हमने अपनी भाषा बनाई और मेरे दो फैंटास्टिक असिस्टेंट्स, एक सुहेल अब्बासी,
1: अरे वाह,
0: और एक श्रीधर रंगायन, फैंटास्टिक, दोनों इतने मजे के। तो उन्होंने ये भाषा को लेके तो वो बहुत ही मतलब पगला गए और उन्होंने फिर बहुत ये सब लिखा पढ़ी कि ये किया, उसका व्याकरण बनाया और फिर वो तो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे, नहीं नहीं सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग ही नहीं है पुलिस, अरे चुप कर यार, इसे सही भाषा थोड़ी ना।
1: गजब गजब गजब,
0: इतना सीरियसली वो लेते थे, अरे नहीं नहीं वो गलत बोला मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत है। तो एनीवे तो बहुत मजा आता था वो सब, हम जंगल में वो किया और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री

0: जीवन की नाटकीयता की एक मिसाल और है इस फिल्म से जुड़ी हुई, और वो ये है कि चुनाव में जिस व्यक्ति ने आपको हराया था।
1: यस यस,
0: मैं पूरी नहीं करूंगा ये बात, आप ही बताएंगे।
1: जब कॉलेज में मैं थी तो पहली बार मैंने जो एक प्ले डायरेक्ट किया, अंग्रेजी प्ले था, डियर डिपार्टेड, विच वन द बेस्ट इंटर कॉलेजिएट प्राइज फॉर द बेस्ट प्ले। आई वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड आई ऑल्सो आई एक्टेड इन दैट प्ले, आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये हो गया। तो एनीवे, तब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा दे यूज टू बी डिफरेंट इलेक्शंस इन द कॉलेज, हाँ, फॉर डिफरेंट पोस्ट्स, लाइक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, लेडीज रिप्रेजेंटेटिव, फलाना। सो देयर वाज अ पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी एंटरटेनमेंट, हाँ। सो आई सेड आई वांट टू स्टैंड फॉर दैट। तो लोग हक्का बक्का नहीं, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं कभी ये पोस्ट के लिए खड़ी। मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा कानून थोड़ा है कि लड़की नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए खड़ी रहो। मैंने कहा मुझे नहीं लेडीज रिप्रेजेंटेटिव होना, ये दिस इज कंसर्निंग द वर्क दैट आई डू, प्लेज वगैरह। सो आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट एंड आई गॉट इलेक्टेड इन अ वेरी थम्पिंग मेजोरिटी। बहुत अजूबा था ना उन दिनों, लड़की खड़ी वगैरह वगैरह, और मेरा ये प्ले भी जीता था। तो ये हुआ। अच्छा, उससे एक बड़ी पोस्ट थी ड्रामा सेक्रेटरी। तो अगले साल मैंने कहा ड्रामा सेक्रेटरी के लिए
0: चुनाव लड़ा जाए,
1: हाँ। तो वो नाम दिया और अब पूरा मामला पलट गया। सब लड़के कहने लगे ये लड़कियां सर पे बैठ जाती है, जरा सा मौका दो तो। अब ये ड्रामा सेक्रेटरी बनेगी। तो देन देयर वाज अ हवा चलती है ना, जैसे हवा चले कि इसको हराना है। तो मुझे अच्छी मेजोरिटी से हराया, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई मेरी। तो अब फ्लैश फॉरवर्ड, और ये हम इसका कर रहे थे एंड मिनिस्ट्री हैड गिवन अस देयर ब्लेसिंग्स की करो फिल्म वगैरह,
0: पपीहा बनाओ
1: और मैं फिर जंगल का सबसे कौन फॉरेस्ट ऑफिसर, सबसे

0: नंबर वन था माशेलकर, उनके पास पहुंच गई। तो बड़ा सीनियर सा आदमी और बहुत तमीज़ वाला वगैरह वगैरह, हमारे अच्छी बातें हुई। फिर उन्होंने कहा पहचाना नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं पहचाना। He said क्यों पहचानोगी क्या क्या। He said वो फर्ग्यूसन कॉलेज अबू कमक साल हो मी तुमच्या वर्गात होतो, मैं आप ही के बैच में था, आप ही के क्लास में मैं। ओह मैंने कहा। He said yes of course and he said you were standing for the drama post and he said someone forget his name stood opposite me who won. He said I was his number one supporter. तो एंड वी सॉ टू इट दैट यू लॉस्ट, सो आई सेड अच्छा तो ये है वगैरह। फिर बड़ी हंसी मजाक की बातें हुई। ही सेड अच्छा तो मुझे अब कुछ पापक शालन करना चाहिए, आई हैव टू मेक अप फॉर दैट। सो आई सेड हाँ करो। ही मेड एवरी थिंग पॉसिबल। वेर एवर वी वेंट वी हैड द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस टू स्टे, वी हैड अ फॉरेस्ट एक्सपर्ट कमिटी टू गाइड अस, वी हैड अ फॉरेस्ट रेटिन्यू बॉडीगार्ड्स एक्सेट्रा, वी हैड जीप्स, क्या नहीं बोलो, एंड परमिशन एवरीवेयर। ताड़ोबा जाना है जाओ, संजय गांधी उद्यान जाओ, महाबलेश्वर जाना है जाओ, नागजीरा जाना है जाओ, यू नो। सो वी शॉट ऑल ओवर, फैंटास्टिक, एंड इट वाज इट रियली वेंट आउट वेरी वेल।
1: क्या बात है। इट्स
0: सैड दैट द फिल्म डिडंट, पीपल हैव नॉट सीन इट सो मच।
1: जी जी जी। अभी हाल ही में आपको जी गौरव अवार्ड मिला आपके नाट्यकर्म के लिए। आपने अभूतपूर्व काम किया है, अप्रतिम काम किया है। मुझे लगता है कि इस लंबी बातचीत के आखिर में कुछ बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण नाटकों की कर ली जाए।
0: बात यह है यूनुस कि ये मेरे नाटकों के बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है और क्यों नहीं आप वो पढ़ते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी। और अब मेरी ये जो किताब है, जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस पे लिखी है, तो वो अब हिंदी में छप रही है
1: जी। हाँ?
0: और वो पब्लिकेशंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छपी जाएगी। तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इनवाइट करती हूँ आपको कि आप उसमें पढ़ें, मैंने बहुत तफसील से लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है ये मराठी में उपलब्ध है और उसके अलावा ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है
0: जी,
1: और अब हिंदी वर्जन भी आ रहा है।
0: मराठी में उसका नाम है सय, जो राजहंस प्रकाशन ने किया है। फिर अंग्रेजी हार्पर कॉलिंस की छपी है, इट्स कॉल्ड अ पैचवर्क क्विल्ट। अ पैचवर्क क्विल्ट इसलिए कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के क्विल्ट बनाया जाता है ना सुंदर सा।
1: जी, जी,
0: तो मेरी माँ कहती थी हमेशा कि तुम एक चीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, आज नाटक, कल टेलीविजन, परसों फिल्म, हाँ ये 50 एक ना भर मारा भर चिंदिया, दैट मीन्स ना एक कुछ ठीक से करती है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर बैठती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये टुकड़े जोड़कर मैंने ये क्विल्ट बनाया है, तो पैचवर्क क्विल्ट। और अब ये हिंदी में जो छपरी है उसके दो टाइटल्स हैं, अभी पक्का नहीं तय हुआ, आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है। एक है सहनामा या सही नामा और दूसरा है सही बात या सही बात।
1: क्या बात है, अब ये तो बड़ा मुश्किल है, हम अपने श्रोताओं से कहते हैं कि वो तय करेंगे।
0: लवली,
1: क्या नाम होगा।
0: आई लव टू हियर व्हाट दे फील, आई ट्रूली वुड सिंसियरली, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।
1: जी सही जी, एक बात कहना चाहता हूँ।
0: जी,
1: आज से तकरीबन 20 बरस पहले मैंने बड़े डरते डरते आपसे फोन पर बात की थी और आपसे इंटरव्यू चाहा था। तब मैं बहुत नया था और तब भी आपसे डरता था, अब भी डरता हूँ।
0: तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे आप डरते रहिए, अच्छी बात है। ये अच्छा लगा कि कोई मुझसे डरता है।
1: जी, तो आपने कहा था कि इंटरव्यू करने का अभी मन नहीं है,
0: बर,
1: आगे कभी बात करेंगे।
0: तो किए ना,
1: मुझे पता नहीं
0: वादा निभाया
1: कि 20 साल इस वादे में लग जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी लंबी बात इतने धीरज के साथ की, थोड़ी ज्यादती है इतने
0: अच्छा
1: सारे सवाल कर। बहुत
0: बहुत
1: शुक्रिया।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये पहली सभा यहीं पर समाप्त होती है। दूसरी सभा में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। इस समय शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आरंभ करते हैं आज की दूसरी सभा। श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम आपको आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के रूपरेखाओं से जुड़ी जानकारियाँ दे देते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि शाम के 6:05 का समय रहेगा मार कार्यक्रम का। आज आप सुन पाएंगे कुछ मार आधुनिक गीत। का कलाकार होंगे लल सनहिम मार और उनके साथियों की आवाज़ में। जेमी कार्यक्रम के समय रहेगा 6:25 पर। आज आप सुन पाएंगे हेली हुंगले क्वामे और उनके साथी की आवाज़ में कुछ जेमे लोकगीत।

श्रोताओं, शाम के 6:45 पर आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से प्रसारित की जाएंगे संध्या आंचलिक बातुरी। स्थानीय गीतों कार्यक्रम को जारी रखते हुए 7 बजे सुने डिमासा कार्यक्रम। आज आप सुन पाएंगे कुछ डिमासा लोकगीत। गायक कलाकार होंगे खिमली खोजाई और उनके साथियों के आवाज में।

श्रोता और शाम के 7:20 पर सुने कार्बी कार्यक्रम आज आप सुन पाएंगे सूरत बे से कुछ कार्बी लोकगीत और कोकी गीतों का कार्यक्रम का समय रहेगा 7:40 पर। आज आप सुन पाएंगे कुछ कोकी पारंपरिक गीत, आवाज होंगे लुटखोलाल चोंगलोई और उनके साथियों के आवाज में।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या। 9 बजे का समय रहेगा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफलोंग का, और 15:15 में यानी कि 9:30 बजे सुनिए हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चीतेगी। तो श्रोताओं, ये थे आज के पहले दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के रूपरेखा से जुड़े जानकारियाँ।

ये आकाशवाणी के हावलुंग केंद्र है। समय हो चला स्थानीय गीतों कार्यक्रम का। श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं मार कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ मार आधुनिक गीत। आवाज़ है ललसन हिम मार और उनके साथियों के आवाज़ में।

श्रोताओ, लालसन ही मार और उनके साथी के गाए इसी आधुनिक गीतों की साथी मार गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं जेमे कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ जेमे लोकगीत। आवाज़ है हिलिंग हुंगले क्वामे और उनके साथियों के आवाज़ में।

श्रोताओं, हेली हुंगले क्वामे और उनके साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ ही जेमे गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए थोड़ी देर में सुनते हैं आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से संधार आंचलिक बातुरी।

श्रोताओं, खिलमिक हो जाए और उनके साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ ही दिमाशा गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्बी कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ कार्बी लोकगीत। आवाज है सूरत बे की।

श्रोताओ, सुरतबे के गाए इसी लोकगीत के साथ ही कार्बी गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कोकी कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ कोकी पारंपरिक गीत। आवाजें है लुटखो लाल चंगलोई और उनके साथियों की आवाज में।

Christin galvon kivon tu ta cham na ngai lu na kivon

sen dal von givon tuta chana ngai luna givon

0: श्रोताओ, लुटखोलल चंगलोई और उनके साथियों के गाए इसी पारंपरिक गीतों के साथ ही कोकी गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओ, आइए सुनते हैं हेलो हाफलोंग कार्यक्रम इस विरति के बाद।
1: हेलो हाफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।

इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते स्पोर्ट्स राउंड अप।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है आप सभी के लिए एक नया कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम आपको देंगे जानकारी हमारे जिले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होने वाले खेल जगत के अपडेट्स। हर हफ्ते रविवार को रात के 8:30 से लेकर 8:45 तक आप सुन पाएंगे सिर्फ FM 100.2 MHz पर स्पोर्ट्स राउंडअप। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम हमारे आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले श्रोताओं को दे सके अपडेट्स स्पोर्ट्स जगत में होने वाले सभी एक्टिविटीज के बारे में। मैं हूं विक्रम पांडे और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आकाशवाणी की हाफलॉन्ग केंद्र से। आइए आरंभ करते हैं इस हफ्ते का स्पोर्ट्स राउंड अप। आइए आरंभ करते हैं हमेशा की तरह फुटबॉल के जगत से। यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल में रियल मैड्रिड ने डॉर्टमुंड को 2-0 से हराकर 15वीं बार चैंपियंस बने। सऊदी प्रो लीग के टॉप टू टीम्स के बीच इस हफ्ते किंग कप खेला गया। किंग कप के चैंपियन बने अल हिलाल। अल हिलाल ने पेनल्टीज में अल नज़ीर को 5-4 से हराया। इटली के घरेलू लीग सीरिया ए के चैंपियंस बने इंटर मिलान। इंटर मिलान 20वीं बार सीरिया ए के

0: चैंपियंस बने। दोस्तों 6 जून भारतीय फुटबॉल टीम के लिए बहुत ही इमोशनल रहा। 6 जून को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने आखिरी बार इंटरनेशनल फुटबॉल मैच कुवैत के अगेंस्ट खेला। ये मैच गोललेस ड्रॉ रहा। दोस्तों अब बढ़ते हैं हॉकी की दुनिया में। हॉकी में FIH प्रो लीग चल रहा है। मेंस हॉकी के इस हफ्ते के मैचेस में ग्रेट ब्रिटेन ने आयरलैंड को 3-0 से हराया। स्पेन ने 3-0 से जर्मनी को हराया। आयरलैंड को जर्मनी के अगेंस्ट 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। ग्रेटर ब्रिटेन ने स्पेन को 4-1 से हराया और स्पेन को अर्जेंटीना के विरुद्ध 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। FI प्रो लीग के पॉइंट्स टेबल में अभी तक अर्जेंटीना 29 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है। FIH प्रो लीग के वुमेन्स के मैचेस में इस हफ्ते जर्मनी ने USA को 2-0 से हराया। चाइना को जर्मनी के अगेंस्ट 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। USA ने ग्रेटर ब्रिटेन को 3-1 से हराया। पॉइंट्स टेबल में नेदरलैंड्स 36 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर बैठी हुई है। टेनिस में द फ्रेंच ओपन चल रहा है। फ्रेंच ओपन के वुमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में इटली की जैस्मिन पोलिनी ने रशिया की मीरा अंड्रेवा को 6-3, 6-1 से हराया और पोलैंड की ईगा स्वैटेक ने अमेरिका की कोको गॉफ को 6-2, 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैन सिंगल्स में सेमीफाइनलिस्ट रहे मेक्सिको के कार्लोस अल्कारेस, इटली के जानिक सिनर, नॉर्वे के कैस्पर रूड और जर्मनी के अलेक्जेंडर वेरेफ। दोस्तों अब बढ़ते हैं क्रिकेट की दुनिया में। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का पहला हफ्ता काफी रोमांचक रहा। पहले हफ्ते के मैचेस में कनाडा को यूनाइटेड स्टेट्स ने 7 विकेट से हराया। PNG को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। नामीबिया ने सुपर ओवर में ओमन को 11 रन से एक रोमांचक मुकाबले में हराया। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को एक तरफा मैच में 6 विकेट से हराया। युगांडा को अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। युगांडा 125 रन से अफगानिस्तान से हारी। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच का मैच बारिश के चलते नहीं हो पाया। नेपाल को नेदरलैंड्स ने 6 विकेट से एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में हराया। PNG को युगांडा के अगेंस्ट हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से ओमन को 39 रन से हराया। नामीबिया को स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बेहतरीन प्रदर्शन कर इस वर्ल्ड कप का एक बड़ा अपसेट कर दिया। USA ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रन से हराया। भारत का पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ था। भारत ने एक बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर आयरलैंड को 8 विकेट से हराया। दोस्तों अभी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। अभी हमने आपको दी जानकारी इस हफ्ते हुए कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में। आइए अब बातें करते हैं हमारे जिले यानी कि डिमाहासाओ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री जागीर खान के साथ। दोस्तों हमारे बीच हैं जागीर खान जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र के स्टूडियो में। जागीर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे डिमाहासाओ में जो स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं या फिर क्या क्या फैसिलिटीज बनाई गई हैं।
1: हमारे डिमाहासाओ में स्पोर्ट्स का तो सबसे ज्यादा जो क्रेज है बच्चों में तो फुटबॉल है।
0: जी हाँ,
1: और फुटबॉल में फिजिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि लो कॉस्ट स्पोर्ट्स है, इसलिए हर बच्चे खेल सकते हैं। अभी क्रिकेट में भी किसी को रुचि है तो कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा होता है
0: जी।
1: क्रिकेट पैड वगैरह बैट अपना पर्सनल लेने से कम 15,000 से अब ही लेना पड़ता है, लेकिन स्पोर्ट्स में फिजिबिलिटी में ज्यादा देख रहा है तो फुटबॉल में है। लेकिन और अभी नया नया स्पोर्ट्स भी आया है, नया स्पोर्ट्स में भी हॉकी में है और जैसा किक बॉक्सिंग भी आने वाला है, तो उसी तरह फिजिबिलिटी अभी जितना भी नया जो स्पोर्ट्स होगा उसमें हमारे बच्चे लोग को जल्द से जल्द थोड़ा भी हार्ड लेबर करेगा तो लोग नेशनल ट्रायल मिल सकता है। और फुटबॉल में क्रेज है लेकिन फुटबॉल में टफ है सिलेक्शन के लिए। मौका मिला है, नहीं मिला ऐसा बात नहीं, मौका है, फिजिबिलिटी है लेकिन टफ ज़्यादा है।
0: जी हाँ, जैसे कि हमने भी देखा है यहाँ पे जो CM's कप का क्रेज है वो अलग ही लेवल का होता है,
1: अलग है,
0: तो वैसा लेवल का शायद दूसरे स्पोर्ट्स में हमें अभी तक
1: देखने को नहीं मिला है।
0: मैं आपसे ये दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे ये डिमाहासाओ के बच्चे ये फिर प्लेयर्स के लिए कौन सा स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकता है?
1: अभी अभी जो अपॉर्चुनिटीज है

0: कुछ साल पहले हॉकी था, तो हॉकी में शुरू करते वक्त हमें उसका हॉकी एसोसिएशन का सेक्रेटरी है, और अभी थोड़ा कुछ बीच में लैप्स मतलब होके है, फिर अभी नया हम लोग शुरू किया है।
1: जी
0: तो उस टाइम में 2-3 साल खेलने के बाद ही हम लोग का कम से कम 2 लड़का नेशनल खेल चुका है और 4 लड़की नेशनल खेल चुका है। तो उस टाइम क्या होता है, गर्ल्स का हॉकी तो अभी तक आसाम में इतना उभर के नहीं आया है, तो थोड़ा पोटेंशियल देखा है तो सिलेक्शन हो गया है,
1: जी
0: ठीक है, नेशनल कोचिंग सेंटर में। तो अभी भी खेलो इंडिया में भी हमारा यहाँ का एक लड़की हॉकी खेल चुका है, लुईस रोंगमाई बोल के लड़की है। अभी फिलहाल ये हफ्ता पहले सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी गर्ल्स हमने पार्टिसिपेट किया है,
1: जी
0: चोराईदो में हुआ था, वहाँ खेल के आया है। अभी जो नया नया स्पोर्ट्स और जो है इसमें टैलेंट हम लोग का बच्चों लोग में है, लेकिन हम लोग का थोड़ा कमज़ोर कहाँ में है बोलने से हम लोग का कोच नहीं है। जितना भी नया गेम्स होता है तो उसमें कोचिंग के लिए जो कोच हम लोग इनवाइट करते हैं, कोच को बुलाते हैं, तो सब हाई लेवल का कोच है, NIS कोच है। बेसिक ABCD सिखाने के लिए हम लोग को कोच नहीं चाहिए, सीनियर प्लेयर चाहिए। आप समझ रहे हैं, जैसे कि अभी क्लास 10 का स्टूडेंट को हम उस तरह का ट्यूशन देना पड़ेगा, और क्लास 1 2
1: वन का
0: थ्री का
1: स्टूडेंट
0: तो अलग
1: का
0: देना पड़ेगा।
1: जी हाँ
0: तो वो 1 2 3 के लिए हम डॉक्टरेट बुला के तो फ़ायदा नहीं है।
1: जी
0: तो उसी तरह हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सीनियर प्लेयर जो खेलता है और वो वापस फिर ग्राउंड में नहीं आता है। तो हम लोग वही इसका मतलब रेडियो स्टेशन के द्वारा ही हम भी जितना भी हम लोग का सीनियर प्लेयर है, आप लोग कोई भी इवेंट में है तो आप लोग फील्ड में आइए और नया यंगस्टर्स को आप लोग हेल्प कीजिए। वही
1: जी
0: एक मेरा आज मैसेज रहेगा। तो हॉकी है अभी नया स्पोर्ट्स में, और अभी भी अभी अभी थोड़ा दिन पहले डिमासा किक बॉक्सिंग एसोसिएशन खुला है, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हम लोग का हफलोंग डिमासाओ के है, नंदिता मैडम, तो वो भी इंटरेस्ट दिया है। तो EM एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रबीता जौहरी को लेके हम लोग का मीटिंग हो चुका है। तो यहाँ ऑल असम किक बॉक्सिंग यही होने वाला है
1: हाफलोंग में
0: हफलोंग में, लेकिन फिलहाल हम लोग का हफलोंग में प्लेयर किक बॉक्सिंग का है नहीं।
1: है नहीं रहा।
0: तो डिमासाओ किक बॉक्सिंग को हमने रिक्वेस्ट किया है, मैंने खेल होने का पहले कम से कम 10-15 दिन कोचिंग, मतलब वो हो जाएगा जैसे प्लेयर नहीं है कि बात भी नहीं है, क्योंकि ये जो होता है टाइगंडू कैरेटे ये सब गेम सेम है, थोड़ा नियम वालों का थोड़ा थोड़ा अलग है। तो जो टाइगंडू खेलता है वो किक बॉक्सिंग भी खेल सकता है,
1: जी
0: जो कैरेटे खेलता है वो किक बॉक्सिंग भी खेल सकता है। तो हम लोग का कैरेटे हमें है, टाइगंडू है, तो उन्हीं बच्चों लोग को बुला के थोड़ा रूल्स थोड़ा अलग अलग है। और अभी नब जब ये गेम हमारा यहाँ नया आया है तो ये उसको सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा है।
1: जी जैसे कि हमने देखा भी है रिसेंटली, हम जैसे देखा कि ये पुमसे,
0: पुमसे
1: उसके बाद टाइकोंडो, उसके बाद
0: वो
1: पुमसे
0: टाइगंडो है,
1: टाइकोंडो।
0: टाइगंडो
1: जी
0: में उसका ब्रांच है पुमसे।
1: जी तो वो लोग शायद अभी रिसेंटली
0: हाँ, कोचिंग के
1: कोचिंग के
0: लिए
1: लिए
0: गए,
1: आउट ऑफ
0: कोच
1: इंडिया गए हुए थे।
0: छः छः प्लेयर असम से, वो हमारा डिमांड से ही मिला
1: जी
0: है,
1: हाँ
0: जो असम से बाहर गया है कोचिंग के लिए।
1: जी तो उस हिसाब से देखा जाए तो किक
0: तो
1: बॉक्सिंग के लिए भी
0: किक बॉक्सिंग,
1: अपॉर्चुनिटीज़ हम बना सकते हैं।
0: हाँ
1: तो जागीर जी, हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का ट्रायल्स डिमाहासाओ में रिसेंटली करवाया गया था, तो इस प्रकार के और क्या प्लानिंग्स है डिमाहासाओ को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए?
0: हाँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC जो ट्रायल का कराया नहीं है, वो
1: जी
0: पोस्टपोन हो गया ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, बहुत बारिश हुआ था।
1: जी
0: तो क्योंकि वहाँ जो वो लोग रजिस्ट्रेशन सेल्फ प्लेयर लोग जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना था वो करा है, तो हमने खबर मिला है 250 स्टूडेंट्स का तल जो है ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन किया गया है,
1: हाफलोंग से सिर्फ,
0: हाफलोंग हाफलोंग मतलब उमरांगसू माईबंग
1: मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट
0: हमारा
1: से।
0: डिस्ट्रिक्ट से। तो लोगों यहाँ में वो लोग ट्रायल लेने का बात था, FC का कोच भी आ गया था। May 29 को बहुत बारिश ज़्यादा हुआ था, 29 से ही था, और रोड भी ब्लॉक था। तो साथ ही साथ हम लोग वेदर कंडीशन देख के और यूनाइटेड FC का हाई लेवल में बातचीत करके तो वो पोस्टपोन किया गया है। अभी ये कोचिंग होगा 1st वीक ऑफ जुलाई में, हमारा डिमासाओ को जितना भी प्लेयर है Under-17 का वो होगा हम लोग का 1st वीक ऑफ जुलाई में।
1: और उसके अलावा कुछ जो कि होने वाला है?
0: उसके अलावा होने वाला है अगस्त सितंबर में किक बॉक्सिंग होगा ऑल असम,
1: जी
0: अभी वर्कआउट कर रहा है ऑल असम, आसाम का जो किक बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी है वो भी हाफलोंग में आके मीटिंग करके गया है, तो इसका वर्कआउट हो रहा है। अगस्त सितंबर में ये
1: जी
0: होगा, किक बॉक्सिंग होगा। और अभी फिलहाल आज कल भी एक मीटिंग है जो हमारा ऑनरेबल CM सर ने और

0: इंटरेस्ट दिया है क्रिकेट में, तो स्कूल का अंडर 15 अंडर 16 का सब एसोसिएशन जो है, जैसे कि माइबंग, ये डिमासा हम लोग का हेडक्वार्टर है, माइबंग माहूर लंगटिंग हरंगाजाओ उमरांगसू और दोईमुख में एक एक टीम क्रिकेट का बच्चे लोग का बना के एक या में सेंट्रली एक गेम होगा।
1: तो क्या हमारे जिले के बच्चे के लिए हर स्पोर्ट्स में स्कोप है क्या? और अगर है तो वो ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें आसानी होगी बच्चों को अपना फ्यूचर बनाने के लिए?
0: अभी ये देखिए, हम पहले भी बोला था फुटबॉल टफ है,
1: जी
0: क्योंकि
1: हाँ
0: नोटिस पूरा फुटबॉल में लगा हुआ है, बहुत क्रेज़ है और इसमें बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। चांस नहीं मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं, चांस मिलेगा, वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है हम लोग का ट्राइबल बच्चों में, वो ट्राई करने से ज़रूर मिलेगा, उसमें फुटबॉल में है। और फिलहाल अभी अभी जो असम भी गर्ल्स क्रिकेट में इंटरेस्ट दिया है, तो हमारा यहाँ गर्ल्स क्रिकेट का भी कुछ करने का हम लोग सोच रहा है, पहले स्कूल से शुरू करेंगे, तो थोड़ा भी को अभी गर्ल्स क्रिकेट में होगा तो मौका ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि गर्ल्स का क्रिकेट अभी तक इतना इन्फ्लुएंशियल हुआ नहीं हमारा असम में। असम से तो एक ऑल इंडिया में मिला है, आपको मालूम है
1: उमा छेत्री।
0: उमा छेत्री, तो उसको देख के अभी काफ़ी लड़कियों लोग शायद इंटरेस्ट देंगे, और हमारे डिमांसों में भी स्कूल को हम लोग कॉल करेगा, तो वही मीटिंग कॉल होने वाला है जो क्रिकेट बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो बोला बॉयज़ का करके गर्ल्स लोग का थोड़ा कुछ ABCD कोचिंग करा के गेम कराना है, तो उसमें से टैलेंट वाला निकल जाएगा, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट जब हम लोग खेलने जाएगा वहाँ वो लोग को टैलेंट सर्च होता है,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: वहाँ से वो लोग को पिकअप करेगा, किस ट्रायल के लिए बुलाएगा, तो यदि वो ठीक ठाक रह सकता है 100% दे सकता है तो उसका फ्यूचर
1: अपॉर्चुनिटीज की
0: हो
1: कमी
0: सक
1: नहीं
0: कमी
1: है।
0: नहीं है।
1: जी हाँ, तो आखिर में आपसे हम एक मैसेज सुनना चाहेंगे हमारे डिमाहासाओ के स्पोर्ट्स लवर के लिए।
0: जितना भी स्पोर्ट्स लवर्स है, मेरा ये मैसेज है, यू से इस नो टू ड्रग्स एंड से यस टू स्पोर्ट्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे आकाशवाणी हाफ़ों के स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी। आपसे हम फिर आगे बातें ज़रूर करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स राउंड अप। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था विक्रम पांडे ने, ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, थोड़ी देर में सुनते हैं समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
2: To launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी, साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
4: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे

0: गई।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया, ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, कि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज़्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त, हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है।

0: और अनुमान लगाया है कि उत्तरी ओडिशा, पश्चिम ओडिशा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज़्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।

0: आपके गीत। दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफलॉन्ग।

0: हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुठाई चिबाई कुलुम खुबलई कार्डम। आकाशवाणी हफलोंग की ओर से मैं सिद्धार्थ पांडे लेकर हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा और प्यारा सा प्रोग्राम हेलो हफलोंग। कल शनिवार के दिन आपने सुना इस हफ्ते का पहला एपिसोड। आज रविवार है। चलिए अब देरी ना करते हुए आज के सफर को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हफलोंग जी, क्या नाम है बेटा आपका? क्या करती हैं आप?
1: शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: अच्छा, कौन से ईयर का है अभी आपका सीखना?
1: सर, इस सितंबर को 3 साल होंगे।
0: आगे क्या सोचा है आपने?
1: सर, यही करियर इसमें मुझे बनाना है।
0: और किन से सीख रही हैं आप?
1: जी,
0: आपके गुरु कौन हैं?
1: सर, गुरु अब मतलब इधर के ही गुरु मेरे पास में मतलब रहते हैं, ज्यादा दूर के नहीं है, इधर ही रहते हैं।
0: शास्त्रीय संगीत के अलावा आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: सर, मुझे शास्त्रीय संगीत ही सीखना अच्छा लगता है क्योंकि गाना गाने का मुझे बहुत शौक है।
0: चलिए, क्या सुनना चाहती हैं उसी गाने को आप गाकर बता दीजिए।
1: हाँ, फिल्म का नाम है, अभी सर सावन का महीना चल रहा है तो फिल्म का नाम है मिलन और गाने के बोले।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: हेलो हफलोंग।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद सर जी। फिल्म का नाम है बोल राधा बोल और गाने के बोल हैं बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया अपने किशन को दिल दे दिया। और कुछ दोस्त हैं सर मेरे, उनके साथ सुनना चाहेंगे।
0: जी
1: पहले तनुश्री बिडिया है, गंगा है सावन कर जी हैं, अमल भस्मतारी, विमल भस्मतारी, रमेश पात्र है, बाइकन मुंडा है, अंजलि भस्मतारी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर। आपको भी डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप?
1: जी सर, हम खेती किसानी करते हैं और आपका कार्यक्रम हम मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते हैं सर जी।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। रेडियो सुनना आपको बेहद पसंद है, और कब से सुन रहे हैं आप रेडियो? कितना वर्ष हो गया?
1: सर मुझे तो करीबन 32-33 साल हो गए सर। बहुत बहुत पुराने समय से सुन रहा हूँ सर जी। मैं जब से बहुत छोटा था, 7-8 साल का था, जब से सुनने लग गए थे सर जी।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही रेडियो के साथ जुड़े रहें, और आपसे बातचीत करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। और अब अपनी पसंदीदा
1: धन्यवाद सर।
0: गाने का आनंद लें। धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सर जी सिविल वर्ड एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ, आपका नेम है श्रोता।
0: बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: सर जी मूवी का नाम है ये दिल, और इसमें एक गाना रहेगा, क्यों दिल बिछड़े यार को रोए, ऐसा किसी का हाल ना होए। हमारे मित्र रहेंगे अमल जी विमल जी, उन्होंने ही हमको आप लोन के बारे में जानकारी दी, उन्होंने ही हमको इससे जोड़ा सर।
0: जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अब आप अपने अन्य मित्र जो आपके हैं उन तक भी हेलो हफलोंग के बारे में जरूर बताइए, और उनसे भी हम अगर जुड़ पाएं तो हमें बेहद खुशी मिलेगी। धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: हेलो हफलोंग।
1: मैं जितेंद्र दास बोल रहा हूँ, ग्राम कुदाली, टाकगढ़, नरेंद्र नगर, जिला त्रिभूमि, करीमगंज।
0: क्या कर रहे हैं आजकल आप?
1: मैं तो ट्यूशन कराता हूँ और स्कूल में पढ़ाता हूँ।
0: किस विषय में आप ज्यादा रुचि रखते हैं?
1: एलपी स्कूल में है तो उसमें तो हर सब्जेक्ट ही पढ़ाना पड़ता है, इंग्लिश, बांग्ला, मैथ्स और ईबीएस,
0: जी जी
1: वो सब ही
0: मतलब
1: पढ़ाना पड़ता है।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। और हम आप बच्चों की शुरुआती शिक्षा में ही आप भागीदारी हैं, उनको सिखाना है ना? जी, अब जल्दी से इसे खुशनुमा अंदाज में आप बता दीजिए कि क्या सुनेंगे आज?
1: गाना सुना दीजिए, डॉन मूवी का बनारस वाला, और मेरा साथ सुनेगा। कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ,
0: जी
1: मीनाल अहमद, दायपन मुंडा, अमल बासुम, अमल बिमल, रमेश पात्र, रुनु पात्र, देवाशीष हजारिका, और झारखंड से शिवा ग्रुप, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नगनपुरी से। और
0: जी
1: आप अभी जो सुन रहा है आकाशवाणी आकलम, हेलो आकलम कार्यक्रम, सभी को लेके मैं यह गाना सुनना चाहता हूँ।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: हेलो हफलोंग।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: मैं आपका नियमित श्रोता सुनील झा बोल रहा हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश। जी
0: जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आपकी फरमाइश जानना चाहूंगा।
1: सर, काफी दिनों के बाद फोन लगा है तो काफी अच्छा लग रहा है। तो इसका भी सावन महीना चल रहा है तो उसी का गीत सुनवा रहे सर।
0: बताइए गाने की बोल।
1: गाने के बोल हैं चल रे कांवड़िया, शिव के धाम फिल्म का गाना है, फिल्म का
0: कौन
1: नाम है चल रे कांवड़िया, इसका टाइटल सॉन्ग।

0: हेलो हफलोंग
1: जी सर नमस्ते। मैं हरदोरा बोल रहा हूँ, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोपुर से। सर
0: जी, कैसे हैं द्वारा जी आप?
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ।
0: और क्या करते

0: हैं आप?
1: सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ
0: कौन से लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं अभी?
1: जी। सर मैं अभी BA थर्ड सेमेस्टर में हूँ।
0: जी, और आगे चल के क्या करेंगे, कितना क्या बनने का इरादा रखते हैं?
1: सर मेरा असम पुलिस होने का मन है।
0: जी, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।
1: जी जी सर।
0: जी, क्या सुनेंगे आज?
1: सर आज गैंगस्टर फिल्म के जुबिन गार्ग के आवाज में या अली ये गीत सुना दीजिए। और सर मैं कुछ श्रोता के नाम लेना चाहती हूँ। जी
0: जरूर लीजिए।
1: पहले तो आपको सुनाऊंगी मैं गीत। और है भाईकन मुंडा, अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, रमेश पात्र, निलोत्पल दोड़ा, मंटू बड़ुआ, दिनेश शर्मा।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सुनिए इस गाने को।
1: जी जी सर थैंक यू।

दोस्तों, इन्हीं रिक्वेस्ट सॉन्ग्स के साथ ही हेलो हाफलों का इस हफ्ते का सफर अब हो चुका है पूरा। जिन श्रोताओं ने इस हफ्ते हमें कॉल किया, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ श्रोताओं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन कॉलर्स के कॉल्स इस हफ्ते शामिल हुए हैं उन सभी कॉलर्स से रिक्वेस्ट है कि 2 हफ्ते के अंतराल के बाद ही आप फिर से कॉल करें ताकि अन्य कॉलर्स को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिले। श्रोताओं, हेलो हाफलोंग की रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। अब आप नोट कीजिए, हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 9435700596। नंबर एक बार फिर से 9435700596। और प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर होता है शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे। श्रोताओं, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है आकाशवाणी हाफलोंग और इंस्टा आईडी भी आकाशवाणी हाफलोंग है। हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी हाफलोंग पर भी आप जाके वहाँ हमारे बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। अब अपने दोस्त सिद्धार्थ पांडे को इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरी ओर से जुठाई चिबाई कुलुम खुबलई कारडम और मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफलॉन्ग। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था सिद्धार्थ पांडे ने। ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। चित्रगीत का पहला गीत सुनते अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के गाए ये गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना वीर जरा फिल्म के गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते, आदित्य नारायण, पूर्णिमा, अभिजीत और साथियों के गाए ये गीत।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही आज के हमारे दूसरी सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओ, कल की पहली सभा में यानी कि सुबह के 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक ले हमें यानी कि देवकांतो हाजर तकनीकी सहायक और मनुकार को दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, जय हिंद।